मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 9वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 31 जुलाई 2026 सवेरे के ठीक 5:56 हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज के प्रसारण आरंभ होते हैं मंगल ध्वनि के साथ।

0: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से ये विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधान है। इनमें 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी व्यक्तियों की संपत्ति जब्त करना शामिल है। मामलों की शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। चर्चा पर उत्तर के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के हित की रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है। आज सदन की कार्यवाही 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार विश्वसनीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कई दशकों से प्रत्येक राज्य और केंद्र सरकार को पेपर लीक की समस्या का सामना करना पड़ा है और इससे विद्यार्थियों के भविष्य पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए संसद ने कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पारदर्शी और प्रौद्योगिकी आधारित परीक्षा प्रणाली पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानून और परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई विद्यार्थियों के कठिन परिश्रम की रक्षा और विकसित भारत की नींव मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। विदेश सचिव विक्रम मिश्री और भूटान के विदेश सचिव दाशो पेमा लिकतुप दोर्जी ने थिम्पू में 13वीं पंचवर्षीय योजना पर 5वीं भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की सह अध्यक्षता की। भूटान स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भारत समर्थित परियोजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। दूतावास ने बताया कि विदेश सचिवों ने हरित अवसंरचना और खुले स्थान परियोजना

0: योजना के अंतर्गत निर्मित थिम्फू पारिस्थितिक पार्क और ओलाखा पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 40 लोग मारे गए थे। स्थानीय अधिकारी अब बुनियादी अधिकारों की मांग कर रही महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में कल कोयला खदान में विस्फोट से 18 खनिक मारे गए और 24 अंदर फंस गए। प्रांतीय राजधानी क्वेटा के बाहरी इलाके में स्थित खदान में मीथेन गैस भर जाना विस्फोट का कारण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार 18 खनिकों के शव निकाल लिए गए हैं। अन्य कर्मियों की तलाश के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 110 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता, जबकि सीमा कलीरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत तीन भारतीय भी भाला फेंक के फाइनल में पहुंचे, जबकि ट्रिपल जंपर्स के दो भारतीय खिलाड़ी प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा प्रभु थेरुमारन ने भी फाइनल में जगह बनाई। अजरबैजान में के बाकू में कल अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान निकिता सहरावत ने रजत पदक जीता, जबकि कामना बाबुल और गरिमा ने महिला वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The Parliament has passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it yesterday. The bill was passed by the Lok Sabha on Wednesday. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and Union Territory Administration establish special fast-track courts for day-to-day trial. Replying to the discussion on the bill, Minister of State for Personnel and PMO, Dr. Jitendra Singh said, "This issue touches every citizen of India and has stake with every citizen of this country." Prime Minister Narendra Modi has said government is continuously taking one step after another to build a trustworthy examination system. In a video message on social media, Mr. Modi said, "For the past several decades, every state government and the central government have faced the problem of paper leaks, and this has put the future of students at risk." He said, "Keeping all this in mind, reforms in the education and examination system have become essential across the country, both in the states and the centre." The Prime Minister said Parliament has passed the bill containing stringent legal provisions.
2: दोनों सदनों ने कठोर प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिलकर के विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चले।
1: The Parliament has passed the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026 with the Lok Sabha approving it yesterday. Rajya Sabha had passed the bill on Wednesday. Minister of State for Home, Nityanand Rai, moved the bill to further amend the Prevention of Insults to National Honour Act 1971. The legislation seeks to give Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem, Jana Gana Mana. These offences are punishable with imprisonment up to 3 years, a fine or both. Protests continued in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir following a brutal crackdown by Pakistani security forces on civilians earlier this week, which left more than 40 people dead. Local authorities in the occupied region have now begun targeting women protesters demanding basic rights. Pakistani security forces opened fire on women demonstrators gathered in large numbers in Rawalkot and Mirpur, where they were raising slogans against the crackdown. Several videos circulating on social media purportedly show women fleeing as police opened fire during a peaceful protest.

अनूप जलोटा की आवाज़ में अभी आपने ये भक्ति रचना सुनी। आइए अब सुने सरदुल सिकंदर की आवाज़ में ये भक्ति रचना।

0: अभी आप वंदना कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। शिवसगर 45 मिनट हुए हैं। कार्यक्रम आप सुने चिंतन।
1: आज से लगभग 500 वर्ष पहले एक महान संत हुए जिनका नाम कबीर महान है। भारत में ऐसे बहुत कम व्यक्ति हुए हैं जिनके नाम के आगे महान लगा है। कबीर जी ने समाज को ध्यान की दो पद्धतियां दी, जिनमें से एक का नाम तत्वज्ञान है और दूसरी का नाम पारख ज्ञान है। तत्वज्ञान के अंतर्गत ध्यान की चार विधियां हैं जो अपने आप में अद्वितीय हैं। इस तत्वज्ञान का प्रतीक इसका परिचायक सांथिया है, जो हम सब लोग अपने घरों के अंदर दीवारों पर या घर के मुख्य द्वारों पर बनाते हैं।

जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर सांथिया बनाता है, वह व्यक्ति बताना चाहता है कि मैं तत्व ज्ञान की चारों विधियों को जानने वालों में से हूँ। दूसरा प्रतीक, हम अपने घरों के मुख्य द्वारों पर शुभ और लाभ भी लिखते हैं, जिसका मतलब है हम उन लोगों में से हैं जो शुभ करते हैं और लाभ पाते हैं। शुभ का अर्थ है अपने मन, अपनी वाणी और अपने शरीर से अच्छे कार्य करना, और लाभ का अर्थ है सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक उन्नति। अब मैं तत्वज्ञान की उन चारों विधियों के नाम बता दूं। पहली विधि, जिसका नाम है ऐजपाजाप, दूसरी विधि का नाम है खेचरी मुद्रा, इस विधि को अमृत पान विधि भी कहते हैं। तीसरी विधि, जिसका नाम है अनहद नाद विधि, और चौथी विधि, जिसका नाम है ज्योतिर्मय स्वरूप। सबसे पहले मैं ऐजपा जाप के बारे में थोड़ा बता दूं। ऐजपा जाप का अर्थ है एक ऐसा सुमिरन, एक ऐसा जाप जो अपने आप हो रहा है। क्या हो रहा है? अपने आप, अपने आप हमारी श्वास भीतर जाती है और अपने आप बाहर आती है। यह एक प्रकार का झूला है जो बाहर वाले छोर से भीतर वाले छोर तक जाता है और फिर भीतर वाले छोर से बाहर वाले छोर तक आता है। यह एक ऐसी माला है जो हमारे घट में निरंतर फिरती रहती है। जब सांस भीतर जाता है तो एक प्रकार की ध्वनि पैदा होती है, और जब सांस बाहर आता है तो भी एक प्रकार की ध्वनि पैदा होती है। इस प्रकार आते जाते श्वास की ध्वनि से एक शब्द, एक नाम निर्मित होता है। उस नाम में ध्यान लगाए रखना ही ऐजपा जाप है, यानी अपने मन को क्षण प्रतिक्षण अपने श्वास के आवागमन के प्रति, आवागमन की जानकारी पर लगाए रखना ही ऐजपा जाप है। हमारे संतों ने, ऋषियों ने इस पे बड़े दोहे लिखे हैं, जिनमें से कुछ मैं यहाँ बोल रहा हूँ। श्वास श्वास हरि नाम सुमिर, वृथा श्वास मत खोए, क्या जाने इस श्वास का आवन होए न होए। ऐसा सुमिरन कीजिए सहज रहे लो लाए, बिन जीवा बिन तालुए अंतर सुरत लगाए। हंसा सोहंग तार कर सुरती मकरिया पोए, उतरी उतरी फिर चढ़े सहजे सुमरन होए। सुरती समावे नाम में जग से रहे उदास, कहे कबीर गुरु चरण में दृढ़ राखो विश्वास। ढूंढ कर पकड़ा नाम को जीभ होठ के बीच, ऐ जपा जाप होवे स्वयं धोवे मानस कीच। आप ही रसना जप करे मन में माने मोद, व्रति वश

0: होवे तभी हो संकल्प निरोध।
1: अभी आप चिंतन कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आइए अब जाने कार्यक्रम विवरण के बारे में।

आपसे कुछ ही देर बाद यानी 7:10 पर सुनेंगे कार्यक्रम खेतिहर वास्ते। इसमें जानकारी आप लेंगे कृषि में नीम का महत्व, साथ ही हम सुनेंगे लोक भजन। 7:20 पर सुनेंगे कार्यक्रम मानस गान भाग संख्या 321 सुप्रभात। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सवेरे 7:30 पर। इसमें चर्चा के विषय रहेंगे कलम से सिपाही मुंशी प्रेमचंद, जन्मदिवस पर चर्चा आज होगी, आचरण की सभ्यता और देश प्रेम। 8:45 पर सुनेंगे सुगम संगीत का हमारा कार्यक्रम मरुमंगल। ये प्रोग्राम आप सुनेंगे सवेरे 9:10 पर। इसमें कलाकार होंगे जग्गू मालिका। 9:30 पर सुनेंगे फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम। सवेरे 10:00 आप सुनेंगे गा मेरे मन गा फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम। गीत माला फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आप सुनेंगे सवेरे 11:00। सैनिकों के लिए ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 12:05 पर। 12:30 पर सुनेंगे सुगम संगीत का हमारा कार्यक्रम। खेत खलियान ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 12:50 पर। इसमें जानकारी आप लेंगे पशुओं में टीकाकरण

दोपहर 1:05 पर सुनेंगे कार्यक्रम घर आंगन। इसमें चर्चा के विषय रहेंगे दुग्ध उद्योग जीविका का एक अच्छा विकल्प, फ़ोन के फायदे व नुकसान, बच्चे और उनकी जिद किस हद तक, कच्चे आम का परीक्षण इस कार्यक्रम में आप जान पाएंगे। दोपहर 2:30 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम। शाम 5:00 सुनेंगे युववाणी कार्यक्रम। इसमें चर्चा के विषय रहेंगे पढ़ेगा भारत बढ़ेगा भारत, स्वस्थ शरीर मन स्वस्थ मस्तिष्क, भारतीय संस्कृति और युवा, डिजिटल युग में शिक्षा और आज का इतिहास इस कार्यक्रम में आप जान पाएंगे। सरायकी कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:05 पर। शाम 7:00 सुनेंगे चौपाल कार्यक्रम। इसमें आप सुनेंगे गीता रहो गजरो और साथ ही आप जान पाएंगे बाजार भाव और मौसम की जानकारी। रात्रि 8:15 सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। एक ही फिल्म से जानकारी और गीत इस कार्यक्रम में आप सुना करते हैं। 9:30 पर सुनेंगे हेलो मिट्टी दी खुशबू, संयोजक नवीन सिसोदिया और प्रस्तुत करेंगे दुर्गा राम। सुनेंगे आप 9:30 पर। तो ये थे हमारे कुछ खास कार्यक्रम, उनके समय के बारे में जानकारी।

0: अस्मिन् स्थले दिल्ल्याः अन्येषु स्थानेषु च प्रदर्शनरत छात्रेषु पैलेट गन इत्यस्य प्रयोग सम्बद्धां याचिकां शृणोति स्म। श्रवणकाले न्यायपीठेन उक्तं यत् आरक्षिभ्यः विशिष्ट परिस्थितिषु एव पैलेट गन इत्यस्य प्रयोगस्य अनुमतिः अस्ति। राष्ट्रमण्डल क्रीडासु भारतीय भारोत्तोलकः लवप्रीत सिंहः पुरुषाणां 10.1 किलोग्राम भारवर्गे रजत पदकं प्राप्तवान्। अपरञ्च भारतीय क्रीडिका सीमा कालीरमन महिलानां डिस्कस थ्रो इत्येतस्यां प्रतिस्पर्धायां कांस्य पदकं प्राप्तवती। ग्लास्गो नगरे अष्टम दिवसस्य समाप्तौ ऑस्ट्रेलिया देशः 10.1 पदकैः पदकतालिकायां शीर्षस्थाने वर्तते। भारतं तु 17 पदकैः सह दशम स्थानम् अधितिष्ठति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से ये विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। इनमें 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और दोषी व्यक्तियों की संपत्ति जब्त करना शामिल है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। चर्चा पर उत्तर के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के हित रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक गंभीर समस्या है और पिछली सरकारों के दौरान भी देश के विभिन्न भागों से ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट मिली। आज सदन की कार्यवाही 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार विश्वसनीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि पेपर लीक की समस्या को ध्यान में रखते हुए शिक्षा और परीक्षा प्रणाली में सुधार राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर आवश्यक हो गया है। संसद ने इस उद्देश्य से कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है।
2: पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा।
1: इससे पहले संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। विदेश सचिव विक्रम मिश्री और भूटान के विदेश सचिव दाशो पेमा लुकतुब दोरजी ने थिम्पू में 13वीं पंचवर्षीय योजना पर 5वीं भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की सह अध्यक्षता की। भूटान स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भारत समर्थित परियोजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। दूतावास ने बताया कि विदेश सचिवों ने हरित अवसंरचना और खुले स्थान परियोजना के तहत निर्मित थिम्पू पारिस्थितिक पार्क और ओलाखा पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 40 लोग मारे गए थे। स्थानीय अधिकारी अब बुनियादी अधिकारों की मांग कर रही महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने

0: said that rescue operations would continue until all the trapped miners were found. In Keralam, orange alert indicating isolated very heavy rain has been declared in 11 of the 14 districts today. Remaining three districts are under yellow alert, predicting isolated heavy rain. Heavy rain is expected in the state tomorrow also. In Commonwealth Games, Indian weightlifter Lovpreet Singh won a silver medal in the men's 110-kilogram category, while Seema Kalirama bagged a bronze medal in the women's discus throw at Glasgow last night. Australia continued to lead the standings with 110 medals, while India were 10th with 17 medals. In Under-17 World Championships, Indian wrestler Nikita Sehrawat settled for a silver medal, while Kamna Babul and Garima bagged bronze medals in the women's event in Baku, Azerbaijan yesterday. And that is the end of this news bulletin.
1: यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 7:10 हुए हैं। कार्यक्रम सुने खेतिहर वास्ते। इसमें जानकारी आप ले रहे हैं कृषि में नीम का महत्व।
2: किसान भाइयों, राम राम। आपने जीवन के माँ किसान भाइयों, वृक्ष को बड़ो महत्व है। और जितना भी आप वृक्ष लगावा, चाहे वह छायादार हो चाहे वह फलदार हो, तो मांगो अपने जीवन में बड़ो महत्व है। और इनके साथ साथ जगह भी आप वृक्ष लगावा, तो मांगी अपने सार संभाल सावचेत करनी बहुत ही जरूरी हुआ है। इन तरह ही एक वृक्ष नीम है, तो बिंगो भी अपने जीवन में भी बहुत महत्व है। और भी नीम में कई औषधीय गुण होने के कारण वो अपनी जैविक खेती में भी बिंगो बहुत अच्छो उपयोग है। और वर्तमान में अपने कह सकें भी ज्यादातर महत्वपूर्ण वृक्ष है जो मान्यो गए। इनके साथ साथ नीम की देख लो के निमोली है, पत्ता है, छाल है, ये सारे की सारी बिंगी अपने औषधीय गुणा के कारण हरेक तरीके से मांग काम आवे। और यह केस का भी अब जो को ये टाइम में अपने वो वृक्ष है जो को बड़ो ही महत्वपूर्ण औषधीय वृक्ष है। नीम का जका वृक्ष है वह ज्यादा में ज्यादा जका लगाना चाहिए। और औषधीय गुण होने के कारण इनको अपने जीवन में बड़ो ही महत्व है। इनके सागे सागे विशेष तौर जो कि आप खेती पाती करा बी में भी इनको बड़ो महत्व है। तो इन खातर आपने ज्यादा में ज्यादा नीम का वृक्ष जका लगाना चाहिए और बांगी सार संभाल जकी करनी चाहिए। तो सारों पहल पोता है कि जितनी भी आप खेती पाती करा, चाहे सावणी की हो चाहे हाड़ी की हो, वह मैं टेम टेम सारू आप देखभाल करता रहा। जब भी मैं कोई हारी बीमारी कीड़ो कांटो लगे, तो भी मैं विशेष तौर जका नीम का कीटनाशक है बांगो आपने उपयोग जो करना चाहिए। जे आप टेम सारू नीम का कीटनाशक उपयोग करा, तो बांशु आप रोकथाम कर सका। तो एक तो है सस्ता हो, आंशु अपने वातावरण जो दूषित कोनी हो। तो जी नीम की सर्वाधिक उपयोगी जकी नीम गिरी निम्बोली का बाव है, भी मैं तेल की मात्रा 40 ले गए 50 सैकड़ा तय हुए। अजा डिरेक्टिन 0.3 ले गए 0.35 सैकड़ा तय हुए। निम्बिडिन 1.2 ले गए 1.6 सैकड़ा तय हुए। और निम्बिन 0.1% तय हुए। विपिनिन 0.15 सैकड़ा तय हुए। हमें सारों ज्यादा उपयोगी अजा डिरेक्टिन नामक रसायन है। और नीम की निम्बोली की गिरी 40-45 सैकड़ा ताई और आवरण 55-60 सैकड़ा ताई जो हुए। किसान भाई, नीम के महत्व की बात करा, वो एक बहु उपयोगी वृक्ष है। इंगा प्रत्येक भाग पत्ती फूल फल जड़ तना को उपयोग जो करो जे। नीम मनुष्य की अनेक बीमारियां जिया कैंसर है, खाज है, खुजली है, चरम रोग है, रक्त अल्पता, हृदय रोग, पीलिया अने रोकने में भी मददकारी है। इनके अलावा शरीर में इनके उपयोग से कोलेस्ट्रॉल में कमी आवे। नीम में पाए जाने वाले रसायन में से वर्तमान में दंत मंजन है, सौंदर्य प्रसाधन, शैंपू, औषधियां, कीटनाशक रसायन, जैविक खाद, ए व्यावसायिक उत्पाद है जका तैयार करा जाए। जैविक खेती में नीम को विशेष महत्व है। किसान भाइयों, इसु प्राप्त रसायन शु विभिन्न प्रकार का कीटनाशक रसायन तैयार करा जाए, जके शु के फसलों पर छिड़काव कर पर्यावरण और मनुष्य को नुकसान से भी बचाया जाए। किसान भाई, नीम का खेती के में महत्व की बात करा, तो नीम की निमोली ने पीस कर 100 ग्राम पाउडर पौधे के चारों तरफ 3 इंच गहराई में डालने से भूमिगत हानिकारक कीटों को नियंत्रण हो जाए। किसान भाई, 5 लीटर देसी गाय के छाछ में 5 किलो नीम का पत्ता डाल के 10 दिन तक अपने सड़ाना चाहिए। बिंग बाद में पत्तियां ने निचोड़ के अच्छी तरह बिंग रस्से जो निकाल लेना चाहिए। बिन मिश्रण ने छान के 150 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ अपने छिड़काव करना चाहिए, जैसे क्योंकि कीटों को नियंत्रण हो जाए। किसान भाई, 5 किलो नीम का पत्ता 3 लीटर पानी में गाल के अपने उबालना

0: जद आधो रह जावे तो बीने छाण गए 150 लीटर पानी में घोल तैयार करके बीमे 2 लीटर गोमूत्र मिला गए। ई मिश्रण ने 1 एकड़ में फसल पर कीटा के नियंत्रण खातर आप छिड़काव जो कर सका। किसान भाइयों नीम बीज की निम्बोली पाउडर 1.25 किलोग्राम ने जे आपा 100 किलोग्राम गेहूं बीज में मिला देवा तो वो लगभग यहाँ गैस का भी अपने काफी टाइम तक जो को सुरक्षित रह सके। भी में कोई हरी बीमारी कीड़ो कांटो जो को लागे को नहीं। नीम बीज का 9 ग्राम पाउडर ने 9 लीटर पानी में घोल बना के 0.1% सांद्रता को घोल बना के छिड़काव करने से कीटा ने पौधे से दूर रखो जा सके। जे आप नीम के सूखे पत्ता ने भंडारित अनाज में रख दें तो गेहूं की इल्ली है, खपरो है, भरंग है, इसे कीटा चुबान से बचाया जा सके। तो इन तरीके से नीम को अपने जीवन में बड़ो महत्व है और विशेष तौर जैविक खेती के माँ भी इनको बड़ो महत्व है। तो आपने नीम की सार संभाल करनी चाहिए और इन जितना भी औषधीय गुण है बांस आपने अपने जीवन में मांगो उपयोग है जो करना चाहिए। तो अब हूँ खेत करने चालू। राम राम सा राम राम।
1: नमस्कार किसान भाइयों, भारत में सर्वप्रथम और आज भी सर्वश्रेष्ठ असली भरोसेमंद मोनोजिंक बनाने वाली 48 वर्षों से किसानों की खुशहाली हेतु समर्पित दयान फर्टिलाइजर्स अब धान उत्पादकों किसान भाइयों के लिए लेकर आई है धान प्रधान और धरती गोल्ड। अधिक पैदावार और उत्तम क्वालिटी के लिए एक बार जरूर प्रयोग करें और पाएं कम कीमत में ज्यादा मुनाफा, क्योंकि दयाल का है सपना खुशहाल हो हर किसान अपना।
2: श्रोताओं, जानकारी लिए कार्यक्रम खेती वास्ते में कृषि में नीम का महत्व, आइए अब सुने लोक भजन।

इसी लोक भजन के साथ ही आज का कार्यक्रम खेती रवासी अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 7:20 हुए कार्यक्रम आप सुने मानस गान भाग संख्या 321।

नल, नील, द्विध, सुग्रीव, अंगद, हनुमान तथा राम लक्ष्मण को खोजता ललकारता रावण का ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद युद्ध भूमि में आन उतरा है। उसके वाणों से वानर सेना की टुकड़ियां कट कट कर गिरने लगी हैं। मेघनाद का उद्घोष है कि आज वो भाई से द्रोह करने वाले विभीषण का वध अवश्य करेगा। क्रोध में कांपता धनुष की प्रत्यंचा को कानों तक खींच वो कठिन से कठिनतम वाण छोड़ने लगता है। उन्हें देख ऐसा लगता है जैसे पंखों वाले सर्पों का समूह उड़ता चला जा रहा हो। मेघनाद के प्रहार से त्रस्त वानर और रीछ जहां तहां भागने लगते हैं। ऐसा दृश्य आ उपस्थित होता है जैसे युद्ध भूमि में एक भी वानर या रीछ जीवित नहीं बचेगा। चारों ओर मेघनाद का सिंह गर्जन सुनाई देने लगता है। ये देख हनुमान ने एक पर्वत खंड उठाकर मेघनाद पर दे मारा। पर्वत को अपनी ओर आता देख मेघनाद उछलकर आकाश में उड़ जाता है और हनुमान के बार बार ललकारने पर भी नीचे नहीं आता। वो श्री राम के ऊपर तरह तरह के अस्त्रों के साथ गालियों की बौछार करने लगता है। श्री राम उसके अस्त्रों को बड़ी सहजता से काट कर गिरा देते हैं। मेघनाद लज्जित होता है किंतु फिर माया रचाकर आसमान से अंगारों की वर्षा करने लगता है। साथ ही रक्त, पीप, हड्डियां तथा अन्य दुर्गंधमय पदार्थ बरसने लगते हैं। युद्ध भूमि में ऐसा अंधकार छा जाता है कि हाथों को हाथ नहीं सूझता। वानरों को भयभीत देख श्री राम एक ही वाण से इस माया दृश्य को छिन्न भिन्न कर देते हैं।

अभी आप कार्यक्रम सुन रहे थे मानस गान भाग संख्या 321। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे के 7:30 हुए हैं। कार्यक्रम सुने सुप्रभात।

0: 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, सुप्रभात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ भगवान सिंह, और बात करें कलम से सिपाही मुंशी प्रेमचंद। जी हाँ श्रोताओं, आज प्रेमचंद जी का जन्म दिवस है। हिंदी साहित्य के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद का जन्म दिवस 31 जुलाई को, यानी कि आज ही के दिन हम मनाते हैं। इकतीस जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लमही गांव में इनका जन्म हुआ, और मूल नाम, वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, और उपनाम की अगर बात करें, शुरुआत में वे नवाब राय नाम से उर्दू में लिखते थे, बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। मुंशी प्रेमचंद का साहित्यिक योगदान हम सभी को पता है। वे उपन्यास के सम्राट, उन्हें हिंदी उपन्यासों का सम्राट कहा जाता है। उनकी जो रचनाएं हैं, गोदान, गबन, कर्मभूमि, निर्मला और मान सरोवर, ये सभी कहानियों का संग्रह है, जो कि उनकी उत्तम कहानियों में से है। इनकी रचनाओं में गरीब, किसानों, दलितों और महिलाओं के संघर्ष साफ दिखाई देते हैं। श्रोताओं, कलम का सिपाही प्रस्तुत पुस्तक में प्रेमचंद की जीवनी का वर्णन है। प्रेमचंद हमेशा अपनी रचनाओं और अपने प्रगतिशील पत्रों हंस तथा जागरण के माध्यम से स्वदेशी, सांप्रदायिक सद्भाव, नारी उत्थान और दलितों उद्धार का संदेश देते रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लमही गांव में हुआ। उनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उपन्यास सम्राट इन्हें कहा जाता है। माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम अजयब राय। बचपन गरीबी में बीता। कम उम्र में माता पिता का साया उठ गया। संघर्षों के बीच मैट्रिक और फिर बीए पास किया। लगभग 300 कहानियां इन्होंने लिखी है, और मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जीवन भर बिना थके समाज की सच्चाई, गरीबों और किसानों की पीड़ा को अपनी रचनाओं में पूरी ईमानदारी से लिखा। उनके पुत्र अमृत राय ने सन 1962 में उनके जीवन पर इसी नाम से एक प्रसिद्ध जीवनी लिखी थी। सच्चाई का लेखन उन्होंने समाज के शोषित वर्ग, किसान, गरीबों और दुख दर्द को अपनी कलम से कागज पर उतारा। जीवन भर आर्थिक तंगी, मुश्किलों के बाद भी वे सिपाही की तरह डटे रहे और आखिरी सांस तक साहित्य की सेवा करते रहे। उनके बेटे अमृत राय ने उनके जीवनी का नाम प्रेमचंद कलम का सिपाही रखा, जिसके बाद यह उपाधि बहुत प्रसिद्ध हो गई। तो ऐसे थे हमारे मुंशी प्रेमचंद, जिनको हम

श्रोता लता मंगेशकर की आवाज़ में बड़ा ही सुंदर ये गीत आपने सुना, और अब हम बात करेंगे आचरण की सभ्यता। आचरण की सभ्यता ये हम सभी जानते हैं कि हमारे आचार व्यवहार से ही हमें और हमारे व्यक्तित्व को जाना जाता है। जैसा हम आचरण करते हैं वैसा ही हमारा जो भी व्यक्तित्व है वो सामने आता है। और यूं कहें कि व्यक्ति अपने स्वभाव से, अपने रीति नीति से ही जाना जाता है। और आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध प्रेरणादायक निबंध है। इसमें निबंध विद्या, धन, कला, धर्म से भी ज़्यादा शुद्ध आचरण

यानी कि अच्छे व्यवहार को महत्वपूर्ण मानता है, जो प्रेम, नम्रता और शांति का संदेश देता है। श्रोताओं, आचरण की सभ्यता विद्या, कला, साहित्य और धन से भी अधिक चमकदार और महान है। अच्छे आचरण वाले लोग बिना शोर मचाए मौन रहकर दुनिया की भलाई करते हैं। सच्चे आचरण की दुनिया में कोई ऊंच नीच, लड़ाई झगड़ा, द्वेष नहीं होता, वहाँ केवल प्रेम और एकता ही होती है। दया, प्रेम, उदारता आचरण का असली गहना है, भाषा है, अच्छे विचार हैं। शब्दों से ज़्यादा मनुष्य के जीवन पर मौन और अच्छे आचरण का प्रभाव हमेशा लिए रहता है। श्रोताओं, आचरण की सभ्यता मनुष्य के जीवन की वह उत्कृष्ट अवस्था है जहाँ दया, प्रेम और उदारता उसके स्वभाव का अंग बन जाते हैं। यह विद्या, कला, धन और पद से भी अधिक मूल्यवान और गुणकारी है। प्रसिद्ध निबंधकार सरदार पूर्ण सिंह के अनुसार, यह जीवन का एक ऐसा सुंदर रूप है जो शब्दों के बिना भी दूसरों के दिलों पर राज करता है। श्रोताओं, इसकी मौन भाषा की अगर बात करें तो शब्दों से परे जो चुपचाप रहकर भी इंसान के दिल पर गहरा प्रभाव छोड़ती है, सच्चा सौंदर्य, प्रेम, दया, उदारता ही इस सभ्यता के असली और जीवंत रूप है। अच्छे आचरण वाला एक साधारण या गरीब इंसान भी राजाओं के दिलों पर अपना अधिकार जमा सकता है। इसकी उपस्थिति से मन का क्लेश मिटता है और चारों तरफ पवित्रता और प्रेम की सुगंध फैल जाती है। फिर चाहे कोई व्यक्ति विशेष या कोई भी उसकी बुराई करे, पर वह अपने कर्म पर अडिग रहता है। अपना जो भी कर्म है वो अपने आचरण से, सदाचार से उसे निभाता रहता है। आइए सुने ये गीत।

श्रोताओं, गीत आपने सुना, इसे गाया था प्रदीप ने और फिल्म का नाम था चंडी पूजा। आइए बात करें देश प्रेम की। श्रोताओं, देश के प्रति प्रेम, जिसे देशभक्ति भी कहते हैं, अपनी मातृभूमि के प्रति सम्मान, निष्ठा और गहरे लगाव की भावना है। यह केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे अच्छे कर्मों और कर्तव्यों में भी दिखना चाहिए। जिस भूमि पर हम जन्म लेते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं, उसका हमेशा हमें आदर करना चाहिए। देश के कानून, उसका पालन करना, ईमानदारी से अपने काम को पूरा करना, ये भी सच्चा देश प्रेम है। देश के सभी लोगों के साथ मिलजुल कर रहना और भाईचारा बढ़ाना, और बात करें कि अपने आसपास और सार्वजनिक स्थानों को गंदा न करना, स्वच्छ बनाए रखना, ये संयोग है सबसे बड़ा। संपत्तियों की रक्षा, सरकारी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, अधिक से अधिक पेड़ लगाना और पानी की बचत करना, मन लगाकर पढ़ाई करना और अपने काम से देश को आगे बढ़ाना, ये भी हमारे देश के प्रति प्रेम को दर्शाता है। श्रोताओं, देश प्रेम का अर्थ है अपनी मातृभूमि के प्रति गहरा प्यार और सम्मान और निष्ठा रखना, सभी का आदर, सभी का सम्मान, ये भी देश प्रेम है। देशवासियों के साथ मिलजुल कर रहना और भाईचारे को बढ़ावा देना, देश की एकता, अखंडता और विकास के लिए ईमानदारी से काम करना, जो भी हम काम करते हैं, किसी भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं, किसी भी व्यवस्था में हम काम कर रहे हैं, उसे बड़ी ईमानदारी से हमें पूरा करना चाहिए। और एक सच्चा देशभक्त वही है जो अपने कर्म को अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए लगा दे और एक ऐसा उदाहरण बने कि आने वाली पीढ़ियां उसे याद करें। और एक अच्छा देश प्रेमी हमें यह भी बतलाता है कि हम अपने देश के प्रति पूरे सद्भावना के साथ सभी के

0: साथ मिलजुल कर काम करें। आइए सुने ये गीत।
1: नफरत

देश प्रेमी। अभी आपने इस फिल्म में सुना मोहम्मद रफ़ी को। गीतकार आनंद बख्शी और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। आइए अब सुनते हैं मन्ना डे और साथियों की आवाज़ में ये गीत।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आज का सुप्रभात कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। संसद में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक पारित होने का स्वागत किया, कहा इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख समुद्री मार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और अन्य हथियारबंद गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण के लिए एक सहमति बनने की घोषणा की। गुजरात के अनेक भागों में अगले 48 घंटों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। मछुआरों को कल तक समुद्र में न जाने की सलाह। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लवप्रीत सिंह ने भारोत्तोलन में रजत और सीमा कालीरमना ने डिस्कस थ्रो कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। संसद के लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया गया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से ये विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रूपये तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल करने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के हित रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है।
4: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
5: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके।
4: इन ऑर्डर टू मेक इट मोर स्ट्रिंजेंट मोर डिटरेंट इज बीइंग ब्रॉट इन।
3: चर्चा की शुरुआत में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावे के लिए बदलाव किए हैं।
6: ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना।
3: वहीं जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने मेडिकल शिक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की है। विधेयक का समर्थन करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने विरोध प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकार का समर्थन किया, लेकिन प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल की गई भाषा पर सवाल उठाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि नीट परीक्षा सभी विद्यार्थियों को शामिल होने का मौका देती है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बेहतर दर्शन करके देखना प्रेरक है। उन्होंने विपक्ष पर युवाओं को गुमराह करने का भी आरोप लगाया।

0: आज सदन की कार्यवाही 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधेयक का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक की समस्या को ध्यान में रखते हुए संसद ने कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है।
1: पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा।
0: इससे पहले संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख जलमार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस बारे में विचार विमर्श के लिए रियाद में संबंधित देशों के सैन्य अधिकारियों की बैठक के बाद ये घोषणा की गई।
2: संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि इस सुरक्षा गठबंधन का उद्देश्य लगातार बढ़ रही समुद्री चुनौतियों से निपटना है। यह तालमेल समुद्री सहयोग, मुक्त नौवहन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग और ऊर्जा आपूर्ति स्रोत सुरक्षित करने की रूपरेखा तय करेगा। यह गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रावधानों के अनुरूप बाबल मंदीप जलडमरू मध्य, लाल सागर और अदन की खाड़ी में साझा समुद्री हितों की सुरक्षा उपायों का हिस्सा है। सदस्य देशों ने कहा कि यह गठबंधन किसी भी देश गठजोड़ या अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ को लक्षित करके नहीं बनाया गया है, बल्कि पूरी तरह रक्षात्मक उद्देश्य के लिए है। इसकी समस्त गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुपालन में होंगी तथा किसी भी देश की संप्रभुता और नौवहन स्वतंत्रता का सम्मान करेगी। सदस्य देशों में सऊदी अरब को गठबंधन का नेतृत्व सौंपने और स्थायी मुख्यालय बनाने की सहमति बनी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा में हमास और अन्य सशस्त्र गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण पर बोर्ड ऑफ पीस में सहमति बन गई है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह समझौता गजा में नई फलस्तीनी सरकार के शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इस समझौते से इसराइल को भी जरूरी सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि गजा का इस्तेमाल आतंकी हमलों के ठिकाने के रूप में नहीं होगा। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गजा में पूरी तरह निरस्त्रीकरण की योजना पर सहमति बनी है और जल्द आधिकारिक वक्तव्य जारी किया जाएगा। अभी इस समझौते पर इसराइल की प्रतिक्रिया नहीं आई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। स्थानीय अधिकारी अब महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रहे हैं। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में गुजरात के व्यापक क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। और ब्यूरो के साथ हैं हमारी संवाददाता।
3: मौसम विभाग ने आज मध्य और दक्षिण गुजरात के 13 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिनमें अहमदाबाद, आणंद, सूरत, नवसारी और वलसाड़ जैसे

0: शामिल है। सभी उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें पूरी तरह से मुस्तैद है। एहतियात के तौर पर अहमदाबाद, नवसारी, भरूच सहित कई प्रभावित जिलों में आज स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। इस बीच राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को निचले और बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को तेजी से शेल्टर होम में स्थानांतरित करने के सख्त निर्देश दिए है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: वहीं केरलम से हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि समुद्र में मछली पकड़ने पर लगी रोक आज आधी रात से हटा ली जाएगी। समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वीं शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी क्रांतिकारी उधम सिंह के शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में उधम सिंह को अप्रतिम साहस और शौर्य का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि उधम सिंह ने लंदन में माइकल ओडायर को मौत के घाट उतारकर जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लिया और ब्रिटिश सरकार को कड़ा संदेश दिया। आज उपन्यास और कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती है। साहित्य में मुंशी प्रेमचंद का स्थान अप्रतिम है। उन्होंने गोदान, गबन और रंगभूमि जैसी कालजयी कृतियों की रचना की। गृहमंत्री अमित शाह ने उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इस महान कथाकार ने समाज की पीड़ा, असमानता और शोषण को शब्द दिया। और अब बात खेलों की करते हैं। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों को 110 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता, जबकि सीमा कलीरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत तीन भारतीय भी भाला फेंक के फाइनल में पहुंचे, जबकि ट्रिपल जंपर्स के दो भारतीय खिलाड़ी प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने भी फाइनल में जगह बनाई। वरिष्ठ भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। श्री रहाणे ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि संन्यास लेने का ये सही समय है।
2: The reality of life is that everything has a beginning.
3: जिंदगी की सच्चाई यही है कि हर चीज की शुरुआत होती है और उसका अंत भी होता है, और जब वो समय आता है तो आपको बस उसका सम्मान करना होता है और आगे बढ़ना होता है। मैंने अपनी बैटिंग में हमेशा टाइमिंग पर भरोसा किया है और हमेशा इसके महत्व को समझा है। मुझे लगता है कि अब आगे बढ़ने और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का सही समय है।
1: अजरबैजान के बाकू में कल अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान निकिता सहरावत ने रजत पदक जीता, जबकि कामना बाबुल और गरिमा ने महिला वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किए। 135वीं डूरंड कप प्रतियोगिता आज शिलांग में शुरू हो रही है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद फरहत। लोकसभा के बाद राज्यसभा द्वारा एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक को मंजूरी देने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। हिंदुस्तान लिखता है, लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास, विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। जनसत्ता के शब्द हैं, लोक परीक्षा संशोधन विधेयक को मंजूरी, राज्यसभा में सत्ता पक्ष विपक्ष में टकराव। दैनिक जागरण ने जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में पैलेट गन इस्तेमाल किए जाने की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के शब्द प्रकाशित किए हैं। असाधारण हालत में पैलेट गन चलाने का अधिकार। लोकसत्य लिखता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पैलेट गन के प्रयोग पर रोक नहीं, विशेष परिस्थिति में कर सकते हैं इस्तेमाल। ईरानी सेना के ठिकानों पर अमरीकी हमले, जॉर्डन में अमरीका के जेट तबाह करने का दावा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है, कुवैत में चीन की कंपनी की इमारत बनी निशाना, पहली बार इजिप्ट तक हुए ड्रोन अटैक। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर अमेरिका ईरान युद्ध के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, अर्थव्यवस्था के लिए बैंकों से आई अच्छी खबर। लेख में बताया गया है कि महंगाई और विश्व युद्ध जैसी स्थिति के बावजूद घरेलू खपत में कमी नहीं आई है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था को सहारा मिल रहा है। अब पाठ्यक्रम का एक हिस्सा भारत में, अगला विदेश में पूरा कर सकेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में सेमेस्टर अवे प्रोग्राम के विरोध के बाद कार्यकारी परिषद से मिली मंजूरी, अमर उजाला की सुर्खी है। अब किताबें पाठकों से करेंगी सीधी बातचीत, एआई ने पढ़ने का बदला अनुभव, अटके तो किताब से ही पूछिए, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक पारित होने का स्वागत किया, कहा इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सऊदी अरब और

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। पार्लियामेंट ने पेपर लीक के लिए सजा, सख्त सजा के साथ पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल मंजूर कर लिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ये कहते हुए इस बिल को मंजूर किए जाने का खैर मकदम किया है कि ये इम्तिहानात के निज़ाम को मजीद मुतहर्रिक बनाएगा। सऊदी अरब और 13 दीगर ममालिक ने मगरबी एशिया में अहम आबी गुजरगाहों में जहाजरानी को तहफ़ फराहम करने की खातिर बहरी दिफाई इतिहाद का ऐलान किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और दीगर मुसल्ला ग्रुपों को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्ला करने के लिए मुआहदे का ऐलान किया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आइंदा 48 घंटे में गुजरात के मुख्तलिफ हिस्सों में इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। माहीगीरों से कल तक समंदर में न जाने के लिए कहा गया है। और दौलत मुश्तरका खेलों में वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंह ने चांदी का तमगा जीता है। सीमा कलीरमना ने डिस्कस थ्रो में कांसे का तमगा हासिल किया। अब खबरें तफसील से। कल राज्यसभा में मंजूर होने के बाद पार्लियामेंट ने पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया है। बुध के रोज़ लोकसभा में इस बिल को मंजूर कर लिया गया था। इस बिल में मुख्तलिफ अहम ज़ाब्ते शामिल किए गए हैं, जिनमें 10 साल तक की सज़ा, 10 करोड़ रुपये तक जुर्माना और कसूरवार अफराद की इमलाक जब्त किए जाने जैसी सख्त सज़ाएँ शामिल हैं। मामलात को जल्द निपटाए जाने को यकीनी बनाने की खातिर ये बिल हर रियासती हुकूमत और मरकज़ के सिरे इंतज़ाम इलाके को इख्तियार देता है कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत के लिए खुसूसी फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करें। राज्यसभा में बिल पर बहस का जवाब देते हुए अमले और वज़ीर आज़म के दफ्तर के वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस मामले से भारत के हर शहरी का ताल्लुक है और इस मुल्क का हर शहरी ज़ाती तौर पर इससे मुंसलिक है। उन्होंने कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 गुज़श्ता दहाई में यकसर तब्दीली वाली साबित हुई है। ऐवान में बिल पेश करते हुए डॉक्टर सिंह ने मोदी हुकूमत के पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों और पेपर लीक को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने के अज़्म का इयादा किया। बहस में शामिल होते हुए अपोजिशन के रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुजव्वजा तरामीम पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों को रोकने में मुअस्सर साबित नहीं होंगी। बीजेपी, कांग्रेस, JDU, समाजवादी पार्टी, TMC, DMK, AIADMK, NCP, आप, BJD, RJD, CPIM और दीगर ने भी इस बिल पर बहस में हिस्सा लिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत इम्तिहान का एक भरोसेमंद निज़ाम तैयार करने के लिए लगातार एक के बाद एक कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि पिछली कई दहाइयों से हर रियासती सरकार और मरकजी हुकूमत ने पेपर लीक के मसले का सामना किया है, जिसने तलबा के मुस्तकबिल को दाव पर लगा दिया है। उन्होंने कहा कि इस बात को जहन में रखते हुए ही रियासतों और मरकज में तालीम और इम्तिहान के निज़ाम में इस्लाहात करना लाजिमी हो गया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पार्लियामेंट ने एक बिल मंजूर किया जिसमें सख्त कानूनी शिकों को शामिल किया गया है।
1: पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा।
0: कौम आज इनकलाबी मुजाहिदे आज़ादी शहीद उधम सिंह को उनके 87वें यौम शहादत पर खिराज अकीदत पेश कर रही है। शहीद उधम

0: सिंह का ताल्लुक गदर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से था। साल 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग कत्लेआम का बदला लेने के लिए ऊधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को पंजाब में बरतानिया के साबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को कत्ल कर दिया था। पेश है एक रिपोर्ट।
1: जलियांवाला बाग कत्लेआम की तलख यादें ऊधम सिंह को उस वक्त तक परेशान करती रहीं जब तक कि उन्होंने लंदन के कैक्सटन हॉल में माइकल ओडायर को गोली मारकर हलाक नहीं कर दिया। जेल में रहते हुए वो राम मोहम्मद सिंह आज़ाद के नाम इस्तेमाल करते थे, जो भारत में 3 बड़े मजाहब और 9 आबादियाती निज़ाम के खिलाफ उनके जज्बात की अक्कासी करता है। उन्हें 1940 में आज ही के दिन कत्ल का मुजरिम करार देकर फांसी दे दी गई थी। इस इनकलाबी मुजाहिद आज़ादी की शहादत को मनाने के लिए पंजाब में उनकी जाए पैदाइश सोनम में एक रियासती सतह के प्रोग्राम का अहतमाम किया जाएगा। हरियाणा सरकार भी आज सनौर में एक प्रोग्राम के दौरान उन्हें खराज अकीदत पेश कर रही है। जालंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज मुजाहिद आज़ादी ऊधम सिंह के यौम शहादत के मौके पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने ऊधम सिंह को गैर मामूली जुरत और बहादुरी की एक अलामत करार दिया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत के महकमाए मौसमियात ने अगले 48 घंटों के दौरान गुजरात के बड़े हिस्सों में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई करते हुए मौसम से मुतालिक वार्निंग जारी की है। माहीगीरों को सख्ती से मशवरा दिया गया है कि वो 1 अगस्त तक मछली पकड़ने समंदर में ना जाएं। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि रियासती इंतजामिया पूरी तरह अलर्ट है और वो सभी एहतियाती इकदाम कर रही है।
2: गुजरात में मानसून की सूरत हाल संगीन है, क्योंकि महकमा मौसमियात ने आज 13 ज़िलों के लिए बहुत शदीद बारिश के सिलसिले में रेड अलर्ट जारी किया है। जिन ज़िलों में शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, उनमें वस्ती और जनूबी गुजरात, नीज, अहमदाबाद, आनंद, सूरत, नवसारी और वलसाड़ शामिल हैं। अहमदाबाद और नवसारी समेत बहुत से मुतासरा ज़िलों में स्कूल और कॉलेज आज एहतियात के तौर पर बंद रहेंगे। इस दौरान रियासती सरकार ने ज़िला इंतजामिया को सख्त हिदायत जारी की हैं, ताकि नशेबी इलाकों में रहने वाले लोगों को तेज़ी से बाहिफाजत निकालने को यकीनी बनाया जा सके और उन्हें सैलाब से मुतासर इलाकों से निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा सके। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: जम्मू और कश्मीर में अहदेदारान ने आज जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा NH 44 पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त को मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रखने का हुक्म दिया है, ताकि समरोली मेलाढ़ा के नज़दीक उधमपुर चेनानी हिस्से पर बहाली के काम में सहूलत हो सके। केरलम के साहिल पर आज रात ट्रॉलिंग पर पाबंदी खत्म कर दी जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: केरल के साहिल पर जुमे और हफ्ते की निसफ शब में मछलियां पकड़ने वाली ट्रॉलिंग पर पाबंदी खत्म कर दी जाएगी। ट्रॉलिंग पर सालाना पाबंदी इसलिए नाफिज की गई थी ताकि समुद्र में मछलियों की अफजाइश नस्ल में आसानी हो। फिशिंग सेक्टर में हजारों वर्कर्स मछलियां पकड़ने के नए सीजन की तैयारियों में मसरूफ हैं। मछलियां पकड़ने वाले उन माहीगीरों ने थिरुअनंतपुरम, कोलम, कोझिकोड और दीगर इलाकों के नज़दीक बंदरगाहों पर पहले ही पहुंचना शुरू कर दिया है, जो अपने आबाई कस्बे में लौट आए थे। दरियासना इंतहाई खराब मौसम और मछलियां पकड़ने से मुतालिक सरगर्मियों पर पाबंदियों के इम्कान ने माहीगीर बिरादरी में तश्वीश पैदा कर दी है। केरल में 14 ज़िलों में से 11 ज़िलों में आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। थिरुअनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: सऊदी अरब और 13 दीगर ममालिक ने एक बहरी दिफाई इत्तेहाद कायम किया है, जिसका मकसद मगरबी एशिया में अहम आबी गुजरगाहों में जहाजरानी को तहफ्फुज़ फराहम करना है। इस इत्तेहाद पर रियाज में मुतअद्दिद मुल्कों की फौजी शख्सियात की मुलाकात के बाद ये ऐलान किया गया है। इत्तेहाद की जानिब से जारी एक मुश्तरका बयान में कहा गया है कि कसीर मुल्की बहरी दिफाई इत्तेहाद का मकसद आलमी बहरी सिक्योरिटी को दरपेश बढ़ते चैलेंजों से निमटना है। इसमें कहा गया है कि ये इत्तेहाद बहरी दिफाई इश्तराक के लिए एक तरीक़ा कार फराहम करेगा, जिसका मकसद बहरी सिक्योरिटी में इजाफा करना, आज़ादाना जहाजरानी को तहफ़ फराहम करना, तजारत के बैन अल-अक़वामी रास्तों को महफूज बनाना और तवानाई की सप्लाई को यकीनी बनाना है। ये इत्तेहाद आबनाए बाबल मंदब, बहर अहमर और खलीज अदन में मुश्तरका बहरी मफादात के तहफ़ की कोशिशों का एक हिस्सा है, जो बैन अल-अक़वामी कानून के जाब्तों से मुताबिकत रखता है।

0: इस इत्तेहाद के बानी मेंबरान में सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, मिस्र, उर्दुन, यमन, नाइजीरिया, सूडान, जिबूटी और सोमालिया शामिल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमन से मुतालिक बोर्ड ने गजा में हमास और दीगर मुसल्ला ग्रुपों को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्ला करने के लिए एक समझौता किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर ट्रंप ने कहा कि यह समझौता गजा के लिए कतई तौर पर एक अहम कदम है, जहां फलस्तीन की नई हुकूमत अमन से मुतालिक बोर्ड के साथ मिलकर काम करेगी ताकि फलस्तीनी अवाम की मदद की जा सके। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसराइल को अपनी सिक्योरिटी का हक हासिल होगा, जिसका वो मुस्तहिक है, और गजा को दहशतगर्दाना हमलों के लिए एक बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हमास के एक सीनियर अफसर ने बताया कि वो गजा में हमास और दीगर ग्रुपों को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्ला करने के लिए तैयार हो गए हैं और इस सिलसिले में जल्द एक सरकारी बयान जारी किया जाएगा, जबकि इसराइल को इस समझौते पर अभी अपनी राय देनी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में कल कोयले की एक कान में धमाके के बाद कम से कम 18 कानकुन हलाक हो गए और 24 दीकर उसमें फंस गए। ये धमाका बज़ाहिर मीथेन गैस की वजह से हुआ। अहलकारों के मुताबिक इस धमाके के कुछ घंटे बाद इब्तदाई तौर पर 7 कानकुनों की लाशें बरामद की गईं और इमरजेंसी सूरत हाल से निमटने वाले अफराद को बाद में मजीद 11 लाशें मिलीं। हुकूमत के कानों से मुतालिक इंस्पेक्टर गनी बलोच ने कहा है कि जब तक फंसे हुए कानकुनों का पता नहीं चल जाता, उस वक्त तक बचाव कार्रवाई जारी रहेगी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इस हफ्ते के शुरू में आम शहरियों की अंधाधुंध गिरफ्तारियों के बाद पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में मुजाहरे जारी हैं, जिनमें 40 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए हैं। मकबूजा इलाके में मकामी हुकाम अब उन ख़वातीन को निशाना बना रही हैं जो अपने बुनियादी हकूक के लिए मुजाहरे कर रही हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी तादाद में जमा ख़वातीन मुजाहरीन पर फायरिंग भी की। ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में कल रात भारतीय वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंह ने मर्दों के 110 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा जीता, जबकि सीमा कलीरमना ने खवातीन के डिस्कस थ्रो में कांसे का तमगा जीता। ऑस्ट्रेलिया 110 तमगों के साथ पहला मकाम बरकरार रखे हुए है, जबकि भारत 17 तमगों के साथ 10वीं पोजिशन पर है। भारत ने सोने के 3, चांदी के 10 और कांसे के 4 तमगे जीते हैं। इससे पहले कल दिन में नीरज चोपड़ा ने मर्दों के नेजा फेंकने के फाइनल मुकाबले के लिए क्वालिफाई कर लिया है और रोहित यादव के अलावा यशवीर सिंह भी फाइनल में पहुंच गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज ग्लासगो दौलत मुश्तरका खेलों में एथलीट सीमा कलीरमना को खवातीन के डिस्कस थ्रो मुकाबले में कांसे का तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने सीमा कलीरमना की इस हुसूलयाबी के लिए तारीफ की है और कहा है कि ये उनकी लगन, सख्त मेहनत और इस्तेकामत का एक वाज़ेह सबूत है। आज़रबाईजान के बाकू शहर में 17 साल तक की उम्र की कुश्ती आलमी चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान निकिता शेरावत को ख़वातीन के जुमरे के फाइनल में अमरीकी पहलवान से हारने के बाद चांदी के तमगे पर इक्तफा करना पड़ा, जबकि कमना बाबल और करीमा ने कांसे के तमगे जीते हैं। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान।
1: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। रोजनामा इनकलाब ने इस खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है कि वजीर आजम ने काबीना कमेटी बराए सलामती की खसूसी मीटिंग तलब की। मस्कूरा मीटिंग में मगरबी एशिया के बहरान और भारतीयों के तहफ़ के अलावा तवानाई और खाद के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। तारीखी आलमी बहरी सफर से वापस लौटी तीनों अफवाज की खवातीन अफसरान की वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने की इज्जत अफजाई। इस खबर को रोजनामा प्रताप ने अहमियत के साथ पहले सफ़े पर जगह दी है। शुमाली भारत में 4 अगस्त तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई, ये खबर सभी अखबारों में नुमाया है। इस दौरान गरज चमक और तेज़ हवाओं के लिए वार्निंग जारी की गई है। रोजनामा इनकलाब की एक अहम शह सुर्खी है, दिल्ली में कारोबार को आसान बनाने की असलाहत मुहिम तेज, इसके तहत तमाम ज़ेर-ए-इल्तवा कामों को अगस्त के वस्त तक मुकम्मल करने की हिदायत।
0: और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट ने पेपर लीक के लिए सख्त सजा के साथ पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल मंजूर कर लिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यह कहते हुए इस बिल को मंजूर किए जाने का खैर मकदम किया है कि ये इम्तिहानात के निज़ाम को मजीद मुतहर्रिक बनाएगा। सऊदी अरब और 13 दीगर ममालिक ने मगरबी एशिया में

0: इसी भक्ति रचना के साथ ही आज का सुगम संगीत कार्यक्रम संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे की 9 बजने वाले हैं। कुछ देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से।
1: हमारे केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल को पेपर लीक रोकने के लिए

0: अचार। मुख्य समाचार। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल को पेपर लीक रोकने के लिए महत्वपूर्ण बताया। राष्ट्रमंडल शांति मध्यस्थता सम्मेलन आज से जयपुर में। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत उद्घाटन करेंगे। प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी पर अब तक करीब 68,000 सुझाव प्राप्त हुए और राजस्थान पुलिस ने कांवड़ यात्रियों से पहचान पत्र साथ रखने और निर्धारित रास्तों का उपयोग करने की अपील की। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी, जबकि लोकसभा से विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। विधेयक में सख्त दंड और जुर्माने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। विधेयक के पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार विश्वसनीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि पारदर्शी और प्रौद्योगिकी आधारित परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानून और परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई विद्यार्थियों के कठिन परिश्रम की रक्षा और विकसित भारत के नींव मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: दोनों सदनों ने कठोर प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिल करके विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चलें।
0: विधानसभा का छठा सत्र 20 अगस्त से शुरू होगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने सत्र बुलाने की अधिसूचना जारी कर दी है। श्री देवनानी ने कहा कि सत्र के सुचारू और प्रभावी संचालन के लिए विधानसभा सचिवालय ने सभी आवश्यक प्रशासनिक और व्यवस्थागत तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही संसदीय नियमों और परंपराओं के अनुरूप संचालित की जाएगी। राष्ट्रमंडल शांति मध्यस्थता सम्मेलन आज से जयपुर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन का उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत करेंगे। इसका आयोजन राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, कॉमनवेल्थ लॉयर्स एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और निवारण मीडिएटर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ओर से किया जा रहा है। शांति मध्यस्थता और कानून का शासन विषय पर होने वाले इस सम्मेलन में 50 से अधिक देशों के न्यायविद, विधि विशेषज्ञ, नीति निर्माता और अन्य प्रतिनिधि शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान मीडिएशन, कानून के शासन और न्याय तक आसान पहुंच से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श होगा। साथ ही वाणिज्यिक, पारिवारिक, पर्यावरण और सीमा पार विवादों के समाधान से जुड़े विभिन्न विषयों पर तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय MGSU का विशेष दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े समारोह की अध्यक्षता करेंगे। विश्वविद्यालय के कुलगुरु आचार्य मनोज दीक्षित ने बताया कि ये समारोह जयपुर स्थित लोक भवन में होगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर और प्रख्यात शिक्षाविद और समाज सेवी प्रोफेसर अच्युत सामंत को PhD की मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। राज्यपाल श्री बागड़े ने कहा है कि राजस्थानी केवल भाषा नहीं बल्कि राजस्थान की संस्कृति और पहचान है। वे कल जयपुर में आयोजित राजस्थान गौरव सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री बागड़े ने बताया कि राजस्थानी भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में राजस्थानी अध्ययन केंद्र खोले जाएंगे। उन्होंने संस्कृति और भाषा के संरक्षण में सभी से भागीदारी का आह्वान किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली विभूतियों को राजस्थान गौरव सम्मान से नवाजा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी के संबंध में अब तक करीब 68,000 सुझाव प्राप्त हुए हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई गृह विभाग की बैठक में ये जानकारी दी गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को यूसीसी के लिए अधिक से अधिक लोगों की राय और सुझाव प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप, QR कोड और SMS सहित सभी उपलब्ध माध्यमों का प्रभावी उपयोग करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला और विभागीय अधिकारियों से जन जागरूकता अभियान चलाने को भी कहा। मुख्य सचिव ने राज्य स्तरीय नार्को समन्वय केंद्र की बैठक भी ली। उन्होंने हर जिले में ड्रग्स से जुड़े 10 प्रमुख मामलों की पहचान करने और 5 कुख्यात ड्रग माफियाओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। लोकसभा अध्यक्ष और कोटा बूंदी सांसद ओम बिरला ने नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू के साथ कोटा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि बड़े विमानों को संभालने में सक्षम 3.2 किलोमीटर लंबे रनवे के साथ कोटा हवाई अड्डा राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र के लिए बेहतर कनेक्टिविटी और निवेश का द्वार बनेगा। उन्होंने कहा कि परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए सभी संबंधित विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं। राजस्थान पुलिस ने कांवड़ यात्राओं के मद्देनजर श्रद्धालुओं के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कानून और व्यवस्था के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक वीके सिंह ने बताया कि 11 अगस्त तक चलने वाली यात्राओं के दौरान कांवड़ियों से वैध पहचान पत्र साथ रखने को कहा गया है। साथ ही निर्धारित रास्तों का ही उपयोग करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई है। साथ ही हथियार, नशीले पदार्थ और निर्धारित सीमा से अधिक आवाज वाले डीजे पर रोक रहेगी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर कांवड़ियों का पैदल और वाहनों से आवागमन भी प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस अधिकारियों को सभी संवेदनशील मार्गों पर कड़ी निगरानी रखने और सोशल मीडिया पर नजर रखने के साथ श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र की नेहा सोलंकी को ग्रासरूट्स इनोवेटर रिकॉग्निशन 2026 से सम्मानित किया जाएगा। आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में होने वाले कार्यक्रम में उन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने सेरेब्रल पाल्सी तथा अन्य न्यूरो मोटर समस्याओं से पीड़ित बच्चों के लिए बड़ी कुर्सी विकसित करने के लिए नेहा का चयन किया है। नेहा ने बताया कि यह विशेष कुर्सी बच्चों को सुरक्षित और सही मुद्रा में बैठने में मदद करती है।
1: हमने एक कुर्सी बनाई है जिसका नाम बड़ी चेयर है। ये कुर्सी स्पेशल नीड बच्चे हैं उनके लिए काम आती है, जो बैठ नहीं सकते, जिसमें सेरेब्रल पाल्सी और दूसरे न्यूरो मसल डिसऑर्डर्स के बच्चों के लिए काम आएगी। ये 4 साल से लेकर 13 साल तक के बच्चों के लिए काम आने वाली कुर्सी है। इसमें बच्चा स्कूल जा सकता है, थेरेपी सेंटर में स्पीच थेरेपी और ऑक्यूपेशन थेरेपी कर सकता है, और सबसे ज्यादा ये कुर्सी बच्चों को घर में काम आ सकती है, जहाँ वो सबसे ज्यादा अपना समय बिताते हैं। उनके माँ बाप उनको कुर्सी पे छोड़ के अपने दूसरे घर के काम कर सकते हैं।
0: राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद ऊधम सिंह के 87वीं शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ऊधम सिंह गदर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े थे। उन्होंने अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए 13 मार्च 1940 को ब्रिटिश पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को मौत के घाट उतार दिया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्हें नमन करते हुए लिखा कि सरदार ऊधम सिंह का संकल्प, स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति समर्पण इतिहास में सदैव अमर रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल को पेपर लीक रोकने के लिए महत्वपूर्ण बताया। राष्ट्रमंडल शांति मध्यस्थता सम्मेलन आज से जयपुर में। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत उद्घाटन करेंगे। प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी पर अब तक करीब 68,000 सुझाव प्राप्त हुए और राजस्थान पुलिस ने कांवड़ यात्रियों से पहचान पत्र साथ रखने और निर्धारित रास्तों का उपयोग करने की अपील की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे के 9:10 हुए हैं। कार्यक्रम आप सुने मरुमंगल, कलाकार हैं जग्गू मालिका।

0: सर्वश्रेष्ठ असली भरोसेमंद मोनो जिंक बनाने वाली 48 वर्षों से किसानों की खुशहाली हेतु समर्पित दयाल फर्टिलाइजर्स अब धान उत्पादकों किसान भाइयों के लिए लेकर आई है धान प्रधान और धरती गोल्ड। अधिक पैदावार और उत्तम क्वालिटी के लिए एक बार जरूर प्रयोग करें और पाएं कम कीमत में ज्यादा मुनाफा, क्योंकि दयाल का है सपना, खुशहाल हो हर किसान अपना।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, मरुमंगल कलाकार हैं जग्गू मालिका, कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से इस समय ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं।

इसी लोकगीत के साथ ही आज का मरुमंगल कार्यक्रम आप संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है।

श्रोताओं, गीत आपने सुना, फिल्म का नाम टू स्टेट्स, और इसे गाया था अरिजीत सिंह और चिन्मय श्रीपदा ने। गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत शंकर एहसान लॉय का था। आइए अब सुने।

उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्म का नाम है आ अब लौट चलें। इसकी धुन तैयार की है समीर ने और संगीत है नदीम श्रवण का।

आइए सुने कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाज में फिल्म लम्हे बरसात की। गीत आप सुने, गीतकार जावेद अख्तर हैं और संगीत आरडी बर्मन का है।

हम है रही प्यार की। अभी आपने इस फिल्म में कुमार सानू के अग्नि को सुना। आइए अब सुने। फिल्म इंसाफ का ये गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में।

इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का गार्डन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे के 10 बजे हैं। आइए कार्यक्रम सुने गा मेरे मन गा।

0: कॉल करें।
1: श्रोता अंतराल से पहले गीत आपने सुना, फिल्म का नाम था गीत गाता चल और इसे गाया था जसपाल सिंह और साथियों ने। गीतकार रविंद्र जैन थे और संगीत भी रविंद्र जैन का था। अब सुने लाल पत्थर फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, और इस गाने की धुन तैयार की है देव कोहली ने और संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किडबैक चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
1: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किडबैक।
2: RBI कहता है
3: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
4: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
4: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोता अंतराल से पहले गीत आपने सुना, फिल्म का नाम था गाइड और इसे गाया था किशोर कुमार लता मंगेशकर ने, गीतकार शैलेंद्र और संगीत था एसडी बर्मन का। आइए अब सुने अमित कुमार की आवाज़ में ये गीत आप सुने, फिल्म का नाम है तेरी कसम और गीतकार आनंद बख्शी हैं, संगीत आर डी बर्मन का है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गा मेरी मन गा, कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। आइए अब सुने कविता अलका याग्निक और सुदेश भोसले की आवाज़ में। फिल्म का नाम है बाबुल, गीतकार हैं समीर और संगीत है आदेश श्रीवास्तव का।

अंगार फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, आइए आप सुने कभी अजनबी थे फिल्म का ये गीत आप सुने लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गा मेरे मन का, कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। इस समय ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। आइए अब सुने आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म लाजवंती का ये गीत। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीत है एसटी बर्मन का।

आइए सुने, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ में फिल्म आंचल का ये गीत। गीतकार प्रदीप हैं और संगीत सी रामचंद्र का है।

आइए अब सुने मन्ना डे और उषा मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म दिल की राहें का गीत आप सुने। गीतकार हैं

श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गा मेरी मन गा, कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। और आइए आप सुने पंकज उधास और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में फिल्म अधर्म का गीत। इसकी धुन तैयार की है समीर ने और संगीत है आनंद मिलिंद का। आइए सुने ये गीत।

गा मेरे मन गा। अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। मीडियम वेव 326.7 किलोमीटर यानी 918 किलोहर्ट्स, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DRM चैनल 909 किलोहर्ट्स पर। दिन के ठीक 11 बजे हैं। आइए सुने फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतमाला।

आप पहचान चुके हैं कि इसका गाया हुआ है। और आज का दिन भी आप सभी जानते हैं, एक विशेष दिन हमारे फिल्मी दुनिया के लिए। सदी के महागायक जिन्हें मोहम्मद रफ़ी के नाम से जानते हैं, शहनशाह तमन्नुम, आज उनकी पुण्यतिथि है। और आज के इस फरमाइशी कार्यक्रम में हमारे सुधी श्रोताओं ने रफ़ी के ही गीत सुनने की फरमाइश हम तक लिखकर भेजी है। आज का ये प्रोग्राम हम आरंभ कर रहे हैं हसीना मान जा।

सुदेशवर्ताओं ने रफी के ही गीत सुनने की फरमाइश हम तक लिखकर भेजी है। आज का ये प्रोग्राम हम आरंभ कर रहे हैं हसीना मान जाएगी फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया मोहम्मद रफ़ी ने बोल अख्तर रोमानी के, संगीत कल्याण जी आनंद जी का, और इस गीत को पसंद किया है आप सब साथियों ने। कंवर कॉलोनी वडवा जिला खरगोन एमपी से परवीन शिरमाली, मीना शिरमाली, अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबिया, अनस रहमान, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा एमपी से आनंद जोशी, तनुजा जोशी, ध्रुवी, फागुनी जोशी, चकपंद्र पीएस से सरजीत सिंह जोसन, सरजीत कौर जोसन, गुरु मन सिंह जोसन, आदर्श पाल सिंह जोसन और रॉबिन सिंह, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर, निर्मला नवानकर, विशाल नवानकर, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार वोडाना, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी, सौरव, सायना और निवान शर्मा, सूर्यवाली छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद से हमारे श्रोता हैं प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा बोरगांवकर, प्रांजलि, सोहम, सदानंद, विराज, स्वीट अंशुमन, बेबी ओवी,

जीने की राह इस फिल्म का गीत सुनिए, मोहम्मद रफी का गाया हुआ। आनंद बख्शी के लिखे गीत की धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। पसंद आप सब साथियों की है। बिवाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशला देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन। वनीखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। मुजफ्फरनगर यूपी से रेणु शर्मा। जनकपुरी सहारनपुर से हमारे श्रोता हैं जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस्ट। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, आरती कुमारी। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत ग्वानकर, सरिता ग्वानकर, परिणीता सिद्धांत, अर्जुन ग्वानकर। ये फरमाइश अब तक पहुंची है। अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला, सबादत, कीरत हुजरे, रेहान शेख की सांगली के जत शहर से। गांव बनी वाले फाजिकला पंजाब से ओम बगड़िया, किरांस बगड़िया, योगेश, रजत, बेबी गरिमा बगड़िया। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय के साथ हैप्पी राय। ये छाई भाषा झारखंड से हमारे श्रोता हैं शिवा गोप, प्रेम, कपिल, शिवांश गोप, संगीता, लिपि और दीपाली गोप। बीट शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी, जयश्री मेहत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय। नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर। गांव पिजोनिया जिला जालौन यूपी से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक चंसोलिया। आप सब सुने अपनी पसंद का ये नगमा।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं, पसंद। गांव हांडीखेड़ा, जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश। बागपत यूपी से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से रेणु शर्मा। कोल सिटी बरका काना से अफजाल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, निप्पी साहनी, मोहम्मद, अफजल मलिक। मोहला हवाई हलवाई यान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर। दादर गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण, कपिल, कुणाल मेहरा। नज़दीक बस स्टैंड बूर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांग वर्मा, मदन लाल वर्मा। ये कुछ पत्र भी हम तक पहुँचे हैं जिन्हें भी हम इस कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, रेखा, गगन, सोनी, सीता और गीता। श्री गंगानगर से बजरंगला शर्मा, जगमोहन सिंह अग्नेजा, दिनेश कुमार शर्मा, नरेश कुमार शर्मा। ये पत्र हम तक पहुंचा है हमारे नियमित बुजुर्ग साथी। गांव दौलतपुरा श्री गंगानगर से शिवलाल जी बेनीवाल, शांति बेनीवाल, मंजू, मोहित और हेमंत का। मोहल्ला फतेहगढ़ से विनोदपुरी, अशोकपुरी, सुशील, नीलम, कैलाशपुरी और रमापुरी। आप सब सुनना चाहते हैं ठोकर फिल्म का गीत जिसे लिखा

कार्यक्रम का अगला गीत आप सब साथियों की पसंद पर, पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार, देवांगन दुर्गा प्रसाद, पूना राम कृष्णा, नई आबादी हनुमानगढ़ टाउन से सुल्तान सिंह तरड़, कृष्ण मुकेश तरड़, रामचंद्र तरड़, कपिल देव और हिमानी जाखड़, अलीका डब्वाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार सुनीता, कुलदीप गांधी, सिद्धार्थनगर दरियापुर बाभली से गजानंद येले, नवदीप विश्वदीप और अशोक येले, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहरा जहां, सहारनपुर से आशा नारंग, सोनाली सुरेश नारंग, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा, हितेंद्र दास आसाम से हमें अपनी फरमाइश लेकर भेजते हैं, मानसा पंजाब बस स्टैंड से जगदीश राय गर्ग, अंजना रानी गर्ग, रवि गर्ग, शिल्पा, दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र, गांव अरायन से बनवारी लाल जयपाल, विमला

ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम और पूनम चालिया, आप सब सुनना चाहते हैं भाभी फिल्म में मोहम्मद रफ़ी को। चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में गीत के बोल लिखे हैं राजेंद्र कृष्ण ने।

कार्यक्रम का अगला गीत आप सब साथियों की फरमाइश पर नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीदेव गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी, दिशा गोस्वामी, नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु सुथार, पवन, शंकर बिहारी, शिव कुमार सोनू, महेंद्र सुथार और कालू, गांव कलाना भादरा से विक्रम कड़वासरा, सचिन सतीश, योगेश युद्धव कड़वासरा, कृष्ण मायल, हनुमान साहरन, कीड़ूराम जोया, लीलाधर स्वामी, कुंदन जाखड़, सुनील शर्मा, ये फरमाइश अब तक पहुंची है। पत्र हमें मिला है मंडी गोलवाला से बीजलाल चौहान, नीरज कुमार चौहान, मुक्तसर पंजाब से बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर, रवनीत निशु का, अबोहर

पंजाब से ओम प्रकाश सोनी, साहिल सोनी, अमन सोनी, करण महेंद्र बिश्नोई, गांव घमडिया से जगदीश ढोकिया, प्रमिला ढोकिया, ज्योति, शिवम ढोकिया, सरिता, सचिन, अमरनाथ, तमन्ना, सायना, विष्णु और ईवा धारनिया। 34 एसटीजी से फरमाइश मिली है। चन्नराम जयपाल, मिठू सिंह, बसंत कुमार, मामराज, ज्योतिनगर नोखा राजस्थान से हमारे सुनने वाले हैं। पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोवर्धन धरा, फरसाराम सोलंकी, श्यामलाल चौहान, घनश्याम भार्गव, बाबू गोरी, हसन, नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम, तौसीफ हाशमी, तैमूर हाशमी, गांव न्योला रामपुरा से सुरेंद्र डीडन, शकीला, संदीप, अनवर, अकू बावरा, मोहाली चंडीगढ़ से टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, जयवीर सिंह, शुभचंद्र बजाज, कालका, बिट्टा बजाज। पत्र हम तक पहुंचा है बठिंडा रोड डवाली से राजेंद्र नारंग, मंजू नारंग और मोहित नारंगा। ये फरमाइश गांव जोगीवाला श्री गंगानगर से प्रेम सहारन, मोनिका, मनीष सहारन की। कालानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक। सुल्तानपुर यूपी से यशमित, यशु, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह, अविरल सिंह। आप सब सुनिए अनजाना फिल्म में मोहम्मद रफ़ी को और साथ दिए लता मंगेशकर ने। गीत आनंद बख्शी का, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

झुक गया आसमान। इस फिल्म में सुनिए शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में हसरत का लिखा गीत, आवाज़ एक बार फिर से मोहम्मद रफ़ी की, पसंद आप सब साथियों की है। नाईवाला हनुमानगढ़ से वेद मिड्ढा, अलका मिड्ढा, विकास कॉलोनी बीकानेर से डॉक्टर अशोक कुमार शाही, संतोष शाही, राजश्री, गौरव शाही, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान और पूजा परिहार, नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार, साईं गायकवाड़, ये फरमाइश आप तक पहुंची है। गांव बनवाला हनुमंता फाजिलका से विनोद मायल, सीमा लक्षिता, यशिका, विद्या देवी और इनके परिवार के लोग। गांव फ्रांसी से राजकुमार डूडी, प्रमोद डूडी, सौरभ डूडी, अलिका डब्वाली से रूप सिंह लखोत्रा, कर्मजीत लखोत्रा, सर्वजीत, रानी, सोनू, रजनी। गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और पूजा खटक। वीरम गांव गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, भावेश और सनी भावसार। चक 14 PSB से कुलदीप सिंह, राजविंद्र को, संदीप सिंह, जसकरण सिंह, हरदीप सिंह, मंदराज, ये फरमाइश। उदयपुर राजस्थान से रमेश नाचाने, भारती, विनीत, मिथिल, तिलक। मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, नावेद हसन अब्बासी और अनम यसफ अब्बासी। रघुनाथपुरा से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हरचित, खुशी गोस्वामी। आप सब सुनना चाहते हैं झुक गया आसमान फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम गीतमाला में अपनी फरमाइश के फिल्मी गीत आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरत से अपने साथी संजय बैद के साथ सुन रहे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत आप सब साथियों के लिए, बहलोर नगर से हरी शहरी, जगतार, सुशील डेलू, राकेश चाहर, गांव कलाना से भादरा, तहसील जिला हनुमानगढ़, विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश, यूधव कड़वासरा, किशन मायल, हनुमान सहारन, कीरुराम जोया, लीला धस्वामी, कुंदन जाखड़ और सुनील शर्मा, नई दिल्ली साउथ एक्सटेंशन से गुरमीत सिंह मीता, गांव भागसर साधु शहर से मंगत राम थिंगड़ा, विजय पाटिल महाराष्ट्र जालना से हमें अपनी फरमाइश लिख भेजते हैं। ये फरमाइश हम तक पहुंची है कवाई बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, इनके साथ हैं हिमानी हर्षिता, अभिषेक श्रीवास्तव, तहसील भादरा अनूप शहर से फरमाइश हम तक पहुंची है गजानन सारस्वत, ताराचंद सारस्वत, सोनू, पवन, साहिल, राघव, उपेश कुमार, ममता, मीतू, किन्नू, अक्षु और इनके परिवार के साथियों की। गांव शिरटे जिला सांगली से हनुमान शिंदे, संगीता शिंदे, ऋषि केश और वसुंधरा, नागपुर महाराष्ट्र से हमारे सुनने वाले हैं श्रीमती पिंकी साहनी, अफजल मलिक, निप्पी साहनी, सुनीता साहनी, गंज डुंडवारा से

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म का नाम है महुआ। गीत लिखा कमर जलालाबादी ने, संगीत तैयार किया सोनी ओमी ने, पसंद आप सब साथियों ने भेजी। कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी, राजेश, राकेश, ऋषिता। गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह। श्री गंगानगर से नेकीराम मसीवाल, जोनी मसीवाल, धनराज, भवन सिंह मीणा, तन्मय मीणा, हमीरी कला, झुंझुनू से में अपनी फरमाइश लिख भेजते हैं। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। कस्बा गुनौर यूपी से फारूक अली खान फैजी, फराज खान, फरीन, फरहान, फारिया, ताहिरा। गांव कुम्हारखेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइन हसन, अक्सादीप, नाजिया, आफिया, इब्राहिम सद्दाम। गांव पायल कला जिला बालोतरा से मोहनलाल प्रजापत, मानिक, उषा, बाला देवी प्रजापत। गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से हजारीलाल पुरोहित, मोनी पारिक, भूपेंद्र पारिक। श्री कर्णपुर से पवन कटारिया, समीर कटारिया, शालू कटारिया। हनुमानगढ़ टाउन से रजाक मोहम्मद खान, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, जिशान खान। मुक्तसर पंजाब से बाबू सिंह धीमान और इनके परिवार के लोग। भोपाल एमपी से मनीष श्रीवास्तव, हर्षिता, विमल श्रीवास्तव, आशा, राधिका और इनके परिवार के लोग। गंज डुंडवारा यूपी से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी। नागपुर से वैशाली, सुमित, ध्वनि गुहानकर, एंकाश गुहानकर। ये फरमाइश हम तक पहुंची है। संदीप मकड़, ज्योति मकड़, मन्नत, भारत मकड़, कमल साहनी, पिंजवाला चौक, गोरैया, जलंधर से गली कुरावली, जैन मंदिर से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन, आसना, मोहम्मद कैफ अंसारी। उन्हेल जिला उज्जैन एमपी से भैरूलाल वाक्तरिया, भोला वाक्तरिया, परवीन रियांस और प्रतीक वाक्तरिया। धानी लाल खां नोहर से जावेद खां, अरमान खां, इमरान, सीमा बानो, विनोद खां। ये फरमाइश हम तक पहुंची है। हमारे साथी हैं मंडी केसरी सिंहपुर से बिल्लू सूद, सुनीता रानी, चांदनी, आशीष, विश्वजीत, मोहनलाल प्रजापत। चक 58 एनपी रहसी नगर से सुल्तान राम मलखट, सरस्वती देवी, हरवंश लाल, बनवारी लाल, गोपीराम, ललित कुमार, नरेंद्र कुमार, मीनाक्षी मलखट। करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। राजकोट से जमीन कुमार जैन, हैतल जैन, कृष्ण जैन, राकेश। आप सब साथियों को हम सुनवाते हैं महुआ फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी का गाया हुआ।

आइए कार्यक्रम के आखिर में सुने मोहम्मद रफ़ी को। फिल्म का नाम है पगला कहीं का, गीत लिखा हसरत ने, संगीत शंकर जयकिशन का, पसंद आप सब साथियों की। पद्मा टाकीज, नेपा सर एमपीसी, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, पुष्पा, कुशल, नीतिशाह, सुरभि, अश्वनी, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र शाह, दत्तरंगी भाटपारा से हीरामनीष वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि, नोखेलाल वर्मा, दुर्गा कॉलोन हांसी से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू, दादा बाबू रोड, ग्रीडा, अमरखेड़ से मोहम्मद यासमीन, सैना नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत, सादिया, सूरतगढ़ से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन, बेबी जानविका, अमरगढ़ साधुल शहर से कुलवंत मान, लखविंदर कौर मान, खुशप्रीत कौर, गुरनूर, कुलिंदर कौर, हरविंदर, राजप्रीत, ये फरमाइश हम तक पहुंची है। दिल्ली मोतीनगर से हमारे साथी हैं गौरव मानसी, अनिल, कविता अरोड़ा और इनके परिवार के लोग। सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित, बेबी गर्वी, हिमाक्ष। गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर झोंदले, आरती झोंदले। किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान, साबिया जुबैर, अंजुमन खान। रघुवीर नगर दिल्ली से दिलावर खान, हसीना बेगम, एलिजा नायब और लड्डू। अनूपगढ़ से भगवती देवी, ज्ञान चंदन, मेहुल, पूनम, कोमल, चंदन, अंकुश, रवि कुमार, माधव। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत, मयंक भाटिया। बठेना पाटन जिला दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजलि, ज्योति, रेखा, पार्थ कश्यप, बेबी, बबली वर्मा। नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद, ओमकार और साई गायकवाड़। हीरावाली फाजिलगा पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु, पार्वती, हिमांशु गोदारा, श्रवण रिनवा, हंसराज भाटिया, मणिराम, रंजीत किरोड़ीवाल, सुरेंद्र भादू। ये फरमाइश पहुंची है एक रिश्ता रेडियो श्रोता संघ अंबाई जिला सिल्लोड औरंगाबाद से अनिल कुमार घोटके, वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोटके, वैष्णवी गायत्री, यज्ञेश। बनर्जी लेआउट नागपुर से टोनी बोरकर, ललिता बोरकर। काशी निवास बंगाली पंजा नागपुर से प्रकाश रंभाड़े, भारती रंभाड़े, जाह्नवी, वैष्णवी। आप सब सुने कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

अभी आप अपने साथी संजय बैद के साथ फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत माला सुन रहे थे। आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। मीडियम वेव 326.79 किलोमीटर यानी 918 किलो हर्ट्स, FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स, मोबाइल

न्यूज़ ऑन AIR पर। दिन के 12 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज दिन भर में प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय। अब से थोड़ी देर बाद यानी 12:05 पर फौजी भाइयों के लिए उनका कार्यक्रम होगा सैनिकों के लिए। गैर फिल्मी गजलों का कार्यक्रम होगा सुगम संगीत दिन में 12:30 पर। आज हम आपको सुनवाएंगे चंदन दास की गाई चंद गजलें। खेत खलिहान कार्यक्रम हुआ करता है दिन में 12:50 पर। आज जानकारी का विषय रहेगा पशुओं में टीकाकरण। दिन में 1:05 पर आज ग्रामीण महिलाओं के लिए उनका कार्यक्रम होगा घर आंगन। आज बातचीत के विषय रहेंगे दुग्ध उद्योग जीविका का एक अच्छा विकल्प, फोन के फायदे और नुकसान, बच्चे और उनकी जिद किस हद तक सही, और जानेंगे कच्चे आम के परिरक्षण के बारे में। कुछ और फिल्मी नगमे आप सुन पाएंगे दिन में 2:30 पर। दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक आप सुनेंगे हमारे उर्दू सर्विस के कार्यक्रम। आज का ये प्रसारण केवल मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और FM बैंड पर ही चालू रहेगा। मीडियम वेव पर आज उर्दू सर्विस के कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा। शाम 5 बजे युवा साथियों के लिए उनका रोजाना का कार्यक्रम होगा युववाणी। आज युवा साथियों के लिए जानकारी के विषय रहेंगे पढ़ेगा भारत बढ़ेगा भारत, स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मस्तिष्क, भारतीय संस्कृति और युवा, डिजिटल युग में शिक्षा, साथ ही जानेंगे आज के इतिहास के बारे में। शाम 6:05 पर आप सुना करते हैं सरायकी भाषा में कार्यक्रम। शाम 7 बजे आज चौपाल कार्यक्रम में राजस्थानी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम होगा गीतारो गजरो। शाम 7:45 पर आप सुनेंगे कुछ फिल्मी नगमे। 8:15 पर कार्यक्रम होगा एक ही फिल्म से

शाम 7:45 पर आप सुनेंगे कुछ फिल्मी नगमे। 8:15 पर कार्यक्रम होगा एक ही फिल्म से, जिसे हम अपने दिल्ली, माफ़ कीजिए, हमारे इसी स्टूडियो से रिले करेंगे। दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे संसद समीक्षा रात 8 बजे। सुगम संगीत कार्यक्रम होगा रात 9:15 पर। हेलो मिट्टी दी खुशबू आप ही की टेलीफोन कॉल्स पर आधारित पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम होगा शाम 9:30 पर। कार्यक्रम पेश करेंगी दुर्गा राम और संयोजक होंगे नवीन सिसोदिया। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज दिन भर में प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की।

आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मीडियम वेव 326.7 किलोमीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12:05 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है हमारे फौजी भाइयों के लिए उनका कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सभी फौजी भाइयों की सेवा में संजय बैद का नमस्कार। फौजी भाइयों, आज जैसा कि आप भी जानते हैं, दिन है मोहम्मद रफ़ी का, आज उनकी पुण्यतिथि है और इसी अवसर पर हम आज याद कर रहे हैं इस मशहूर पार्श्व गायक रफ़ी को उन्हीं के गाए गीतों के साथ। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं उम्मीद फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे लिखा शकील बदायूनी ने और संगीत तैयार किया रवि ने।

फौजी भाइयों, आइए सुने दो प्रेमी फिल्म में मोहम्मद रफी के साथ इस बार आशा भोसले को, शब्द आनंद बख्शी के, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

राजकुमार फिल्म में सुनिए मोहम्मद रफी के साथ सुमन कल्याणपुर को, शब्द रचना हसरत की, संगीत शंकर जयकिशन का।

अब सुनिए दुनियादारी फिल्म में मोहम्मद रफी के साथ लता मंगेशकर को, शब्द रचना पंडित विश्वेश्वर शर्मा की, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: ये कार्यक्रम के आखिर में सुनिए, मोहम्मद रफी के साथ गीता दत्त को, फिल्म का नाम है बाजार, गीत लिखा मजरू ने, संगीतकार हैं ओपी नैयर।
1: जी भर लो, भज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है, इसमें भी धोखा है, मोहब्बत कर लो, जी भर लो।

अब ये फौजी भाइयों के लिए उनका कार्यक्रम सैनिकों के लिए प्रसारित किया गया। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आइए सुने गैर फिल्मी गजलों का कार्यक्रम सुगम संगीत। आज फनकार हैं गायक चंदन दास।

0: बशीर बद्र के लिखे, चंदन दास के गाए इस कलाम के साथ ही आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12:50 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है किसान भाइयों के लिए उनका कार्यक्रम खेत खलियान। आज की जानकारी का विषय है पशुओं में टीकाकरण।
1: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों आप खेती पाती के साथ साथ पशुपालन भी करा, क्योंकि आपनों जो को खेती को धंधो है वो पशुपालन पर टिकेड़ो है और पशुपालन जो को है वो आपने खेती पर टिकेड़ो है। या मानस का कि बिना खेती आप पशुपालन बेहतर तरीका से कौन कर सका नहीं, और पशुपालन जो को है वो करने के लिए अपने कई बातों को ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि बिया तो आपने जगह पशुपालक भाई है, बे समझदार है, जानी जान है, लेकिन फिर भी अपने कई ऐसी बातें हैं जगह ध्यान रखना जरूरी है ताकि बिंगी वजह से अपने पशु जो है वे बेहतर तरीका से आप जो को जीवन यापन कर सके, अपना मुनाफा जो है वो बढ़िया तरीका से देश का है, और कोई हारी बीमारी जिकी है वह अपना पशु हम ना लगे। कई बार आप देखे करा का निराचारी जिकी है वह अपना बढ़िया करा जो को संतुलित आहार है वो भी अपन बहुत बढ़िया देवा, लेकिन बिना बावजूद भी अपना जो पशु है वे बीमार हो जाए या फिर जो को दूध जो को है वो घटा जाए या फिर पशु जो का है वे कमजोर हो जाए या फिर जगह छोटा बछड़िया है वह में कोई ना कोई हारी बीमारी जिकी है वह लाग जाए। लेकिन इसी बात अगर अपन यह लग गए कि अपना पशुओं का माँ है तो अपन की है कि तुरता फुर्त जगह डॉक्टर जी है बांसु संपर्क करना जरूरी है। लेकिन बीच पहला की है कि अपन थोड़ा बहुत जांच परख जिकी है अपन रखनी चाहिए, क्योंकि पशुपालन अगर आप कर ला रहे हाँ तो अपन पशुओं के बारे में बांग दिनचर्या के बारे में बांग आहार के बारे में बांग स्वास्थ्य के बारे में भी अपन जानकारी होनी जरूरी है, ताकि अपन कई बार बेमौके अपने डॉक्टर जी ना मिले तो अपन घर ही बांग जो को तुरता फुर्ती इलाज है वो कर सकें। बिया देखा नहीं तो आप शुरुआती तौर पर जिकी बातें हैं बे थाना आई बता सियाँ कि संतुलित आहार जो को है वो अपन देनो जरूरी है, और संतुलित आहार जो को है वो अपना इकसार नहीं देनो है। जका पशु वजन के हिसाब से है, जका पशु उम्र के हिसाब से है, तो बन बांगो अलग अलग निर्धारण जो है वो आहार को अपन करनो है, और जो दुधारू पशु है बंगो जो को आहार है वो अपन अलग तरीके से तय करनो है। तो इस तरह से आप संतुलित आहार जो है वो देनो है, और इनके अलावा अपना जो दुधारू पशु है बन आप जो अपना दूसरा बाखड़ा पशु है या फिर जो दूध ना देने वाला पशु है बांस अपन अलग रखना जरूरी है, और जकी जगह पर आप पशुपालन कर ला रहे हाँ तो जरूरी बात तो आ भी है कि आप बीच जगह ने साफ सुथरी रखा, क्योंकि आपने जटा पशुपालन आप कर ला रहे हाँ जो बाड़ो है

0: गमा पशु गमा जो को कृमिनाशक औषधियों द्वारा अपन वो करनो चाहिए है, और अपने जटा बाड़ो है जटा पशु है बट्ठे भी अपन जबकि कृमिनाशक की दवाइयाँ हैं छिड़काव जो है वो करना जरूरी है ताकि चिंचड़ गोयड जो है भी अपना पशु गमा ना लगे। और टीकाकरण जो को है वो 2 सप्ताह बाद पशु गमा आप करवावा तो भी शुक है कि पशु जो है वो तनाव मुक्त रहे और पशु जो है वो चारों भी बढ़िया चरे बिगू जो स्वास्थ्य है वो भी बढ़िया और बेहतर बनो रहे। और अगर यहाँ लागे कि पशु जो को है वो ज़्यादा बीमार हो रहे हैं जबका कोई इलाज आप घरे ना कर सका तो बिना आप डॉक्टर जी ने बुला गए या फिर बिगू जो कोई इलाज है वो हॉस्पिटल में अस्पताल में ले जाके भी आप करवा सका। और टीकाकरण जो को है वो आप खुद भी कर सका क्योंकि इनको एक प्रशिक्षण भी दीजिए अपना जो का पशुपालक भाई है वे प्रशिक्षण ले गए भी वो जो का टीकाकरण को काम है वो खुद कर सके या फिर अपना जो का नज़दीकी गाँव में डॉक्टर जी है वे भी आगे टीकाकरण जो है वो कर सके। लेकिन बिना जानकारी बिना अपन जान पहचान कोई भी दवाई की है पशु ने नहीं देनी चाहिए। कई बार आप काचो पीलो खुआ दें और पशु का आफरू आ जाए और भी शुक्र है कि आप घरे पड़ी कोई पुरानी सुरानी दवाई जकी है पशु ने दे दें तो आ भी नहीं करना है। दवाई जकी देने ला रहा वह बढ़िया तरीके से बिंग जांच परख करके बिंग जकी म्याद तिथि है बातचीतियाँ देख के और फिर ही देना है ना। और कोई भी आहार देवा तो वो ज़्यादा कच्चो भी नहीं होना चाहिए ज़्यादा अपना गर्म भी नहीं होना चाहिए। इन बातों को ध्यान रखना है। कई बार आप जो को बंटो दे ला रहे हैं आहार दे ला रहे हैं वो तातो तातो गर्म गर्म जो को है वो पशुओं ने दे देवा बीसू पशु जो है वो बीमार हो जाए। कई बार ज़्यादा दिन तक पड़ो रहे जी बंटो है या फिर कोई पुरानी बासी रोटियां है या फिर पुरानी पुराणों अपनों खाणों बासी पड़ो है वो आप ले जाके पशुओं के आगे नाख देवा तो बीसू भी पशु बीमार हो जाए। और एक बड़ी बात आ है कि आपने घर में सब्जियां जकी है वे आप कई बार रांध लेवा और बस सब्जी बच जाए और बाद सब्जी जकी है पशुओं ने अपने पानी का सागा प्या देवा कई बार छा का सागा प्या देवा तो इं नहीं करना चाहिए ऐसा। ये पुरानी बासी जकी ठंडी सब्जियां हैं खराब होड़ी जकी सब्जियां हैं बेबी आप नहीं खुवानी चाहिए। बासी जकी रोटियां हैं बेबी अपने पशुओं ने आप नहीं खुवानी चाहिए। अगर ज़्यादा अगर कोई पशु लाता लड़ियो कर ला रहे है तो आप डॉक्टर जी को ही संपर्क करना है और इं लगे कि आप इनको इलाज कर सको और अपना कहीं इनको प्रशिक्षण है तो ही अपना टीकाकरण जो है वो घरे करना चाहिए सा। आप बातों को पूरा ध्यान रखना है पर खेत करिए काम धंधा और भी करना है। हूँ चलू राम राम सा राम राम।
1: पशुओं में टीकाकरण खेत खलिहान कार्यक्रम में अभी किसान भाई इस विषय पर जानकारी सुन रहे थे। आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। दिन का एक बजने वाला है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। राज्यसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बीच सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सुबह राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आज बांसवाड़ा के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में नए अकादमिक भवन कुलगुरु आवास और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का ऑनलाइन अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बल दिया। राज्यपाल ने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने टीबी मुक्त और नशा मुक्त राजस्थान के लिए जन भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया। श्री बागड़े ने जनजातीय समाज की जल जंगल और जमीन संरक्षण की परंपराओं पर अधिक शोध किए जाने की आवश्यकता जताई। अजमेर में एनेस्थीजियोलॉजिस्ट का सम्मेलन आइसाकॉन राजस्थान 2026 कल से आयोजित किया जाएगा। इससे पहले आज प्री कॉन्फ्रेंस कार्यशालाएं रखी गई हैं। 2 दिन के इस सम्मेलन में देश भर से आए एनेस्थीजियोलॉजिस्ट चिकित्सा शिक्षक और स्नातकोत्तर विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। आयोजन अध्यक्ष डॉ. अरविंद खरे ने बताया कि मुख्य सम्मेलन कल और परसों पुष्कर में होगा। इसमें एनेस्थीजिया क्रिटिकल केयर रोगी सुरक्षा और आधुनिक चिकित्सा तकनीकों से जुड़े वैज्ञानिक सत्र व्याख्यान और पैनल चर्चाएं होंगी। डाक विभाग ने रक्षाबंधन के

अवसर पर राखी और मिठाई भेजने के लिए विशेष वाटरप्रूफ डिब्बों की सुविधा शुरू की है। भरतपुर डाक मंडल के अधीक्षक आनंद सिंह ने बताया कि बरसात के मौसम को देखते हुए तैयार किए गए इन डिब्बों में भेजा गया सामान सुरक्षित रहेगा। उन्होंने बताया कि वाटरप्रूफ डिब्बे की कीमत 30 रुपए है और इसमें 500 ग्राम तक का सामान भेजा जा सकता है। इससे अधिक वजन होने पर पार्सल शुल्क लागू होगा। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बरसात हुई, वहीं कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 7 सेंटीमीटर पानी बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में बरसा। इसके अलावा डग, दानपुर, बिजौलिया और सरवर में 5-5 सेंटीमीटर बरसात हुई। पश्चिमी राजस्थान में भी कई स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी हिस्सों में हल्की से मध्यम बरसात और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं कहीं हल्की बरसात हो सकती है। जयपुर विकास प्राधिकरण के

0: सेंटीमीटर बरसात हुई। पश्चिमी राजस्थान में भी कई स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी हिस्सों में हल्की से मध्यम बरसात और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं-कहीं हल्की बरसात हो सकती है। जयपुर विकास प्राधिकरण के रियायती पौधा वितरण अभियान के तहत अब तक 6638 छायादार और फलदार पौधे वितरित किए जा चुके हैं। जेडीए के अनुसार इस वर्ष आमजन के लिए 85,000 पौधे रियायती दर पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके लिए पे फॉर प्लांट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण और भुगतान किया जा सकता है। पौधों का वितरण रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक 12 केंद्रों पर किया जा रहा है। जेडीए ने पौधरोपण की सही तकनीक की जानकारी देने की भी व्यवस्था की है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने परीक्षाओं को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। आयोग ने कहा है कि कुछ अभ्यर्थी और अन्य व्यक्ति परीक्षा परिणाम से पहले बिना अधिकृत सूचना के सोशल मीडिया पर भ्रामक तथ्य और आंकड़े साझा कर अभ्यर्थियों और आम जन में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही आयोग की विश्वसनीयता प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थियों से केवल आयोग की अधिकृत सूचनाओं पर ही भरोसा करने और अफवाहों से बचने की अपील की गई है। राजधानी जयपुर में भारत टैक्सी सेवा का ट्रायल शुरू हो गया है। सहकारी मॉडल पर आधारित इस सेवा से यात्रियों को किफायती सफर की सुविधा मिलेगी। ऐप आधारित इस सेवा को दूसरी कैब एग्रीगेटर कंपनियों की तुलना में 10 से 15 फीसदी कम किराए वाला बताया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 1:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं के लिए उनका कार्यक्रम घर आंगन।

घर आंगन कार्यक्रम सुनने वाली सगली बहना ने पूनम बाई का घना घना मोकड़ा मोकड़ा राम राम। तो बहनों थाने ध्यान ही है कि आपनो वो घर आंगन कार्यक्रम रो थाने ही घणो इंतजार रेवे और मने भी रेवे कि हूँ थर सा गए बोली सारी बातें करूँ। तो थे मारी बातें सुनो और आप करा मिलगी। तो बहनों आज आप कई विषयों पर चर्चा कर सियाँ जियाँ की है दूध उद्योग जीविका को की है अच्छो साधन, मोबाइल फोन का फायदा और बिंगा नुकसान, बच्चा और बांगी जिद की हद तक और कच्चे आम को की है परीक्षण। तो आ विषय पर देखो बहनों आप बात करांगा सागे आप सुनसियाँ सुना सुना गीत प्यारे प्यारा मीठा मीठा और सागे सुनसियाँ आप भजन। तो देखो बहनों अपने गाँव में मेन काम जो को मुख्य काम है वो देखो बहनों खेतीबाड़ी को ही हुए। तो आप जिम्मेदार खेती करा तो गाँव में की है लगभग परिवारों को जो जीविका को साधन वो देखो बहनों हो ही खेती है। तो खेती का सागे सागे देखो आप पशुपालन भी करा क्योंकि जे खेतीबाड़ी करा तो अपन की है पशुपालन करनो सौरो हो जे क्योंकि हरियो चारो यो जे और तूड़ी कचरो यो जे तो वो अपन देखो बहनों खरीदनों कौन पर तो वो अपने खेत में हो जे। तो जे खेती करता हुआ तो पशु रखना भी अपन की है सौरा हो जे। अब जी देखो बहन गाय है भैंस है भेड़ है बकरी है ऊँट है लगभग देखो ये पशु अपने घर में पाली जी है तो अपन की है पाला। तो खेतों जो को घास है भूसो नीरो चारो तूड़ी आवे बा पशुओं के खाण में काम आ जे और पशुओं को जो को गोबर है वो अपन खेता मायने के है खाद के रूप में काम आ जे। तो देखो बहनों आपा पशु दूध खातर पाला जो को घरे अच्छो खाण पीण हो जे टाबरिया बडोड़ा सारा।

आंग मोजी वे तो खाने देखो बेणो अच्छी चीज़ा मिले जिया दूध है, दही है, छा है, घी है, पनीर है, कितनी सारी चीज़ा देखो बेणो आपा ने खाने मिले। देखो बेणो भी तो आजकल पहला जिसी बात को नहीं रही, पर पहला तो देखो जिया बाजार अजय भी देखो बेणो कई गाँव है बाजारों थोड़ा दूर है, तो अपनों जिया देखो देखो फल है जगह कौन ले जाए, कोई हरी सब्जी है कौन ले जाए, तो देखो बेणो अपना टाबरिया ने आपा ने अच्छी चीज़ खाने वाली जो कि कैल्शियम वाली है प्रोटीन वाली है, तो ये देखो आप दूध ही घरे जिया बना लिया, दूध है तो दही है, छा है, घी है, पनीर है, अंगमा कैल्शियम भी हुए, प्रोटीन भी हुए, कार्बोहाइड्रेट वसा भी हुए, ये देखो अपना शरीर का जगह की है अपना जरूरी तत्व है आपा ने भी चाहिए ही है, तो अपना कहीं खतरा आप पशु रखा तो डांगर पशु हुए घरे तो अपन दूध दही हुए मोकलो टाबर अच्छा खा पी लिया कोई चीज़ बना लिया है, तो आजकल देखो यहाँ चीज़ों में अपन गुणों फायदे है, तो आजकल दूध उद्योग की जो जीविका गो की है एक अच्छो साधन हो गयो, अच्छो दाम पर के है दूध बिक जाए और कमाई भी होए और अपन की है सागा अच्छो खाने मिले, सागा देखो बेणो 2 रुपया जे सागा अपना खेती बाड़ी करा जो अपन पशु भी रखना जरूरी है, पशुओं खातर देखो बेणो खेती बाड़ी भी जरूरी है, तो दोनों की है एक दूसरे लगभग मिलेड़ा सही हुए, तो ई विषय पर आप चर्चा और करशियाँ बाद में करशियाँ, तो देखो बेणो पहला आप सुना शिव जी को प्यारो सो भजन।

तो बहनों सावण को महीनो चले है तो अभी अपा सुनो शिव जी को प्यारो सो भजन। तो भजन तो प्यारो उम्मीद है थाने भी लाग्यो सी। तो देखो बहनों अपा पहला ही विषय पर चर्चा करा कि दूध के उद्योग जीविका को की है अच्छो साधन है, तब आप ही पर दोबारा चर्चा कर सियाँ। तो देखो बहनों अपने अच्छे दाम पर दूध भी बिके, और देखो दूध तो बिके जो बिके, एकलो दूध ही क्यों बिके, दूध ऊँ सागे दूध ऊँ बनेड़ी हर चीज़ भी बिके। घरे बैठे वो कमाई को बहुत ही अच्छो साधन है, खास करके देखो आप ग्रामीण बेला महिलाओं खातर अपने बहना खातर तो वो बढ़िया है। भी आप सागे देखो बहनों टाबर यान खाण पीण भी बच जाए, सागे देखो आप करा तो हाई भी पशु रखा, आप खेतीबाड़ी करा तो पशुआ बिना तो देखो अपन ध्यान ही है बहनों, ग्राम सरे कोनी अपने परिवार खातर है जिमीदार खातर खेतीबाड़ी खातर तो आप रखना पड़े, दूध धपाऊ चाहिए छा दही चाहिए तो भी खतर तो की है। सागे आपा ना अपने भी खाण पीने बचे, सागे देखो जी आपा नहीं तो जी आपा बेचनो चाहो आपा कमाई करनी चाहो तो वाह भी उसके। तो मेहनत तो देखो बेणो इनमें घनी हुए पर जे सुख सुविधा देखा नहीं तो सुख ही घना हुए। तो दूध है घी है दही है छा पनीर बेच के अच्छी कमाई हुए नहीं तो पहला गए, और आज के समय में देखो बेणो बहुत ही फर्क हो गयो। आजकल लोग पशु थोड़ा कम रखने लग गया, बहुत कम लोग ज्यादा पशु रखे पर बांगी देखभाल जगह रखे नहीं। पर आजकल का जगह तरीका में एक तरफ हूँ एक तरीका उन्हीं रखना या सोरा भी हो गया, क्योंकि बांगी देखभाल देखो बेणो आजकल वैज्ञानिक तरीका हुआ है, क्योंकि आजकल हर चीज़ को अपन पता हुए बीजिया अपन दूध अपा भी सागे घर खर्चो भी काटनो चाहवा नहीं भी खाण पीने भी रेजे अपन है और खेती बाड़ी भी दूध है बहु भी अपन जे सरजे और घर खातर ये जी आप बेचनो भी चाहो तो इन खातर अपन की अच्छी अच्छी नस्ल का जो दूध देने वाली पशु है नी भी अपन रखना चाहिए। बीच चुकी है जियाँ कई जियाँ दूध ज़्यादा देवे भी अच्छी नस्ल के गाया भैंसा घनी हुए तो आप भी साबू आप भी राख सका भी लियावा तो अपन के माशू ज़्यादा दूध मिल जाए तो अपन कमाई भी किए ज़्यादा हो जाए, और ज़्यादा दूध देवे सग तो सग बने नहीं जियाँ वो पशुओं ने दवाई है टीका करने हर बात को अपन के समय समय पर ध्यान रखना चाहिए। और सरकार भी अपन की है जियाँ टीकाकरण की सुविधा है बहुत देने लग रही है, वो अपन जो थोड़ा सा अपना ध्यान रखा समय रेंता पहले ही जी अपन लगवा लिया नहीं जियाँ की सुविधा मिल रहा अपन लगा लिया तो देखो बेनो पशु बीमार भी फिर बहुत कम हुए है। सागे भी देखो आप कोई खर्चो निकाल लिया सागे भी आपनों भी काट दिए तो जी कारण के पशुओं का स्वास्थ्य संबंधी समस्या बाकी है कम हुए है, दूध उत्पादन भी की है बंगो अच्छो हुए ताकि ज्यादा ज्यादा दूध और दूध बनेड़ी चीजा बेच के अपा के है रुपया कमा सका। तो आजकल सरकार भी देखो पशुपालन ने बढ़ावा देने खातर घनी योजना और सुविधा चला रखी है ताकि पशुपालन ने की है बढ़ावा दिया जा सके। तो अपन की है इस स्कीम को इस सुविधा को कि अपन फायदा उठाना चाहिए अपन विचार करना चाहिए बिंगा के बहुत ही फायदा हुआ है। तो देखो बहनों सावण को महीनों चल रहा है तो अपा अब सावण को चारों तरफ देखो कितनी सोहनी हरियाली है हरियो भरियो हर चीज़ का खेतों में देखो पौधा देखो हरे तरफ ही के है हरी देखो माता बेड़ा हरी चूड़ियाँ पेरड़ी सोहनी मेहंदी लगाड़ी वो के करे नी बेणो भी लिप्यो डोलो आंगनों एर ओडी पेरी नार। तो देखो बेणो कितनी फूटरी लागत तो सावण को महीनो है तो अपना सुना एक सावण को प्यारो सो गीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: तो बहनों, अभी आप सुनियो सावण को गीत है, सावण को महीनो चाले है। तो अब आप बात कर सियाँ मोबाइल फ़ोन का फ़ायदा और बांगा नुकसान। तो बहनों, मोबाइल फ़ोन की है आज के समय की है सबो बड़ी ज़रूरत बन गयो। टाबरियाँ लेके बड्डोड़ा तक कि नहीं देख लियो, सारा कन्ने मोबाइल है। जे अपा ने जितनी सुख सुविधा और मनोरंजन देवे नहीं, बिता ही देखो बहनों बिंगा नुकसान भी तो है। तो अपा बात करा मोबाइल फ़ोन का फायदा की और बांगा की है नुकसान की। तो अपा चाहे दुनिया में कठे ही बैठे हुआ, एक मिनट में अपने घरे रिश्तेदार में दोस्तों गए सागे देखो बहनों अपा फ़ोन पर बात कर सका। जे आपने ये मन में हो नहीं इवड़े मुए भी मैं भी हूँ बात करनी, या कई बार देखो बहनों इसो टाइम हो जाए या सपनों आ जाए आपनों, कई बार इतो जी खराब हो जाए भी सच में वो कोई घटना ना होगी हुए या ना हो गई हो, तो आप देखो बहनों अपनों बेम की है मोबाइल में बात करके एक सेकंड में की है अपनों बेम की आप दूर कर सका। तो आप भी अपने मन में गिरगिराहट कौन है सारा दिन भी वो की है, या आप बात करनी हुए किसा की कोई बात बतानी है, या आप की है वीडियो कॉल कर लेवा, तो कोई भी चीज़ है जिगा है बिंग बारे में के अपन जानकारी लेनी है तो इंटरनेट पर सर्च करके आप सारी जानकारी प्राप्त कर सका। और वीडियो कॉल करके आप एक दूसरे को मुंह शक्ल तक देख लिया, कोई चीज़ घरे बनेड़ी है नहीं लेड़ा है भावी आप देख सका भी आज अपना चीज़ लेड़ी है तो अपन ये फटाफट ये दिखाई दे भी आ चीज़ ये लेड़ी है आ अठे बनाई है आ ये हर चीज़ को की है तो अपन सागे सागे की है पतो चाल जे। और आज का देखो सुख पहला देखो बहनों समय हूं तो भी बुकेनता नहीं कजे पीर तो जे अपने भेणा खातर माता भेणा खातर खास करके भी जे पीर हूं तो कह जे छिड़कलिया उड आ जे नहीं तो ही कजी सर हो जे पीरगा तो जे रूंख देख लिया तो ही जी सर हो जे। तो पहला देखो बहनों इं हूं तो भी ना कोई मिल तो ना कोई दिख तो एर आन जान का इतना साधन भी कोनी होता, फोन तो हूं तो ही कोनी, कोई जे आस पड़ोस गो कोई गाँव गो आ जा तो भी अंतो तो इं देखो बहनों जी तो करे आपको परिवार हुए माँ बाप हो बहन भाई हुए भाई भतीजा हुए भाभी हुए तो आप मिल लिया देख लिया कितो आप जी सर आजकल देखो बना कितना सुख है भी अपन ने रोजगिया ने देख लिया बात कर लिया रहन सकल देख लिया जो तो यहाँ लागे दाणिया मिल ही लिया कितो यहाँ जिस रोजे हैं कितना सुख है यार। इंटरनेट पर सर्च करके अपना जो कोई जानकारी आप कोई चीज़ को पता लगाना आजकल की नहीं पूछ लियो बेगी सी तो देखो बहनों कोई बतावे ही कोनी क्योंकि मन ने किठा मन ने ध्यान ही कोनी या कोई कोई थोड़े बहुत बतावे तो आप इं क्यों की है सारी की सारी एन सही तरीकों सही आप जानकारी की है पतो कर सका। और मोबाइल पर देखो ईसा ए पी आवे जो टाबर के है घरे बैठे ऑनलाइन के पढ़ाई कर सके, कई बार देखो बहनों आप बाहर है या तो गाँव दूर वहाँ कोई आन जान को साधन को नहीं हुए कोई है या फिर देखो जहाँ कोई आप सागो ना बने कोई अपना जे बहन है कोई कुआरू टाबर है तो आप थोड़ा सा कर जावा भी लाइक लीन के गल किन्ने गल फिर भी ना भेजा तो देखो बहनों पढ़ाई दूर रह जाए भेजा जा अपनो जी कौन टिक है तो भी खतर देखो बहनों फोन की कितनी मोबाइल की कितनी सुविधा है घरे बैठे देखो ऑनलाइन पढ़ सके सागर तो टाबर की पढ़ाई हो जाए सागर अपनी निगाह में रहे कन्ने रहे और सागर देखो दोरो को नहीं हरेक इं भी एक आप फोन देखो खाणो पकाणो है कपड़ा की सिलाई है कोई भी डिजाइन है कोई भी बुनाई तनाई है काम है जो आप सर्च करियो देखियो और सीखियो देखो बहनों कि घरे जाने की जरूरत कोनी कि बुझण की जरूरत कोनी भी आप मन बता जो की चीज़ अपन मन में है बा खाण पीन वाली है। आजकल देखो टाबर नया नया नाम जाने नई नई चीज़ा मांगे स्कूल जावे तो ही टिफिन में मारा आनी चाहिए आ चीज़ होनी चाहिए आपनी देखो बहनों इतनी बनाईड़ी कोनी आपने तो दही रोटी और दही चूंटी हुई खाई है तो अपन इतो ध्यान भी कोनी भी आप आ चीज़ किया बने किया हुए तो देखो फोन पर सर्च करो और बनाओ आप ही बना सका आप जे अपने बडेरी कोई घरे सासू है नानी दादी है माँ जे आप बहने भी वो चला दे दिया नहीं तो देख देख तो बहनों बे भी बना लिया क्यों हर हर चीज़ भी दिखावे भी आ चीज़ इं गलो इतनी मात्रा में गलो सारों की बतावे तिंगो कितो सुख है यार। मोबाइल पर जो बैंकिंग सुविधा है बिंगो भी देखो बहनों पीसा को लेन देन को तो बहुत ही सोर हो गयो आप कट्ठे ही जानो है किंगे खाता में दूसरे खाता में जे बहनों कोई भुला चुका पहले का जमाना में जो उड़ जाता रुपया घरे भूल जाता तो भी ये मानस की तो बहुत दोहराई अंती तो बिना तो बहनों देखो कट्ठे जाओ किंगे नौराती करो है नेरा काटो।

मैंने आ चीज चाहिए पीसा चाहिए अमेरिकन कोनी। आजकल तो एक सेकंड में एक मिनट का माँ खाता है माँ, चाहे आप अपने परिवार गया को सदस्य गुंजे के लवाना चाहवा। अरे ये लेर जानता तो इतो डर लाग तो घर गा नहीं लाग तो आपने लाग तो भी इतना रुपया नकद लेके जान लाग रहा है कटी यहाँ चोरी ना हो जाए डाको ना हो जाए इं ना हो जाए बहुत ही डर लाग बुकर। तो अब देखो बेनो वो तो यहाँ रेव कोनी भी खत्म एक दूसरे का पीसा गा लो है ऑनलाइन काम हो जाए। यहीं अपना जो कोई चीज़ को भुगतान करना है तो मोबाइल पर ऑनलाइन ही हो जाए कि नहीं जानो है तो ही गूगल पर मैप पर आप खोल के देख सक अपन सही रस्तों मिल जाए। इनके अलावा मोबाइल को जो मनोरंजन भी के है बे बढ़िया साधन है। अब देखो जी भी गेम देखो हर चीज़ की देखो बेणो ज़्यादा लिमिट अत तो देखो हर चीज़ की देखो बेणो माड़ी हुए चाहे वो अच्छी चीज़ की है तो भी माड़ी चाहे वो गलत को तो फिर तो देखो बेणो भी गो कहो कि वो तो माड़ा को तो माड़ो ही है यार जी। हम गेम खेलो ज़्यादा कोई फिल्म देखनी गाना सुनना इन तरह अपनों बढ़िया मनोरंजन करावे भी। चलो आप कभी बैठे हाँ एकला या अपनों कोई दिन कौन कट्टा है सफर में जान लाग रहे हैं जदा चीजा को काम आवे इं ना हो कि सारा दिन ने ले गया फिर आगा पा माई बढ़िया रहा भी ना अपने खाण पीण को शुद्ध रहे कोई ओढ़न पेरन की रह नहीं कि नहीं जान की रह नहीं कोई आपका टावरा की रह नहीं बहन में इतो भी देखो बहनों नहीं करना चाहिए। तो यही विषय पर आप चर्चा और कर सा ये आप फायदा की बात करी फिर नुकसान की करा मोबाइल फोन के तो पहला आप सुना है प्यारो सो गीत।

तो बहनों अभी आपां सुनियो गीत है, तो पहला आपां बात करा कि मोबाइल फ़ोन के फायदांगी और बांगे नुकसानगी। तो देखो फायदांगी तो आपां बात कर ली, अब आपां बात करा मोबाइल फ़ोन के नुकसानगी। तो देखो बहनों जकी चीज़ का फ़ायदा है नहीं बिंगा किन की, देखो बहनों तो आपां ने ध्यान ही है भी बिंगा नुकसान भी तो हुआ ही है। तो इंगा की नुकसान है कि अपना एक तो देखो बहनों अपना कोई चीज़ आजकल सोशल मीडिया को चाल रही रील सी तो ये देखने लाग जावा नहीं, तो अपन देखो बहनों को पतो ही कौन सा ला टाइम को, तो बीच के दिन उगे है क छिपे है क अपा भूखा हाँ क तीसियाँ क धूप में बैठा नहीं तो ही अपन पतो कौन सा ला भी धूप में है, जे कोई गर्मी में गर्मी में बैठे हैं तो ही अपन पतो कौन सा ला भी गर्मी कौन लगे फिर। तो इंगो देखो बहनों सेहत पर अपनों बहुत ही बुरा असर पड़े अपन, एक तो देखो बहनों सारों ज़्यादा तो अपन समय को पतो कौन सा ला अपन घंटा का घंटा ही बीत जाए।

दूसरों आपां भी पर निगाह टिकाए रखा। तो देखो बहनों आँखियाँ गया आपने रोशनी भी कमज़ोर हो है, आपने कमर भी दर्द करे, तो अंतु ज़्यादा देखो बहनों कोई हर चीज़ देखनी बाकी ख़राब करे तो अपन के इंगा नुकसान ही हो गया। एर नींद की भी कमियाँ पर आतना सो जावा, एर सोए बाद आप फोन लेर बैठ जावा तो बिना देखे रखा देखे रखा। तो बीच चूंकि है देखो बहनों तो अपन बोझ की बह नीली लाइट वनी बिंगी चाननों पड़े जो को बिंगो, तो बीच चूंकि है अपन नींद को नहीं आवे तो अपने नींद पर असर पड़े अपन आवे कौन, तो ई खतर तो जद्दी तो अपन बारी बारी के वह भी जे फोन चलाओ तो थे शाम ने सोनो है नहीं। जब अपन अबा लाग जो आप काम धंधो कर लियो रोटी पानी जीम ली दूध पी लियो अपन सोने तो 1 घंटों पहला फोन ने कि है परने रख देना चाहिए फिर ही पासे रखें फिर ही देखो बहनों अपने नींद अच्छी सोने तरीकों आवे। और जो अपन देखता देखता ही मेला नहीं करने रख दिया तो फिर देखो मैंने कई देर तक ये नींद आवे ही को नहीं है। एक अपन जो मानसिक तनाव अकेलोपन आजकल देखो मैंने अकेलोपन तो डाडो ही हो रही है अपा कड़ी बैठ जावा नहीं। अपा देख आजकल हर घर में जे 4 जने तो ही बांकन फोन है, जे 2 जने तो ही जे 2 ही जने नहीं तो ही बांकन फोन है, बैठे फोन ही देखे है एक दूसरे में बात कर सी तो फोन ही कर ले सी, कोई कन्ने कौन आयो है कौन गयो है कौन बैठे है, कोई हताई करनी कोई सुख दुखी करनी कोई दिन की कोई बात बतानी कोई आपका परिवार सागे करनी। पहला को देखो बहनों आदमी नहीं है कितों तो भी मैं घरे जाऊँगा मेरा टाबरिया डिक है लुगाई डिक है लुगाई नहीं हो तो भी लै भी आदमी आने वालों है टाबर आ सी बारू आ सी कोई काम धंधे गेड़ है तो कोई मायता सी तो आप वो काम कर लिया जल्दी से। आजकल बोरियो ही को नहीं हर कोई देखो फोन का माई बस घुस रही है भी कोई हताई को चरसो नहीं को रहे। देखो बहनों कई ग्राम तो हुए जी हम बडेरा मायता है और है कई करे अपन कई कौन करण दे थोड़ो सो पोल फोन कौन चलाए रखे चलाण दे कहीं रोक टोक हुए भी ज्यादा कौन चलाण दे अरे कहीं देखो कोनी तो गौर करे और है तो भी देखो सगला ही देखा है वांगर गा तो बानी पता ही कौन सा ले भी कि बात करनी है कौन आए है कौन ना है कोई बात कोनी कोई हारी बीमारी की बात करनी कोई दुख सुख गीक नफे घटे बदे गीक है। दूसरों देखो बहनों इनको भी नुकसान हो गया जो साइबर फ्रॉड और प्राइवेसी को खतरो है नहीं वही देखो बहनों मोबाइल फोन सबों ज़्यादा हो गया। एक तो देखो बहनों डेटा अपनों जो के है वो लीक हो जाए है और बैंक को जो के है वो फ्रॉड होगो वो भी अपन के बैंक वालों तो आजकल देखो फोन पर ओटीपी पूछे कौन जान नंबर फोन आवे तो आप भी फोन उठा लिया ओटीपी पूछे आप बता दिया ओटीपी बताते हैं सगे सगे खातों साफ हो जाए। तो अपन देखो इन बात को अपन ध्यान रखना है जद्दी तो देखो मैडम बारी बारी अपन बतावे सरकार भी आ संदेशा माध्यमों अपन बतावे फोन पर ही बतावे रेडियो के माध्यम बतावे घणों ही अपन यहाँ बतावे लिखेड़ो भी आवे भी अपने बहुत ज़्यादा बचलो जरूरी हो जे आप अनजान नंबर अपन फोन आवे तो अपन फोन उठाना नहीं चाहिए ज़्यादा कोई परेशान करे तो अपन शिकायत भी कर सका। हरेक आपने देखो जो कोई पर्सनल फोटो है वो भी अपन के चोरी होने को डर आजकल देखो मैंने वो बहुत ही माड़ो तरीको है भी गलत तरीको हो गया अपनी फोटो चुरा गए कहीं सागे कहीं भी बना गए रो रहे कहीं भी बेच के तो इंशो देखो कितो अपने समाज पर अपने परिवार पर आपके रिश्ता नाता पर कितो फर्क पड़े तो इनको देखो बहन वो भी नुकसान ही है। और दूसरों आप जो कोई गाड़ी चलावा कोई साधन चलावा जब आप बीच में चलाने लग जाए तो दुर्घटना को कितो बड़ो खतरो हो जाए बीन टाइम अपन थोड़ा सो के है ध्यान रखना चाहिए भी अपन की है साधन चलाता टाइम बिल्कुल ही फोन नहीं चलाना चाहिए। और बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ा है देखने ला जे गेम देखने ला जे और अन्य शोरों लगन ला जे पढ़ाई भी देखो बहनों जो अपन फोन हुआ जो अपन ज़्यादा पढ़ाने लग जानी तो अने आ लिखन वाली पढ़ने वाली आज की एक कापी किताबों पढ़नी दोहरी लग गया फोन वाली आना सोरी लग गए फोन तो अन दे रखो सागर लिखे रख से पढ़े रख से देखे रख से जो साधारण पढ़ू तो वो बात तो देखो बहनों बे तो टाबरिया है अपने तो ये बात वो ध्यान है भी मोबाइल फोन ने कितों खराब करे निगाह ने खराब करे सोचणगी समझणगी दिमाग लगाणगी क्षमता ने कितों खराब। पहला देखो बहनों आपा करता पहला का टाइम में अपना जो बडेरा मायता बे करता अपने समय में आपा करता तो कोई सवाल को जो ना उत्तर निकल तो आप मैंने करे रखता दौड़े रखता करे रखता दौड़े रखता आजकल 1 मिनट का माई मैंने हल करो रो तब मत हो मार के जमा ही टाबर आज ही को नहीं जितो आपा दिमाग ने लगावा नहीं वो की करे नहीं बितो ही दिमाग बधे तो आपा ने आ चीज़ों की है ध्यान रखना चाहिए। एर जितना मोबाइल का फायदा है बिता ही नुकसान भी है तो अपन हर चीज़ के है सीमित रहता सीमित हो लिमिट हो हर चीज़ को ये चलानी चाहिए और अपन टाबरियाँ पर खास करके ध्यान रखना चाहिए। और अपन यहाँ नहीं भी फोन लेके बैठे हो टाबर देखो तो अपन हर चीज़ थोड़ी थोड़ी देर निगाह रखनी चाहिए भी टाबर के चलावे के देखे वो भी आजकल देखो फोन पर गंदी चीज़ा भी घनी आवे और टाबर मन ध्यान को नहीं इं छोटो थोड़ो करके टाबर के बिगड़ जाए तो अपन यही चीज़ को ध्यान भी रखना चाहिए और इंगा सुख है जगह अपने सुख भी लेना चाहिए। तब सावण को महीनो एक आप प्यारों से एक सुना सावण को गीत।

तो बहनों अभी आपां सुनियो सावण गो गीत है। तो अब आपां बात कर सियां बच्चा और बांगी जिद की हद तक। तो बहनों बच्चा अपने जीवन को देखो कि है सब शू खुशनिमा हिस्सो वह खुशनिमा पल वह अपने घर की रौनक वह टाबरां शूं की है घर भरियो भरियो लागे घर में रौनक हुए भी सारे दिन बातां करे खेले उछल कूद करे कदी भी खाण पीण ने मांगे कदी खेलण ने। जे टाबरां ने अपा प्यारू सारी चीज दरा देवानी तो जत तो वे देखो बहनों राजी हो जे अर जे अपने ना दरावानी तो वे जिद करन लाग जे रूस जे। कई बार की है टाबरां की जिद मानी माननी भी पड़े पर टाबर तो देखो बहनों टाबर ही हुए बाने ही बात को ध्यान थोड़ी ना हुए कि भी बंगी जिद अपा ने वो तो अपा ने अच्छा माड़ा वो ध्यान हुए अपा ने ध्यान हुए कि बंगी जिद की हद तक पूरी करनी है। भी तो देखो बहनों ना समझ हुए मैं तो बोला बाड़ा हुए बा नहीं चीज़ वो अच्छा बुरे को कौन ही नहीं बा तो जकी चीज़ देख ली बा चीज़ आ लेनी है। जो छोटा टाबर तो जे कोई जानवर ने देख लियो तो ही मैं तो आ तो लेनो है वो तो लेनो ही है मन तो चाहिए। अभी नहीं है ध्यान कौन नहीं भी हो इन पकड़ सी तो इन्हें खा जाएगो या कोई नुकसान पहुँचा देगा वो भी इन्हें कौन ध्यान है। तो बा तो अपा ने ध्यान है नहीं अच्छा बुरे की तो कोई चीज़ जकी लिया के देने वाली देखो बहनों अपा ने लिया ही देनी पड़े पर बिना काम की चीज़ है जखियों बांगो नुकसान होता है तो भी अपन ने की है नहीं लिया के देनी चाहिए। टाबर तो देखो बहनों जिद करे ही है यार कई बार के है टाबरांग जिद वो अपन अब के दे भी हर चीज़ पर आप रीस करा मानिए कह दिया या चीज़ आप थाने कौन दिलावा या गुस्सो कर दिया तो आप देखो बहनों थोड़ा आराम हो बने प्यार हूँ समझना चाहिए। और दूसरों के टाबर की जी कोई उम्र हुआ है जी 2 साल हो लेके 5 साल का टाबर हम तो देखो जिद में देखने मिल रही है बात तो देखो बहनों आम ही बात है क्योंकि भी छोटा हुआ है जमे बिल्कुल नादान भोला टाबर हुआ है बने जमे ही अच्छे माड़े को गेड़ को नहीं 5 साल मोटो हो जाए नहीं टाबर देखो बहनों वो अपने आप छियाणो लग जाए बिना अच्छे माड़े की समझ आने लग जाए वो देखना लग जाए या चीज़ आ मेरे खातर अच्छी कोनी आ मैंने ख़राब करेगी या आ चीज़ मैंने लेनी कोनी तो भी ने गर्म सर्द को सारो की। अब छोटे टाबर ने तो ना तो भी ने देखो बहनों ताता ठंडा को ध्यान ना भी ने अच्छा माड़े को ध्यान तो अपा ने देखो इन चीज़ को ध्यान है नहीं तो बाकी देखो आज जिया 2 सालों लेके 5 साल तक टाबर थोड़ी जिद करे ही है। और दूसरों कई बार के टाबर अपनी जिया आपकी को पहचान बनाने खातर टाबर जिद करे कि मैं यहाँ दूसरा ने दिखाऊँ कि मैं तो आजाद हूँ मैं तो खुल्लूँ मन तो आ चीज़ मिले मेरा हर चीज़ शौक पूरा है दूसरा ने देख थोड़ा सा टाबर कई बार करे। और कई बार की है वो जिद करे अब जिया जरूरत बताने खातर जिया भी इनको थकेड़ो है या भी इनको भूख लाग रही है तो बिना भी ये ध्यान कौन पड़े या नींद पूरी ना हो कई बार देखो बहनों वो अपन ध्यान ही है आपा टाबरान पालिया अपन ध्यान नहीं चीज वो भी अब टाबर जिया बेटेम को सोचे नहीं तो वो देखो बहनों ये री करी वो करे ना तो वो मैं आ ले छूँ आ कोनी लियूँ मैं आ खा छूँ फिर देवाज आ कोनी खाऊँ मैं तो यहाँ कोनी करूँ बे यहाँ जिद सी कर वो करे चिड़चिड़ो सुगड़ कुकर हो जाए तो अपा ने थोड़ा सो इन चीज़ को अपा ने तो इन चीज़ को ध्यान है भी वो यहाँ क्या मी करे भी इंग नींद पूरी को नहीं हुई इंग वही बात आप मोटोडा कह दिया भी मेरा नींद पूरी को नहीं हुई मेरा सिर दुख है दिल टूटे तो अपा तो बता जाना टाबर ने इन चीज़ को देखो बेनो ध्यान को नहीं हुए तो

0: देखो बंग आपगी भी बंग शरीरिक बस या शरीर ही बंग चिड़चिड़ोपन हो जाए, मन थकेलो हो जाए, या फिर मन कई बार भूख लागड़ी हो तो टाबर ना ध्यान को नहीं मीने तो यहाँ लगे, या तो यहाँ किसी मेरे पेट दुख है या भी नहीं लगे भी मने भी बस रोनो या माँ चीज़ लेनी आ चीज़ वो यहाँ समझ को नहीं पड़े भी ने वो बता को जाना भी मैंने भूख ला रही है मैंने रोटी दे दे वो बहाना हूँ कभी की मांगे गो कभी की करे गो कभी की करे गो तो कट्ठे ही तो अपन देखो बिना जिद करनी। कई बार क्या जो बड़ो टाबर हो जाए शानो हो जाए वो यहाँ हर चीज़ की जिद करन लग जाए तो अपन बिंगी जी जिद पूरी करानी तो टब्बर बिगड़ेगो और अपने कहना शो बारह हो जाए तो अपन के जी छोटा टब्बर है तो बने अपना थोड़ा सा भी नहीं समझाना चाहिए भी बेटा मैं ना कह दी तो ना गो मतलब ना ही है भी आ चीज़ अच्छी को नहीं तेरे खतरे है और या फिर के टब्बर को ज़्यादा मारने कूटने ना हो तो मारनो नहीं चाहिए टब्बर ने आराम हो के है बिना समझाओ और बिना अपना ध्यान भी हो नहीं ध्यान भटका दो टब्बर है वो तो टब्बर तो भूल जाए अपना बिन कह दिया भी आ चीज़ आ कौन बिन दूसरी सुनी चीज़ दिखा दो कोई पास ले जाओ कठी बारह ले जो घरों बारे ले जो थोड़ा बहुत या कोई मनोरंजन को कोई खाण पीण को थोड़ा सा लालच दे दियो इतम टाबर बुलाई जे जे जे के भी आप जे प्यारों बात करा बिना समझावानी या फिर बाद में एक कर मौका है वो है फिर बाद में या तो बड़ो टाबर हो नहीं वो 5 साल को तो भी खुद ही समझा जाए वो आप ही आगे गलती मान ले भी आ चीज़ मेरे गलती होगी या मैं ये कौन मांगू या फिर आपा भी ना आराम समझाना चाहिए बेटा भी बाद जबकि तू बद जद बात को नहीं बात तेरे खतर गलती मैं जिद तेरी पूरी कौन करी बाकी तो भी आई हुआ है कि वो टाबरा ध्यान है आपा नहीं ध्यान है बेटो भी आपा ध्यान ही बहनों भी आपा बंग नहीं मुँह माली चीज़ काट के दे दिया टावर खतर तो बन कोई चीज़ बिस्तर थोड़ी ना रहने दिया पर आपनों बन अच्छा माड़े गो आपा ने बन एहसास कराना वो भी देखो बहनों आपनों ही फर्ज है आपा टाबर ने जे सुधारा तो सुधर जाए और जे बिगाड़ा तो बिगड़ जाए जे अपन थोड़ा सा अच्छा माड़े गो ध्यान रखा भी ने बतावा नहीं भी आ चीज़ और कई बार के टाबर यहाँ ब्लैकमेल कर ला जाए भी ज्यादा लगातार रोन ला जाए चिंखण ला जाए रोटी खाणो मना करते वो ये चीज़ें देखो बहनों सरेआम गलत हो भी वो कोई मतलब कौन नहीं है भी जी हमें को आ चीज़ कौन मिली तो मैं खाणो कौन खाऊं बच्चा ने समझाओ भी खाणो खाणो तेरा शरीर खातर जरूरी है आ भी तेरे आ तो सब ज़्यादा जरूरत है आ तो तने जरूर है चीज़ मिले या ना मिले खाणो तने खाणो है खैर या रोनो चीखनो या फिर धक्कों कोई आपकी बात मनवानी ये देखो बहनों बातें गलत हो जाए आप मानन लग जाए तो टब्बर आ चीज़ों का फायदा उठान लग जाए भी मैं रोटी कौन जीवूँ तो आ चीज़ बिना आप थोड़ा समझावा नहीं भी रोटी तो तने खानी ही खानी है चाहे चीज़ मिलो या ना मिलो आ तेरे शरीर खातर जरूरत है जरूरी है और सारा मैं भी जीवा तने भी जीवनी है तो आप थोड़ा सा बिना आराम समझावा नहीं खैर तो टब्बर के मान जे और कई बार कि अपन कोई बांगी भी जिद पूरी करनी पड़े और कठे अपन के ना भी करनी पड़े तो मैंने वो अपन सुना एक गीत।
1: चाला जोधपुर ए जी जोधपुर का कबूतर अर भाई उड़ता रे पुर पुर र ग मोटर बोली गुर छोरा बोलिया हुर लागर गिंडकड़ा लागर गिंड

0: बाल भाई रे कान्यो गयो रूस लारे कबूतर सूस कान्यो गयो रूस लारे कबूतर सूस ये जी मोर राम जी ये जी मोर राम जी करा फैसलो।
1: तो बहनों स्टूडियो की घड़ी के है और इजाजत को नहीं देवे तो बहनों उठे पूनम भाई ने दियो आज्ञा हूं चालू राम राम सा
0: हे मारा लाल ने दूध पिलाऊं गर्र मर गर्र।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। लोकसभा में जन और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। हैदराबाद पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री फैलाने के आरोप में मेटा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की। कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। आयुष मंत्रालय और इंडिया AI ने आयुष क्षेत्र में AI आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज। 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और राष्ट्र आज स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पेश किया। सदन में बिना किसी चर्चा के हंगामे के बीच विधेयक पारित हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस विधेयक पर चर्चा में भाग न लेने के लिए विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कार्य सलाहकार समिति में चर्चा के लिए समय पहले ही निर्धारित किया जा चुका था। उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्ष से बार बार अपील की थी कि ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर उचित चर्चा सुनिश्चित की जाए।
1: पार्लियामेंट में भेजा है बात बोलने के लिए, हंगामा करने के लिए नहीं, लेकिन आप हिस्सा नहीं लेते हैं बिल में। फिर आप बाहर में न्यूज में जाकर के कहते हैं कि सरकार चर्चा नहीं कराते, बिना चर्चा के बिल पारित करते हैं। ये इल्जाम आप नहीं लगा सकते, आपने अपना मौका गंवा दिया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, सहयोग करें, हंगामा ना करें।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है।
2: जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह नया विधेयक लाया गया है। इसके तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन 2 साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना 2 वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा।

0: जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय को संसद की आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई। हंगामे के बीच सदन ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की।
2: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
1: राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी सदस्यों की आलोचना करते हुए कहा कि वे हर मुद्दे पर व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं और चर्चा से बच रहे हैं।
3: सदन की गरिमा के साथ खेलवाड़ किया जा रहा है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये प्रतिपक्ष केवल अराजकता फैलाना चाहता है, हंगामा खड़ा करना चाहता है। चर्चा से इनको कोई लेना देना नहीं है। हम इनकी घोर निंदा करते हैं माननीय सभापति महोदय। सदन की गरिमा को तार तार करना ये इनका स्वभाव हो गया है। देश इनको देख रहा है और देश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मेटा इंडिया के अधिकारियों और कई सोशल मीडिया अकाउंट संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक सामग्री वायरल होने के बाद की गई है। हैदराबाद साइबर क्राइम के पुलिस उपायुक्त अरविंद बाबू ने पुष्टि की है कि भाजपा की सोशल मीडिया इकाई की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है। भाजपा की तेलंगाना इकाई ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाकर तैयार की गई विकृत, अपमानजनक और निंदनीय सामग्री बनाने, फैलाने और प्रचारित करने वालों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और मारपीट की। एक सहायक उपनिरीक्षक के बेटे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान उनके पिता के सर में चोट आई।
4: मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइंस पे उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। ऑन 25 मई at 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक

0: स्टिचेस लग रहे थे फोर। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट, उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज है, उसमें एग्रेसर्स हैं, इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस।
1: झारखंड के भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री तथा कोडरमा से भाजपा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कांग्रेस पर इस मामले पर दोहरा रुख अपनाने का आरोप लगाया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची से लोकसभा सांसद संजय सेठ ने कहा कि झारखंड में हजारों छात्र जेपीएससी पेपर लीक और जेएसएससी भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
2: देखो, झारखंड के अंदर हजारों छात्र धरने बैठे हैं पिछले पांच दिनों से, भारी बारिश में भी ऊपर प्लास्टिक लगा वो भी छू रहा लेकिन हिल नहीं रहे। उनकी एक ही डिमांड है कि जेपीएससी पेपर लीक मामला और जेएसएससी जो भर्ती घोटाला उसकी सीबीआई जांच कराओ। झारखंड की जनता ने पूरी तरह मन मना लिया, सीबीआई जांच से कम स्वीकार नहीं। क्यों? हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं।
1: आयुष मंत्रालय और इंडिया एआई ने आयुष क्षेत्र में एआई आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आयुष मंत्रालय ने कहा कि समझौते का उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पारंपरिक चिकित्सा में अनुसंधान, डिजिटल स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण और नवाचार को मजबूत करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों के हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के रेनसा टाउनशिप में एक नाटकीय अभियान में बंगाल एसटीएफ ने जैश के एक संदिग्ध आतंकवादी हामिद मंडल को गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है कि आतंकवादी सज्जाद भट्ट गुट से जुड़ा हुआ है। आइजोल के सूचना और जनसंपर्क मंत्री पू बी लालछनजोवा ने कहा कि आकाशवाणी आइजोल ने मिजो पहचान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी आइजोल की हीरक जयंती के अवसर पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि 1966 में अपनी स्थापना के बाद से इस स्टेशन ने मिजो भाषा, संस्कृति, रीति रिवाजों और परंपराओं के संरक्षण तथा संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने संदेश में आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने कहा कि बदलते समय में भी आकाशवाणी आइजोल मिजोरम के लोगों के लिए सूचना का एक विश्वसनीय स्रोत और मार्गदर्शक बना हुआ है। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, केरलम, माहे, पंजाब और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भी मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। गुजरात के कई हिस्सों में आज फिर हुई तेज बारिश से जनजीवन और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मध्य और दक्षिण गुजरात के 13 जिलों में आज तेज बारिश का रेड अलर्ट है।
3: गुजरात में सुबह से ही कई हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सूरत, खेड़ा और आणंद जिलों में कई जगहों पर गंभीर जलभराव देखने को मिला है। व्यापक जलभराव को देखते हुए आज सुबह से ही वडोदरा, सूरत, आणंद और नर्मदा जिले के निचले इलाकों में रहने वाले 720 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा चुका है। नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण राज्य के 21 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 17 टीमें, एसडीआरएफ की 33 प्लाटून और सेना के 6 कॉलम भी पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं मौसम विभाग ने मछुआरों को 2 अगस्त तक समुद्र में न जाने की चेतावनी दी है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान जारी है।
4: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हालांकि महानदी नदी प्रणाली में अब काफी हद तक नियंत्रण में है क्योंकि इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में बारिश कम हुई है। हालांकि लगभग 268,000 लोग बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं जबकि 13 जिलों में करीब 8 लाख लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बैतरणी नदी का

0: जलस्तर फिर से बढ़ रहा है। राजुआ नदी के बाढ़ के पानी ने खोरधा जिले के कई गाँव को प्रभावित किया है। उड़ीसा के राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने आज वर्चुअल माध्यम से जिला कलेक्टरों के साथ बाढ़ की स्थिति और राहत कार्यों की समीक्षा की। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वें शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उधम सिंह गदर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। हैदराबाद पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री फैलाने के आरोप में मेटा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की। कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों के हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज। 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर। और गुजरात तथा मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 326.7 किलोमीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए फिल्म संगीत में मोहम्मद रफीक की पुण्यतिथि के अवसर पर आज सुनिए उन्हीं के गाए नगमे कुछ अन्य गायिकाओं के साथ। पहला गीत शारदा के साथ, फिल्म का नाम सीमा। गीत लिखा गुलजार ने, संगीत तैयार किया शंकर जयकिशन ने।

आंगन देखी। इस फिल्म में सुनिए मोहम्मद रफ़ी के साथ सुलक्षणा पंडित को। गीत लिखा पद्मा सचदेव ने, संगीतकार हैं जे कौशिक।

मोहम्मद रफ़ी के साथ आइए आप सुने शमशाद बेगम को। शब्द रचना शकील बदायूनी की और धुन नौशाद की। फिल्म का नाम चांदनी रात।

मोहम्मद रफ़ी के साथ अब हम आपको सुनवाते हैं आशा भोंसले को फिल्म तीसरी मंजिल में। इस गीत को लिखा मधुरू सुल्तानपुरी ने और संगीतबद्ध किया आर डी बर्मन ने।

बप्पी लाहिड़ी के संगीत निर्देशन में सुनिए फारूक कैसर का लिखा गीत। इस गीत को मोहम्मद रफ़ी के साथ आवाज़ दी है अनुराधा पौडवाल ने और फिल्म का नाम है लहू के दो रंग।

आया सावन झूम के। इस फिल्म में सुनिए मोहम्मद रफ़ी के साथ लता मंगेशकर को, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। ये है आज के इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।

अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। दोपहर के 3 बज चुके हैं। अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप हमारे उर्दू सर्विस के कार्यक्रम सुनेंगे सिर्फ न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और FM बैंड पर। मीडियम वेव पर 5 बजे तक हमारे प्रसारण बंद रहेंगे। आइए उर्दू सर्विस के कार्यक्रम सुनते हैं थोड़ी देर में।

मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर होंगी।

ये आकाशवाणी है। अब आप अब्दुल मालिक से खबरें सुनिए। भारत आलमी साझेदार मुल्कों के साथ मिलकर पाकिस्तान से फैलने वाली दहशतगर्दी का मामला लगातार उठाता रहा है। मुल्कों और कसीर मुल्की इदारों के साथ इंसदादे दहशतगर्दी के लिए 31 मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाए गए हैं। कुछ ही घंटों के दौरान चीन, तिब्बत और नेपाल में जलजले के कई झटके महसूस किए गए हैं। सबसे ज्यादा तेज जलजला चीन में महसूस किया गया, जिसकी शिद्दत रेख्तर पैमा पर 4.5 बताई जाती है। हैदराबाद पुलिस ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ काबिल एतराज मवाद फैलाने के बिना पर मेटा इंडिया के एहलकारों के खिलाफ एक FIR दर्ज की है। CJP के एहतजाज के दौरान जख्मी होने वाले दिल्ली पुलिस के अमले के कुनबों वालों ने इंसाफ की मांग की है और मुजाहिरों के दौरान और ज्यादा तहफ़ देने का मुतालबा किया है। और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फौज पुरम एहतजाज करने वालों के खिलाफ वैश्याना कार्रवाई जारी रखे हुए है। 120 से ज्यादा अफराद के मारे जाने की इत्तला मिली है। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने कहा है कि वो दीगर ममालिक के सामने आला सतही और सरकारी मीटिंगों में पाकिस्तान से होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी का मसला मुसलसल उठा रही है। आज लोकसभा में एक तहरीरी जवाब में उमूर खारजा के वजीर मुमलिकत कीर्ति वर्धन सिंह ने बताया कि भारत ने 31 मुल्कों और 6 कसीर फरीकी ग्रुपों के साथ दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम किए हैं, जहां इस मसले पर बाकायदगी से बातचीत होती है। उन्होंने कहा कि कई ममालिक ने पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि अप्रैल 2025 के पहलगाम दहशतगर्दाना हमले पर भारत के रद्द अमल को बैन अलाक़वामी सतह पर खूब सराहा गया, जबकि मुख्तलिफ कसीर फरीकी फोरम्स के मुश्तरका ऐलानिये में भी इस हमले की मजम्मत की गई। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में पुरम मुजाहिदीन पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। एहतजाज के शुरू होने के बाद से अब तक सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में 120 से ज्यादा अफराद के हलाक होने की खबरें हैं। ताज़ा तरीन वाकयात में रावलकोट, मीरपुर और कोटली में खवातीन मुजाहिदीन पर मुबैना फायरिंग का मामला शामिल है, जिसकी वसी पैमाने पर मजम्मत की जा रही है और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक ताज़ा खदशात पैदा हो गए हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से इस हफ्ते के शुरू में सिविलियन अफराद के खिलाफ वैश्याना कार्रवाई के बाद जिसमें 40 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए, एहतजाज का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक मकामी हुकाम ने अब बुनियादी हकूक का मुतालबा करने वाली खवातीन मुजाहिदीन को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी तादाद में जमा खवातीन मुजाहिदीन पर फायरिंग की, जो कार्रवाई के खिलाफ नारे लगा रही थी। अक्वामे मुत्तहिदा में इंसानी हकूक के हाई कमिश्नर के तर्जुमान जेरमी लॉरेंस ने एक बयान में कहा कि POJK में सिविल सोसाइटी की तंजीमों को मुजरिमाना करार देना और इज्तिमात पर सख्त पाबंदियां आयद करना इजारे राय की आज़ादी, पुरम एहतजाज और तंजीम साजी के हकूक की खिलाफ वर्जी के बारे में संगीन खदशात पैदा करता है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में कोयले के कान में धमाका होने से कम 32 कानकुन हलाक हो गए। बताया जाता है कि कान में मीथेन गैस के भर जाने की वजह से यह धमाका हुआ। खबरों के मुताबिक 10 दूसरे कारकुन अभी वहीं फंसे हुए हैं। सरकार के कानों से मुतालिक इंस्पेक्टर गनी बलोच ने बताया कि बचाव का काम उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक के तमाम फंसे हुए कारकुनों को वहां से बाहर नहीं निकाल लिया जाता। पाकिस्तान की कोयला कानों में इस तरह के जानलेवा वाकयात एक आम बात है, क्योंकि वहां की कानों में बुनियादी हिफाजती इकदाम नहीं किए जाते। चीन, तिब्बत और नेपाल के कुछ हिस्सों में आज सुबह सवेरे जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले की जानकारी देने वाले कौमी सेंटर NCS ने बताया कि

सबसे ताकतवर जलजला चीन में महसूस किया गया, जिसकी शिद्दत 4.5 थी। इससे पहले देर रात 12:50 पर तिब्बत में 4.2 शिद्दत का जलजला महसूस किया गया और नेपाल में भारतीय वक्त के मुताबिक देर रात 1:18 पर 3.4 की शिद्दत का जलजला महसूस किया गया। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंसादे दहशतगर्दी से मुतालिक जारी अपनी कार्रवाई के दौरान एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए राजौरी जिले में थाना मंडी सब डिवीजन के बंगाई जंगलात में मुश्तबा दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने को तहस नहस कर दिया। आकाशवाणी जम्मू के नामा निगार ने खबर दी है कि तलाश की कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों ने खाने पीने का सामान और रोजमर्रा के इस्तेमाल की दीगर अशिया बरामद की, जिससे पता चलता है कि दहशतगर्द इस खुफिया ठिकाने को एक आरजी पनागाह के तौर पर और लॉजिस्टिक्स के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। बरामद शुदा अशिया में चावल की बोरियां, इंस्टेंट नूडल्स, एक गैस स्टोव, एक लाइटर, एक चाकू, मोमबत्तियां, एक प्लास्टिक की शीट और पुराना कंबल और प्लास्टिक का एक पानी का कंटेनर शामिल है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर होने वाले एहतजाज के दौरान जख्मी होने वाले दिल्ली पुलिस के अहलकारों के अहल खाना ने इल्जाम लगाया कि मुजाहरे के दौरान पुलिस अहलकारों को जानबूझकर निशाना बना गया। आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भीड़ ने अगली सफ में तैनात पुलिस अहलकारों को घेर लिया, उन पर पथराव किया और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस अहलकारों के अहले खाना ने कहा कि इस वाकये में मुतादित पुलिस अहलकार शदीद तौर पर जख्मी हो गए। उन्होंने हुकाम से मुतालबा किया कि मुबैना हमलों में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और अवामी मुजाहरों के दौरान तैनात पुलिस अहलकारों को बेहतर तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। एक सब इंस्पेक्टर की बेटी ने बताया कि उनके वालिद को मुबैना तौर पर हुजूम ने घसीटा, जिसके बाद उन्हें बेहोशी की हालत में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दाखिल कराया गया। हैदराबाद पुलिस ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ काबिल एतराज मवाद फैलाने के बिना पर मेटा इंडिया के एहलकारों के खिलाफ एक FIR दर्ज की है। सोशल मीडिया चलाने वाले कई दूसरों के खिलाफ भी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इसी तरह के काबिल एतराज मवाद की वजह से ये FIR दर्ज की गई है। बीजेपी के सोशल मीडिया शोबे की तरफ से शिकायत दर्ज कराने के बाद ये केस रजिस्टर किया गया है। साइबर क्राइम के DCP अरविंद बाबू ने तस्दीक की है कि FIR दर्ज कराई गई है और इस मामले की तफ्तीश जारी है। तेलंगाना बीजेपी ने मुतालबा किया है कि इस तरह का मवाद फैलाने के मुबैना जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। बीजेपी के तर्जुमान NV सुभाष ने कहा कि पार्टी ने साइबर क्राइम पुलिस से राब्ता कायम किया है और वाजा तौर पर कहा है कि इजहार राय की आजादी को बेजा और किरदार कुशी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्मों को कानून के तहत जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमन से मुतालिक बोर्ड ने गजा में हमास और दीगर मुसल्ला ग्रुपों को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्ला करने के लिए एक समझौता किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर ट्रंप ने कहा कि यह समझौता गजा के लिए कतई तौर पर एक अहम कदम है, जहां फलस्तीन की नई हुकूमत अमन से मुतालिक बोर्ड के साथ मिलकर काम करेगी ताकि फलस्तीनी आवाम की मदद की जा सके। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसराइल को अपनी सिक्योरिटी का हक हासिल होगा, जिसका कि वो मुस्तैद है, और गजा को दहशतगर्दाना हमलों के लिए एक बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इराक ने इन दावों की तरदीद की है कि उसे अमेरिका सऊदी अरब के हालिया हमलों की पहले से जानकारी थी या उसने इन हमलों की मंजूरी दी थी, जिनमें ईरान के हिमायत याफ्ता पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के कम अज कम 20 मेम्बरान मारे गए थे। इराक की हुकूमत के तर्जुमान हैदर अल अबूदी ने कहा कि बगदाद ने ना तो इन हमलों का इख्तियार दिया था और ना ही उसे पहले से इन हमलों के बारे में जानकारी थी। इराक ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इन दावों को मुस्तरद कर दिया है कि ये हमले इराकी हुकूमत के साथ मिलकर किए गए थे। इराक ने इन इल्जाम के बारे में सऊदी अरब से भी सबूत मांगा है कि इराक में ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रुपों ने सऊदी अरब पर ड्रोन हमले किए थे। सऊदी अरब ने कहा कि इस हफ्ते के शुरू में ड्रोन हमलों से बुनियादी ढांचे और राजधानी रियाज को निशाना बनाया गया था, लेकिन इराकी हुकाम ने कहा कि अब तक सऊदी अरब ने कोई सबूत फराहम नहीं किया है। वजीर आजम शिया अल सुडानी ने हमलों के बाद सऊदी अरब का दौरा भी मुलतवी कर दिया है। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत आलमी साझेदार मुल्कों के साथ मिलकर पाकिस्तान से फैलने वाली दहशतगर्दी का मामला लगातार उठाता रहा है।

0: मुल्कों और कसीर मुल्कीदारों के साथ इंसदादे दहशतगर्दी के लिए 31 मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाए गए हैं। चीन, तिब्बत और नेपाल में कुछ ही घंटों के दौरान जलजले के कई झटके महसूस किए गए हैं। सबसे ज्यादा तेज जलजला चीन में महसूस किया गया, जिसकी शिद्दत रेख्ता पैमाने पर 4.5 बताई जाती है। हैदराबाद पुलिस ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ काबिले एतराज मवाद फैलाने के बिना पर मेटा इंडिया के अहलकारों के खिलाफ एक FIR दर्ज की है। CJP के एहतजाज के दौरान जख्मी होने वाले दिल्ली पुलिस के अमले के कुनबे वालों ने इंसाफ की मांग की है और मुजाहरे के दौरान और ज्यादा तहफ़ फराहम करने का मुतालबा किया है। और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फौज पुरम एहतजाज करने वालों के खिलाफ वैशाना कार्रवाई जारी रखे हुए है। 120 से ज्यादा अफराद के मारे जाने की इतला मिली है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1073 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशे खिदमत है फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। सामईन, आज के मेरी पसंद प्रोग्राम में हम यकीनन आप समझ गए होंगे किस गुलकार के नगमे सुनवाएंगे। जी हाँ, आप सही समझें, आज मोहम्मद रफ़ी के नगमे हम आपकी नज़र करेंगे, चूँकि आज उनका यौम वफात है। जहाँ तक मोहम्मद रफ़ी के बारे में बहुत सी बातें हो चुकी हैं, फीचर भी हमने आपको सुनवाया, यकीनन हमारे सामने ने सुना होगा। कोटा सुल्तान सिंह में पैदा हुए थे, जो अब अमृतसर के पास पड़ता है। उस वक्त तो गैर मुनकसिम हिंदुस्तान में था वो, और अब अमृतसर के पास एक जगह मजीठा, वहाँ का वो गांव है। बचपन से ही आपको गाने का शौक़ था और एक फिल्म, एक फ़कीर की आवाज़ सुनकर मुतासिर हुए और फिर गुलकारी को ही अपना मकसद बना लिया। धीरे धीरे अल्लाह ताला ने उनकी आवाज़ में लोच पैदा किया, उनके शौक़ को परवान चढ़ाया और वो फिर एक ऐसी आवाज़ बन गए जिसे अगर कहा जाए कि अमर आवाज़, जो आज भी हमारे दिलों में उसी तरह जिंदा और ताबिंदा है। आज के मेरी पसंद प्रोग्राम में सामईन, मैं आपको, हालांकि जहाँ तक मोहम्मद रफ़ी की बात है, मोहम्मद रफ़ी ने नज़रुल गीत भी गाए, कव्वाली भी गाई, गज़ल भी गाए, भजन्स भी गाए, शब्द भी गाए, नाते भी पेश किए हैं, फिल्मी गाने भी गाए हैं, कॉमेडी नगमात भी पेश किए हैं, लेकिन मैं मेरी पसंद में आपको सिर्फ आज मोहम्मद रफ़ी के कुछ ऐसे भजन सुनवाऊंगा जिन्हें सुनकर लोग आज भी मशहूर हो जाते हैं।

ये वचन था बैजू बावरा फिल्म से, और इसके जो नगमा निगार थी वो थे शकील बदायूनी और मौसीकार थे नौशाद। इस भजन को सुनकर एक बहुत बड़े साइंसदान ने कहा था कि लगता है कि भजन नहीं बल्कि भगवान खुद सामने बैठे हुए हैं और उनकी आरती की जा रही है। ऐसा एक और भजन आप तमाम सामाइन की नजर है।

चित्रलेखा फिल्म का नगमा सुन रहे थे आप ये भजन की सूरत में, और अगला भजन है नागिन और सेपेरा फिल्म का। एक आवाज़ एक मरतबा फिर मोहम्मद रफ़ी की है, मौसीकार हैं हरबंस।

0: इस भजन के साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब ख़त्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है डॉक्टर सईद आलम का तहरीर करदा फीचर कहानी के बड़े भाई साहब प्रेमचंद।
1: चेतावनी। मेरा जीवन सपाट समतल मैदान है जिसमें कहीं कहीं गड्ढे तो हैं पर टीलों पर्वतों घने जंगलों गहरी घाटियों और खंडरों का स्थान नहीं है। जो सज्जन पहाड़ों की सैर के शौकीन हैं उन्हें तो यहाँ निराशा ही होगी।
2: यानी मैं प्रेमचंद हूँ, लोग मुझे मुंशी प्रेमचंद के नाम से जानते और पुकारते हैं। मेरे नाम के पहले मुंशी क्यों जोड़ दिया गया है मुझे मालूम नहीं। इसकी वजह शायद ये ना हो कि मैं लिखता हूँ, बल्कि शायद ये हो कि मैं बहुत और निरंतर लिखता हूँ, किसी सरकारी दफ्तर के मुंशी की तरह। वैसे मेरा असल नाम भी प्रेमचंद नहीं, मेरा असल नाम धनपत राय है, यानी साहिबे मालुजर। ये नाम मेरे पिताजी ने मुझे दिया था। अगर वो और अधिक जीवित रहते तो उन्हें निराशा ही हाथ लगती। मेरा जन्म 31 जुलाई सन 1880 में बनारस से 4 मील दूर लमही नाम के गांव में हुआ था। मेरे चचा तुम्हारे दुलार के मुझे नवाब कहते। उनकी देखा देखी घर और पास पड़ोस वाले भी मुझे नवाब कहने लगे, साथ ही संगी भी, वरना नवाब और नवाबियत से मेरा दूर दूर तक कोई ताल्लुक न था। मामला यूं था कि पिताजी डाकखाने में मुंशी थे, माता मरीज, एक बड़ी बहन भी थी। उस समय पिताजी शायद 20 रुपए पाते थे। जब मैं 7 साल का था तो माताजी का देहांत हो गया, पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ किस्से कहानियों की सौतेली माँ की तरह मुझे यातनाएं तो न देती, पर गाहे बगाहे झिड़कियों और उलाहनों से जरूर नवाजती रहती। इस अभाव को मेरी बड़ी बहन अपने लाड प्यार से पुर करती। पर क्या कहिए कि बहन की प्रथा अनुसार कम उम्री में ही शादी हो गई और वो अपने ससुराल

0: सिधारी। इसी 7-8 साल की उम्र में मेरा दाखला एक मदरसे में करवा दिया गया, जहां मैं एक मौलवी साहब से उर्दू फारसी पढ़ता। मौलवी साहब में दो खसूसियात थी, पहली ये कि वो पढ़ाते बहुत उम्दा थे, दूसरी वो हाजिरी न लेते थे। मेरे नजदीक दूसरी खसूसियत पहली से बेहतर थी। मैं कभी कभार मदरसे से गैर हाजिर हो जाता। उर्दू फारसी की मशक के बजाय गोलियों और गुल्ली डंडे की मशक करता, पर शत शत प्रणाम मौलवी साहब को कि उनकी वजह से मुझ में उर्दू और फारसी की शुद्बुद पैदा हो गई। वो ना होते तो मैं ना तो मौलवी शरर को पढ़ पाता, न पंडित रतननाथ सरशार को, न मिर्जा रसुआ को, न हरदोई के मौलवी मोहम्मद अली को, न पुराणों का उर्दू अनुवाद, न बंकिम चंद्र चटर्जी के बांग्ला नावलों और अफसानों का उर्दू अनुवाद, और ना ही तिलिस्म होशरुबा। मेरे लिखने लिखाने के शौक की प्रेरणा यही लेखक और किताबें हैं जिनका नाम मैंने अभी अभी लिया। मेरे एक दूर के रिश्ते के मामा थे, जो पढ़ने पढ़ाने में मेरी रुचि को लेकर मुझ पर हर समय फप्तियां कसते। खुद उनमें ढेरों बुराइयां थी जिस पर उनकी नजर न पड़ती। मैंने भी एक रोज बदले की भावना से प्रेरित होकर उन पर एक नाटक लिख डाला, जिसमें उनकी बुराइयों और कमियों का खूब खूब मजाक उड़ाया गया था। तब मैं यही कोई 12-13 साल का था। ये नाटक मेरी पहली साहित्यिक काविश थी।
1: अरे नवाब राय
0: जी, जी मामा जी,
1: इधर आओ। ये पढ़ने के साथ साथ अब लिखने भी लगे हो?
0: नहीं तो
1: फिर ये नाटक किसने लिखा है?
0: हमने।
1: और इसके मुख्य पात्र हम हैं, जिसकी खिल्ली उड़ाई गई है।
0: नहीं तो
1: और अब इस नाटक को खेलने का भी विचार है, हैं?
0: मामा जी आप मना करेंगे तो नहीं खेलूंगा।
1: क्या भरोसा?
0: आपके सर की कसम।
1: एक मुहावरा है, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो। पढ़ा या सुना तो हो गई है?
0: जी पढ़ा सुना है।
1: हाँ तो तुम्हारे सामने इस मुहावरे की एक मिसाल पेश करता हूं।
0: तो ये थी मेरी पहली काविश, जिसकी आहुति अग्नि देवता को दे दी गई। मेरे अरमान फिर भी जलकर राख ना हो सके। उन दिनों मेरा इरादा एमए तक पढ़ने का था। मैं बड़ा होकर वकील बनना चाहता था। घर के हालात भी सुधर रहे थे। पिताजी का वेतन 40 रुपये महाना हो गया था, पर कुदरत की सितम जरीफी को क्या कहिए कि 40 रुपये तक पहुंचते पहुंचते पिताजी की मृत्यु हो गई। यूं तो वो बड़े ही दूरंदेश और जीवन पथ पर आंखें खोलकर चलने वाले आदमी थे, लेकिन आखिरी दिनों में एक ठोकर खा ही गए, और खुद तो गिरे ही थे, उसी धक्के में मुझे भी गिरा दिया। 15 साल की उम्र में उन्होंने मेरा विवाह कर दिया, और विवाह करने के साल ही भर बाद परलोक सिधारे। उस समय मैं 9वें दर्जे में पढ़ता था। घर में मेरी स्त्री थी, सौतेली माँ थी, उनके 2 बच्चे थे, और आमदनी 1 पैसे की नहीं। घर में जो कुछ ले ही पूंजी थी वो पिताजी के 6 महीने की बीमारी और क्रिया कर्म में खर्च हो चुकी थी। दौड़ धूप करके शायद 10-12 की कोई जगह पा जाता, पर यहां तो आगे पढ़ने की धुन थी। पर पांव में लोहे की नहीं अष्ट धातु की बेड़ियां थी, और मैं चढ़ना चाहता था पहाड़ पर। स्कूल से 3:30 बजे छुट्टी मिलती थी। काशी के क्वींस कॉलेज में पढ़ता था। हेडमास्टर ने फीस माफ कर दी थी। इम्तिहान सिर पर था, और मैं बांस के फाटक पर एक लड़के को पढ़ाने जाता था। जाड़ों के दिन हुआ करते थे। 4 बजे शाम को पहुंचता था, पढ़ाकर 6 बजे छुट्टी पाता। वहां से मेरा घर देहात में 5 मील पर था। तेज चलने पर भी 8 बजे

0: रात से पहले घर न पहुंच सकता और सुबह 8 ही बजे फिर घर से चलना पड़ता था। कभी वक्त पर स्कूल न पहुंचता, रात को भोजन करके कुप्पी के सामने पढ़ने बैठता और न जाने कब सो जाता। फिर भी हिम्मत बांधे हुए था। 1898 में मैट्रिकुलेशन तो किसी तरह पास हो गया, पर आया सेकंड डिवीजन में और क्वींस कॉलेज में भर्ती होने की उम्मीद न रही, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा न था कि फीस देकर पढ़ पाता और फीस सिर्फ अव्वल दर्जे वाले की ही मुआफ हो सकती थी। संयोग से उसी साल काशी में हिंदू कॉलेज खुल गया। मैंने इस नए कॉलेज में पढ़ने का फैसला किया। प्रिंसिपल थे मिस्टर रिचर्डसन, उनके मकान पर गया। वो पूरे हिंदुस्तानी वेश में थे, कुर्ता और धोती पहने फर्श पर बैठे कुछ लिख रहे थे, मगर मिजाज को तब्दील करना इतना आसान न था।
1: कैसे आना हुआ?
0: मेरा नाम धनपत राय है। 11वें दर्जे में हिंदू कॉलेज में दाखिला लेना चाहता हूँ, पर फीस देने की क्षमता नहीं रखता। पिताजी का
1: भाई, इस बात का संबंध तो कॉलेज से है।
0: जी जी, कॉलेज में दाखिले के सिलसिले में ही
1: भाई, मैं कॉलेज की बात घर पर नहीं करता।
0: खैर, कॉलेज गया, रिचर्डसन साहब से मुलाकात हुई, पर निराशाजनक, फीस मुआफ ना हो सकती थी। अब क्या करूं? अगर शहर की मुअज्जिज़ हस्तियों की सिफारिशें ला सकता तो शायद मेरी अर्जी पर कुछ विचार होता, लेकिन देहाती युवक को शहर में जानता ही कौन था। रोज घर से चलता कि कहीं से सिफारिश लाऊं, पर 12 मील की मंजिल मारकर शाम को घर लौट आता। किससे कहूं, कोई अपना पुछत्तर न था। कई दिनों बाद एक सिफारिश मिली। एक ठाकुर इंद्र नारायण सिंह हिंदू कॉलेज की इंतजामिया कमेटी में थे, उनसे जाकर रोया, उन्हें मुझ पर दया आ गई, सिफारिशी चिट्ठी दे दी। खुश होता हुआ घर आया। दूसरे दिन प्रिंसिपल साहब से मिलने का इरादा था, लेकिन घर पहुंचते ही मुझे ज्वर आ गया और 2 हफ्ते से पहले न टला। नीम का काढ़ा पीते पीते नाक में दम आ गया। एक दिन दरवाजे पर बैठा था कि मेरे पुरोहित जी आ गए। पुरोहित जी प्रणाम।
1: चिरंजीवी रहो, पर कुछ अस्वस्थ दिखते हो बच्चा।
0: पुरोहित जी, ज्वर चढ़ रखा है पिछले 10 दिनों से।
1: ओहो,
0: गरीब के कर्जे की तरह उतरने का नाम ही नहीं लेता।
1: अभी एक जड़ी बूटी लेकर देता हूँ, ठीक है? काली मिर्च में पीस कर खाओ, पलक झपकते ही रोग फुर्र हो जाएगा। पर ठीक होने के 7 दिन बाद तक औषधि लेते रहना।
0: जादू सा असर हुआ। ज्वर चढ़ने में घंटे ही भर की देर थी कि इस दवाई ने मानो जाकर उसका गला ही दबा दिया। पंडित जी, इस जादुई जड़ी का नाम बता दीजिए।
1: क्यों, क्या करोगे?
0: कभी आपकी अनुपस्थिति में बीमार पड़ा तो इसका सेवन कर लूंगा।
1: नाम बता देने से असर जाता रहता है।
0: एक महीने बाद फिर मिस्टर रिचर्डसन से मिला और सिफारिशी चिट्ठी दिखाई। प्रिंसिपल साहब ने मेरी तरफ तीखी नजरों से देखा।
1: इतने दिन कहाँ थे?
0: बीमार हो गया था।
1: बीमार? क्या बीमारी थी?
0: मैं इस प्रश्न के लिए तैयार न था। अगर बुखार बताता हूँ तो शायद साहब मुझे छोटा समझे। बुखार तो बड़ी मामूली बीमारी है जिसके लिए इतनी लंबी गैर हाजिरी।

0: ही नहीं, कोई ऐसी बीमारी बतानी चाहिए जिससे प्रिंसिपल साहब के दिल में दया भाव पैदा हो। पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट सर।
1: पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट? और इतना जल्दी ठीक हो गया?
0: जी।
1: ओके, एडमिशन फॉर्म भर के लाओ।
0: मैंने समझा बेड़ा पार हुआ, फॉर्म लिया, खानापुरी की और पेश कर दिया। प्रिंसिपल साहब उस समय कोई क्लास ले रहे। 3 बजे मुझे फॉर्म वापस मिला, उस पर लिखा था इसकी योग्यता की जांच की जाए। ये नई मुश्किल पैदा हुई, मेरा दिल बैठ गया। अंग्रेजी के सिवा और किसी मजमून में पास होने की मुझे उम्मीद न थी, और बीज गणित और रेखा गणित से तो रूह कांपती थी। जो कुछ याद था वो भी भूल भाल गया था, लेकिन दूसरा उपाय ही क्या था। किस्मत पर भरोसा करके क्लास में गया और अपना फॉर्म दिखाया। प्रोफेसर साहब बंगाली थे, अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। मैं पीछे की कतार में जाकर बैठ गया और 2-4 ही मिनट में मुझे अंदाजा हो गया कि प्रोफेसर साहब अपने मजमून के माहिर हैं। घंटा खत्म होने पर उन्होंने आज के सबक पर मुझसे कई प्रश्न किए और फॉर्म पर सेटिस्फैक्ट्री लिख दिया। दूसरा घंटा बीजगणित का था, इसके प्रोफेसर भी बंगाली थे। मैंने अपना फॉर्म दिखाया, इन प्रोफेसर साहब ने गणित यानी हिसाब में मेरी परीक्षा ली। मैं फेल हो गया, फॉर्म पर हिसाब के खाने में अनसेटिस्फैक्ट्री लिख दिया गया। मैं इतना हताश हुआ कि फॉर्म लेकर फिर प्रिंसिपल के पास न गया, सीधा घर चला आया। हिसाब का विषय मेरे लिए गौरी शंकर की चोटी थी, कभी उस पर न चढ़ सका। इंटरमीडिएट मैंने 2 बार प्राइवेट पास करने की कोशिश की, दोनों बार हिसाब में फेल हुआ। तंग आकर इम्तिहान देना ही छोड़ दिया। खैर, दौड़ पीछे की तरफ ऐ गर्दिशे अय्याम तू। मैं निराश होकर घर तो लौट आया, लेकिन पढ़ने की लालसा अभी तक बनी हुई थी। घर बैठकर क्या करता, किसी तरह हिसाब सुधारूं और कॉलेज में भर्ती हो जाऊं, यही धुन थी। पर इसके लिए शहर में रहना जरूरी था। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों एक वकील साहब के लड़कों को पढ़ाने का काम मिल गया।
1: भाई, ऐसा है कि 5 रुपए माहाना मिलेंगे, अब बताओ मंजूर है?
0: वकील साहब मंजूर तो है, पर समस्या ये है कि शहर में मेरा अपना मकान नहीं, कोई 1-1.5 रुपए तो किराए में ही लग जाएंगे। जो बचेगा उसमें ना तो मेरी गुजर बसर हो सकेगी, ना ही घर वालों की। पिताजी अब इस दुनिया में नहीं।
1: मेरे अस्तबल के ऊपर एक कच्ची कोठरी है, वहां रह सकोगे? मैं उसका किराया नहीं लूंगा।
0: मैं तो अस्तबल में भी रह लूंगा, घोड़ा अपनी काया के विपरीत बहुत सहज और सरल जानवर है। मैंने 2 रुपए में अपना गुजर करके 3 रुपए घर पर देने का फैसला किया। कच्ची कोठरी में एक टाट का टुकड़ा बिछा दिया, बाजार से एक छोटा सा लैंप लाया और शहर में रहने लगा। घर से कुछ बर्तन भी लाया, एक वक्त खिचड़ी पका लेता और बर्तन धो माज कर लाइब्रेरी चला जाता हिसाब पढ़ने। लेकिन हिसाब तो बहाना था, उपन्यास वगैरह ही पढ़ा करता। जिन वकील साहब के लड़कों को पढ़ाता था उनके साले साहब मेरे साथ मैट्रिकुलेशन में पढ़ते थे, उन्हीं की सिफारिश से मुझे ये नौकरी मिली थी। उनसे दोस्ती थी, इसलिए जब जरूरत होती पैसे उधार ले लिया करता था, वेतन मिलने पर हिसाब हो जाता था। महीने के अंत में कभी 2 रुपए हाथ आते, कभी 3। जिस दिन वेतन के 2-3 रुपए मिलते, सब्र का दामन हाथ से छूट जाता, प्यासी तृष्णा हलवाई की दुकान की ओर खींच ले जाती, 2-3 आने पैसे खाकर ही उठता, उसी दिन घर जाता और 2-2.5 रुपए दे आता।

0: पास हो सका? जी नहीं, मैं इंटरमीडिएट तब पास कर सका जब यूनिवर्सिटी ने हिसाब नाम के मजमून लेने की शर्त उठा ली। अगर जांच की जाए तो मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट पास करने में सबसे ज्यादा समय लेने का रिकॉर्ड मेरे नाम ही होगा। दूसरी घटना जरा तफसील तलब है। नॉवेल तो मैंने 1901 ही से लिखना शुरू किया। मेरा एक उपन्यास 1902 में निकला, असरार माबित, और दूसरा 1904 में हम खुरमा व हम सवाब। मेरी पहली कहानी का नाम था संसार का सबसे अनमोल रत्न। ये 1907 में मशहूर रिसाले जमाना में छपी। उसके बाद मैंने 4-5 कहानियां लिखी। 5 कहानियों का संग्रह सोजे वतन के नाम से 1909 में छपा। उस समय बंग भंग का आंदोलन हो रहा था। कांग्रेस में गरम दल सरगर्म अमल था। इन 5 कहानियों में देश प्रेम की महिमा गाई गई थी। उस वक्त मैं शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर था और हमीरपुर जिले में तैनात था। किताब को छपे 6 महीने हो चुके थे। एक दिन मैं रात को अपने झोपड़े में बैठा हुआ था कि मेरे नाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का परवाना पहुंचा कि मुझसे तुरंत मिलो। जाड़ों के दिन थे। मैंने बैलगाड़ी जुतवाई और रातों रात 30-40 मील तय करके दूसरे दिन साहब से मिला। साहब के सामने सोजे वतन की एक प्रति रखी हुई थी। मेरा माथा ठनका। उस वक्त मैं नवाब राय के नाम से लिखा करता था।
1: ये किताब तुमने लिखी है?
0: जी।
1: तुमने इसमें जो कुछ लिखा है जानते हो उसका उसका क्या मतलब है? क्या कहते हो उसे?
0: देश प्रेम।
1: नो नो नो, बगावत, सरासर बगावत। शुक्र करो कि तुम अंग्रेजी अमलदारी में हो। मुगलों का दौर होता तो आज तुम्हारे दोनों हाथ काट दिए जाते। तुमने अंग्रेजी सरकार की तौहीन की है। सोजे वतन की सारी कॉपी सरकार के हवाले करो और आज के बाद बिना सरकारी परमिशन के कुछ नहीं लिखोगे।
0: सोजे वतन की 1000 कापियां छपी थी और सिर्फ 300 ही बिक पाई थी। बाकी 700 प्रतियां मैंने जमाना के दफ्तर से मंगवा कर साहब की सेवा में अर्पण कर दी, जो तुरंत ही जला दी गई। इस तरह मेरी एक और काविश आग की नजर हुई। अफसोस ये था कि इस वजह से सोजे वतन के प्रकाशक और मशहूर जमाना रिसाले जमाना के एडिटर मुंशी दया नारायण निगम को खासा नुकसान पहुंचा। अफसोस जताने की गरज से उनके दफ्तर कानपुर पहुंचा।
2: अच्छा, तो अब क्या इरादा तुम्हारा?
0: दया नारायण साहब, मैं अपने आप को लिखने से बाज नहीं रख सकता। क्या करूं? लिखता हूं तो हुकूमत के इताब का शिकार होता हूं, न लिखूं तो जमीर का चोटता है।
2: फिर तो जरूर लिखिए, लेकिन किसी और नाम से।
0: किसी और नाम से?
2: हाँ, इसमें इतनी हैरत की क्या बात है? नवाब राय ही कौन सा आपका अपना असली नाम है?
0: जब तजवीज सुझाई है तो नाम भी सुझा दीजिए।
2: प्रेम स्वरूप?
0: थोड़ा जटिल है।
2: प्रेमचंद?
0: थोड़ा कम जटिल है। ये मेरा तीसरा नाम है और आखिरी भी, क्योंकि 1909 से लेकर तादमे तहरीर मेरी कोई भी सृष्टि स्वाहा नहीं हुई है, ना ही मैं बगावत के इल्जाम में धरा गया हूं। मैं अब 56 बरस का हूं और जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर हूं। आप कहेंगे 56 साल की उम्र भी कोई उम्र होती है, पर क्या कहूं, जब बेरोजगारी दूर हुई तो बीमारी ने आ घेरा। 1910 से लेकर अब तक मैं दायमी पेचिश में मुबतला हूं। लाख इलाज कराया पर बेसूद, न कोई जड़ी बूटी काम आई न पुरोहित। हालत यह है कि पेट रोज बरोज बढ़ता और बाकी शरीर घुलता जाता है। सख्त बीमारी के बावजूद लिखना पढ़ना न छोड़ सका, वो इसलिए कि खेतिहर दलित मेरी प्रेरणा है। ये वो वर्ग है जो अपनी दिनचर्या में बीमारी हो या

0: अरे कोई फर्क नहीं आने देते, खुलासा ये कि मैं मृत्यु शैया पर हूँ। मुख्तसरन अपनी जिंदगी के कुछ और पन्ने पलट देता हूँ। मेरी पहली शादी कामयाब ना हो सकी, नतीजा तलाक की सूरत निकला। 1906 में मैंने एक बाल विधवा शिवरानी देवी से दूसरी शादी की। ये महज एक इत्तेफाक है कि उन्हीं दिनों में अपना नॉवेल हम खुरमा हो हम सवाब लिख चुका था, जिसका नायक एक विधवा लड़की से विवाह करता है। मेरी वसीयत है कि मुझे अपने उपन्यासों और कहानियों के नायक नायिकाओं की तरह आदर्शवादी न समझा जाए। 1920 में गांधी जी से प्रेरित होकर मैंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद का दौर संघर्ष मगर संतुष्टि का दौर है। खादी की दुकान खोली न चली, अपना प्रेस खोला न चला, एकाद और नौकरियां की, निराश रहा निराश किया। बंबई फिल्म नगरी का रुख किया, पैसे की चकाचौंध के बावजूद वहां भी कदम न जम सके। हिसाब में सदा का कमजोर जो ठहरा, दिमाग अब भी साथ देता है हाथ पैर नहीं। इन दिनों लेटे लेटे कहानी लिखी है कफन, शायद ये मेरी अंतिम कहानी हो। मजीद क्या कहूँ, मैंने कलम और कागज के साथ वही किया जो किसान हल और बैल के साथ करता है। घर कबूल उफ्तद जहे इज्जु शरफ।
1: कहानी के बड़े भाई साहब प्रेमचंद। अब यहाँ प्रेमचंद की शख्सियत और खिदमात के हवाले से उनके यौम पैदाइश के मौके पर डॉक्टर सईद आलम का तहरीर करदा ये फीचर सुन रहे थे। सदाकार थे डॉक्टर सईद आलम और अली मोहतशिम रजा। पेशकश अली मोहतशिम रजा की थी, मुआविन थे उमर सैफ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमे। आज के फिल्म मौसीकी के इस प्रोग्राम में सामईन हम आपको मोहम्मद रफ़ी के मुख्तलिफ मूड्स के नगमे सुनवा रहे हैं।

आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज़ में आंखें फिल्म का नगमा, जिसे मौसीकी सजाया था रवि ने। प्रोग्राम की अगली पेशकश आप तमाम सामईन के लिए जीवन मृत्यु फिल्म का नगमा, मोहम्मद रफी के साथ इस नगमे में आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने।

0: एक और मुख्तलिफ अंदाज का नगमा समात फरमाइए, प्यासा फिल्म से नगमा निगार हैं साहिन, मौसीकार एस डी बर्मन।
1: Yeah.

झगड़ा या बिजनेस।

एक रंग ये महसूस किया होगा आपने, मोहम्मद रफी जिस नगमे को जिस तरह से गाते थे वो उसे अमर कर देती थी। अब जरा एक रंग देखिए देशभक्ति का।

काले हैं तो क्या हुआ।

चलो दोस्तों, ये रंग देखिए और उसके बाद एक रंग ये भी देखिए कि तमाम कलर जो है मुमकिन जितने थे वो हमने आपकी खिदमत में पेश किए हैं। हकीकत फिल्म का ये रंग देखिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

आशवानी है। अब आप अब्दुल मालिक से खबरें सुनिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फौज पुरअमन एहतजाज करने वालों के खिलाफ वहशियाना कार्रवाई जारी रखे हुए है। 120 से ज्यादा अफराद के मारे जाने की इतला मिली है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में कोयला खान में धमाका होने से कम 32 कानकुन हलाक हो गए, जबकि 10 दूसरे कानकुन कान के अंदर फंसे हुए हैं। हैदराबाद पुलिस ने वजीर अजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ काबिल एतराज मवाद फैलाने के बिना पर मेटा इंडिया के एहलकारों के खिलाफ एक FIR दर्ज की है। सऊदी अरब और 13 दूसरे मुल्कों ने मगरबी एशिया की अहम आबी गुजरगाहों में जहाजरानी को तहफ़ फराहम करने की गरज से एक बहरी दिफाई इत्तेहाद का ऐलान किया है। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और दूसरे मुसल्ला ग्रुपों को पूरी तरह गैर मुसल्ला कर देने के एक समझौते का ऐलान किया है। और दौलत मुश्तरका खेलों में वजन उठाने वाले खिलाड़ी लवप्रीत सिंह ने चांदी का, जबकि सीमा काली रमन्ना ने डिस्कस थ्रो में कांसे का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में पुरम मुजाहरीन पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। एहतजाज के शुरू होने के बाद से अब तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 120 से ज्यादा अफराद के हलाक होने की खबरें हैं। ताज़ा तरीन वाक़यात में रावलकोट, मीरपुर और कोटली में ख़वातीन मुजाहरीन पर मुबैना फायरिंग शामिल है, जिसकी वसी पैमाने पर मजम्मत की जा रही है और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक ताज़ा खदशात पैदा हो गए हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से इस हफ्ते के शुरू में सिविलियन अफराद के खिलाफ वहशियाना कार्रवाई के बाद जिसमें 40 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए हो गए, एहतजाज का सिलसिला अब भी जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक मकामी हुकाम ने अब बुनियादी हकूक का मुतालबा करने वाली खातून मुजाहिरीन को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी तादाद में जमा खवातीन मुजाहिरीन पर फायरिंग की, जो कार्रवाई के खिलाफ नारे लगा रही थी। अक्वामे मुत्तहिदा में इंसानी हकूक के हाई कमिश्नर के तर्जुमान जेरमी लॉरेंस ने एक बयान में कहा कि POJK में सिविल सोसाइटी की तंजीमों को मुजरिमाना करार देना और इज्तिमात पर सख्त पाबंदी आयद करना इजहार राय की आज़ादी, पुरअमन इज्तिमा और तंजीम साजी के हकूक की खिलाफ वर्जी के बारे में संगीन खदशात पैदा करता है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में कोयले के एक कान में धमाका होने से कम 32 कानकुन हलाक हो गए। बताया जाता है कि कार में मीथेन गैस के भर जाने की वजह से ये धमाका हुआ। खबरों के मुताबिक 10 दूसरे कानकुन अब भी वहीं फंसे हुए हैं। सरकार के कानों से मुतालिक इंस्पेक्टर गनी बलोच ने बताया कि बचाव का काम उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक के तमाम फंसे हुए कानकुनों को वहां से बाहर नहीं निकाल लिया जाता। पाकिस्तान की कोयला कानों में इस तरह के जानलेवा वाकयात एक आम बात है, क्योंकि वहां के कानों में बुनियादी हिफाजती इकदाम नहीं किए जाते। हैदराबाद पुलिस ने वजीर अजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ काबिल एतराज मवाद फैलाने की पादाश में मेटा इंडिया के अहलकारों के खिलाफ एक FIR दर्ज की है। सोशल मीडिया चलाने वाले कई दूसरों के खिलाफ भी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इसी तरह के काबिल एतराज मवाद की वजह से ये FIR दर्ज की गई है। BJP के सोशल मीडिया शोबे की तरफ से शिकायत दर्ज कराने के बाद ये केस रजिस्टर किया गया है। साइबर क्राइम के DCP अरविंद बाबू ने तस्दीक की है कि FIR दर्ज कराई गई है और इस मामले की तफ्तीश जारी है। तेलंगाना BJP ने मुतालबा किया है कि इस तरह का मवाद फैलाने के मुबैना जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। हुकूमत ने कहा है कि वो दीगर ममालिक के सामने आला सतही और सरकारी मीटिंगों में पाकिस्तान से होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी का मसला मुसलसल उठा रही है। आज लोकसभा में एक तहरीरी जवाब में उमर खारजा के वजीर मुमलिकत कीर्ति वर्धन सिंह ने बताया कि भारत ने 31 मुल्कों और 6 कसीर फरीकी ग्रुपों के साथ मिलकर दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए मुश्तरक वर्किंग ग्रुप कायम किए हैं, जहां इस मसले पर बाकायदगी से बातचीत होती है। उन्होंने कहा कि कई ममालिक ने पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि अप्रैल 2025 के पहलगाम दहशतगर्दाना हमले पर भारत के रद्दअमल को बैन अलाक्वामी सतह पर खूब सराहा गया, जबकि मुख्तलिफ कसीर फरीकी फोरम्स के मुश्तरक एलानिये में भी इस हमले की मजम्मत की गई। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कौम आज इनकलाबी मुजाहिद आज़ादी शहीद उधम सिंह को उनके 87वें यौम-ए-शहादत

0: पर खराज अकीदत पेश कर रही है। शहीद उधम सिंह का ताल्लुक गदर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से था। 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग कत्लेआम का बदला लेने के लिए उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को पंजाब में बरतानिया के साबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को कत्ल कर दिया था। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने इनकलाबी शहीद उधम सिंह को उनके शहीदी दिन के मौके पर खराज अकीदत पेश किया है और सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि शहीद उधम सिंह की जिंदगी गैर मामूली जुरत और कुर्बानी का मजहर है और आने वाली नस्लों की मुल्क के इख्तदार आला और इज्जत वकार के तहफ्फुज़ के लिए हौसला अफजाई करती रहेगी। सऊदी अरब और 13 दीगर ममालिक ने एक बहरी दिफाई इत्तेहाद कायम किया है जिसका मकसद मगरबी एशिया में अहम आबी गुजरगाहों में जहाजरानी को तहफ़ फराम करना है। इस इत्तेहाद पर रियाज में मुतअद्दिद मुल्कों के फौजी शख्सियात की मुलाकात के बाद ऐलान किया गया। इत्तेहाद की जानिब से जारी एक मुश्तरक बयान में कहा गया है कि कसीर मुल्की बहरी दिफाई इत्तेहाद का मकसद आलमी बहरी सिक्योरिटी को दरपेश बढ़ते चैलेंजों से निपटना है। उसमें कहा गया है कि ये इत्तेहाद बहरी दिफाई इश्तराक के लिए एक तरीक़ाकार फराम करेगा जिसका मकसद बहरी सिक्योरिटी में इजाफा करना, आजादाना जहाजरानी को तहफ़ फराम करना, तिजारत के बैन अलाक़वामी रास्तों को महफूज बनाना और तवानाई की सप्लाई को यकीनी बनाना है। ये इत्तेहाद आबनाए बाब अल मंदब, बहरे अहमर और खलीज अदन में मुश्तरक बहरी मफादात के तहफ़ की कोशिशों का एक हिस्सा है जो बैन अलाक़वामी कानून के जाब्तों से मुताबिकत रखता है। इस इत्तेहाद के बानी मेंबरान में सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, मिस्र, उर्दुन, यमन, नाइजीरिया, सूडान, जिबूती और सोमालिया शामिल हैं। मेंबर मुल्कों ने कहा कि यह इत्तेहाद मुकम्मल तौर पर दिफाई नौइयत का है और यह किसी भी मुमलिकत या इत्तेहाद को निशाना नहीं बनाता। उन्होंने इस बात से इत्तेफाक किया कि सऊदी अरब इत्तेहाद का बानी और कायद मुल्क है और यहीं इसका मुस्तकिल हेडक्वार्टर होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमन से मुतालिक बोर्ड गजा में हमास और दीगर मुसल्ला ग्रुपों को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्ला करने के लिए एक समझौता किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर ट्रंप ने कहा कि यह समझौता गजा के लिए कतई तौर पर एक अहम कदम है जहां फलस्तीन की नई हुकूमत अमन से मुतालिक बोर्ड के साथ मिलकर काम करेगी ताकि फलस्तीनी आवाम की मदद की जा सके। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि इसराइल को अपनी सिक्योरिटी का हक हासिल होगा जिसका कि वो मुस्तैक है और गजा को दहशतगर्दाना हमलों के लिए एक बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हमास के एक सीनियर अफसर ने बताया कि वो गजा में हमास और दीगर ग्रुपों को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्ला करने के लिए तैयार हो गए हैं और इस सिलसिले में जल्द एक सरकारी बयान जारी किया जाएगा जबकि इसराइल को समझौते पर अभी अपनी राय देनी है। इराक ने इन दावों की तरदीद की है कि उसे अमरीका, सऊदी अरब के हालिया हमलों की पहले से जानकारी थी या उसने इन हमलों की मंजूरी दी थी जिनमें ईरान हिमायत याफ्ता पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के कम से कम 20 मेंबरान मारे गए थे। इराकी हुकूमत के तर्जुमान हैदर अल अबूदी ने कहा कि बगदाद ने ना तो इन हमलों का इख्तियार दिया था और ना ही उसे पहले से इन हमलों के बारे में जानकारी थी। ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में कल रात भारतीय वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंह ने मर्दों के 110 किलोग्राम जुमरे में चांदी का जबकि सीमा काली रमन्ना ने खवातीन के डिस्कस थ्रो में कांसे का तमगा हासिल किया। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फौज पुरम एहतजाज करने वालों के खिलाफ वैश्याना कार्रवाई जारी रखे हुए है। 120 से ज्यादा अफराद के मारे जाने की इतला मिली है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में कोयला खान में धमाका होने से कम 32 कानकुन हलाक हो गए जबकि 10 दीगर कान के अंदर फंसे हुए हैं। हैदराबाद पुलिस ने वजीर अजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ काबिल एतराज मवाद फैलाने के बिना पर मेटा इंडिया के खिलाफ एक FIR दर्ज की है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और DD फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामिन शाम के 5 बजे चाहते हैं या हमारी
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 5 बजे हैं और ये वक्त होता है युवा श्रोताओं के दैनिक कार्यक्रम युववाणी का। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम युव

दोस्तों, आज 31 जुलाई का दिन है और हम कैसे भूल जाएं इस दिन को। हमसे एक हीरा छीना गया था आज ही के दिन। नाम था मोहम्मद रफ़ी। आवाज़ की दुनिया में बस एक ही नाम है, हिंदी फिल्म संगीत का सितारा मोहम्मद रफ़ी। 31 जुलाई 1980 को हमसे बिछड़ गया, जिसकी देह हमारी आंखों से ओझल होकर कहीं मिट्टी में समा गई और आवाज एहसास बनकर युवा दिलों की धड़कनों के साथ गा रही है आज भी। जब भी इश्क और माशूक की बात होगी, तब तब मोहम्मद रफ़ी की आवाज मोहब्बत की बारिश बनकर युवा दिलों पर बरसेगी। लगभग 45-46 साल हो गए मोहम्मद रफ़ी साहब को हमसे बिछड़े हुए, पर यूं लगता है कि अभी कल की ही बात है। मोहम्मद रफ़ी साहब को आज के दिन के लिए शत शत नमन।

0: एक मखमली आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की और साथ लता का। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने जितने भी गीत गाए बड़े ही पॉपुलर रहे, और ये आवाज़ें जो हमारे साथ आज भी चल रही हैं, रेडियो के साथ चल रही हैं, युवा दिलों के साथ चल रही हैं, न जाने किस मिट्टी की बनी होंगी। हमने बचपन से सुना है, जब कोई व्यक्ति या युवा दिल कुछ गीत गुनगुनाता था तो यही कहा जाता था कि रफ़ी बनता है या लता का नाम लिया जाता था। लेकिन किसे मालूम था कि मोहम्मद रफ़ी युगों युगों तक जिंदा रहेंगे, चाहे 31 जुलाई 1980 उनकी आखिरी सांस थी, मगर उनकी आवाज़ तो हमारे साथ है ना, आज भी है।
1: छनकी छनकी

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: बोल बोल के थक गया।
3: क्या हुआ?
2: नया किडबैक चाहिए।
3: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
2: करेक्ट।
3: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किडबैक।
4: आरबीआई कहता है
5: पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: मोहम्मद रफ़ी और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों को अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था दो प्रेमी। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन थी। आप सुन रहे हैं युववाणी बलविंदर कल्याणा के साथ।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू

0: इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: दोस्तों, आज की इशू वाणी में सुनते रहेंगे हम मोहम्मद रफी के गाए हुए कुछ गीत और साथ साथ करेंगे कुछ विषयों पर चर्चा। चर्चा करते हैं भारतीय संस्कृति और युवा वर्ग पर। भारतीय संस्कृति और युवा वर्ग का संबंध बहुत गहरा है। भारत की संस्कृति केवल परंपराओं, रीति रिवाजों और धार्मिक मान्यताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता, करुणा, परिवार भावना, गुरु शिष्य परंपरा, प्रकृति के प्रति सम्मान और वसुधैव कुटुंबकम जैसे जीवन मूल्य शामिल हैं। आज का युवा आधुनिक शिक्षा, विज्ञान, तकनीक और वैश्वीकरण से जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया और इंटरनेट ने उसकी सोच और जीवन शैली को भी प्रभावित किया है। ऐसे समय में युवाओं के सामने चुनौती है कि वे आधुनिकता को अपनाते हुए अपनी संस्कृति की जड़ों से भी जुड़े रहें। युवाओं को भारतीय संस्कृति की अच्छी परंपराओं को अपनाना चाहिए, समझना चाहिए। योग, आयुर्वेद, भारतीय भाषाएं, लोक कला, संगीत, साहित्य और पारिवारिक मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। साथ ही उन्हें जाति भेदभाव और रूढ़ियों जैसी कुरीतियों से दूर रहकर संस्कृति के मानवीय और प्रगतिशील पक्ष को आगे बढ़ाना चाहिए। यही हम युवा वर्ग से उम्मीद करते हैं और यही युवा वर्ग नई दिशा दे सकता है दुनिया को और देश को।

0: दो रास्ते, अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन थी।
1: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

हसीना मान जाएगी। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत, अख्तर रोमानी का लिखा हुआ, कल्याण जी आनंद जी की धुन थी, आवाजें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की थी। दोस्तों कार्यक्रम युववाणी में लीजिए बात करते हैं डिजिटल युग और शिक्षा व्यवस्था की। आज का युग डिजिटल युग है, इंटरनेट, स्मार्टफोन, कंप्यूटर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी तकनीकों ने हमारे जीवन के लगभग हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। शिक्षा व्यवस्था भी इससे अछूती नहीं रही। डिजिटल तकनीक ने शिक्षा के पारंपरिक स्वरूप को बदलकर उसे अधिक सरल, सुविधाजनक, व्यापक और संवादात्मक बना दिया है। अब ज्ञान केवल कक्षा की चारदीवारी तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यार्थी दुनिया के किसी भी कोने से अपनी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सकता है। डिजिटल शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे ज्ञान और सूचना तक पहुंच बहुत ही आसान हो गई है। विद्यार्थी ऑनलाइन कक्षाओं, ई पुस्तकों, शैक्षिक वीडियो और डिजिटल पुस्तकालयों के माध्यम से विभिन्न विषयों का अध्ययन कर सकते हैं। किसी कठिन विषय को समझने के लिए वे वीडियो और एनिमेशन की सहायता लेकर उसे हल कर सकते हैं। इससे सीखने की प्रक्रिया अधिक रोचक और प्रभावी बनती है। ऑनलाइन शिक्षा से

दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही अच्छा अनुभव है। शिक्षकों और गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री तक पहुंचने का अवसर भी बढ़िया बना रहता है डिजिटल शिक्षा से।

जीवन मृत्यु, अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत लता की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। दोस्तों बात हम कर रहे थे डिजिटल तकनीक की, शिक्षा की। डिजिटल तकनीक ने शिक्षकों की भूमिका को भी नया स्वरूप दिया है। शिक्षक अब केवल पाठ्यपुस्तक तक सीमित नहीं है, बल्कि इंटरनेट के माध्यम से नवीनतम जानकारी और विभिन्न शिक्षण संस्थाओं का उपयोग कर सकते हैं। डिजिटल बोर्ड, ऑनलाइन परीक्षाएं और वर्चुअल प्रयोगशालाएं शिक्षण को अधिक व्यवहारिक और आकर्षक बना रही हैं। विद्यार्थियों की प्रगति का डिजिटल रिकॉर्ड रखना भी अब बहुत आसान हो गया है। हालांकि डिजिटल शिक्षा के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। भारत में आज भी सभी विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन, कंप्यूटर या तेज़ इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसे डिजिटल विभाजन कहा जाता है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को इसका अधिक सामना करना पड़ता है। इसके अलावा मोबाइल

मोबाइल और इंटरनेट का अत्यधिक उपयोग विद्यार्थियों में ध्यान भटकने, समय की बर्बादी और सोशल मीडिया की लत जैसी समस्याएं भी पैदा कर रहा है। केवल ऑनलाइन शिक्षा पर निर्भर रहने से शिक्षक और विद्यार्थी के बीच प्रत्यक्ष मानवीय संवाद की भी कमी हो जाती है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि डिजिटल तकनीक को पारंपरिक शिक्षा का विकल्प नहीं बल्कि उसका सहयोगी माना जाए। विद्यार्थियों को डिजिटल साक्षरता के साथ साथ अनुशासन, नैतिकता और जिम्मेदारी का भी ज्ञान दिया जाना चाहिए। शिक्षकों को भी समय समय पर डिजिटल शिक्षण के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

दिन है और आज ही के दिन मोहम्मद रफ़ी हमसे विदा हो गए थे, यानी कि इस फानी दुनिया को छोड़कर अपनी रूहानी दुनिया में चले गए थे और उनकी आवाज़ हम तक आज भी पहुंच रही है। चर्चा करते हैं, पढ़ेगा भारत बढ़ेगा भारत, एक प्रेरणादायक संदेश है ये, जिसका मूल भाव है कि शिक्षा ही देश की प्रगति और विकास की सबसे मजबूत नींव है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के संदर्भ में पढ़े भारत बढ़े भारत प्राथमिक पठन लेखन और गणितीय समझ को मजबूत करने से जुड़ी पहल के रूप में प्रयुक्त हुआ है। शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान ही नहीं बल्कि व्यक्ति समाज और राष्ट्र के विकास का आधार है। जब देश का हर बच्चा विद्यालय जाएगा, ज्ञान प्राप्त करेगा और अपने सपनों को साकार करने का अवसर पाएगा, तभी भारत सशक्त समृद्ध और विकसित बनेगा। इसलिए आइए हम सब मिलकर शिक्षा को हर बच्चे तक पहुंचाने का संकल्प लें, क्योंकि पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत।

कुर्बानी अभी आप सुन रहे हैं। इस फिल्म का गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, हिंदी भर के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी की धुन है। दोस्तों आप सुन रहे हैं युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। बात अगर स्वस्थ शरीर की करें तो इसके साथ जुड़ता है स्वस्थ मस्तिष्क। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तो हमारा मन भी प्रसन्न रहता है, शांत और सक्रिय रहता है हमारा मन जब शरीर स्वस्थ होता है। स्वस्थ शरीर के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और स्वच्छ जीवन शैली बड़ी ही आवश्यक है। वहीं स्वस्थ मस्तिष्क के लिए सकारात्मक सोच, तनाव और पर्याप्त विश्राम की बड़ी ही आवश्यकता होती है। रचनात्मक गतिविधियों में भी भूमिका अगर निभाते रहें तो मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। आज के डिजिटल युग में लंबे समय तक मोबाइल और कंप्यूटर पर जो हम काम करते हैं उससे अनियमित दिनचर्या हो जाती है और जिसके कारण मस्तिष्क में तनाव बढ़ता है और हमारे स्वास्थ्य को भी ये तनाव प्रभावित करता है। इसलिए हमें अपनी दिनचर्या में योग, ध्यान, खेल और प्रकृति के साथ समय बिताने को शामिल करना चाहिए। दोस्तों शरीर स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ और सक्रिय मस्तिष्क का विकास होता है, इसलिए हमें अपने शरीर और मन दोनों की समान रूप से देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य ही सुखी, सफल और संतुलित जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होता है।

राजकुमार फिल्म का गीत अभी आपने सुना, सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। दोस्तों, बात अगर आज के दिन की करें, आज के दिन के इतिहास की करें, तो आज ही के दिन 31 जुलाई 1980 को हिंदी फिल्म जगत के महान गायक मोहम्मद रफ़ी हमसे अलविदा हो गए थे। 31 जुलाई 1880 को महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था। 31 जुलाई 1940 को महान क्रांतिकारी शहीद ऊधम सिंह को लंदन की जेल में फांसी पर चढ़ाया गया था। और 31 जुलाई 1995 को भारत के तकनीकी इतिहास में देश की पहली मोबाइल फोन कॉल तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु द्वारा कोलकाता से केंद्रीय संचार मंत्री सुखराम को की गई थी। इसके साथ ही भारत में मोबाइल संचार का युग की शुरुआत हुई थी। और दोस्तों, आज ही के दिन यानी कि 31 जुलाई के दिन 1658 को औरंगजेब ने स्वयं को मुगल सम्राट घोषित किया था। आज ही के दिन 1865 में ऑस्ट्रेलिया में विश्व की पहली छोटी रेल लाइन की शुरुआत हुई थी। और 31 जुलाई 1912 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम का निधन हुआ था। और 31 जुलाई 1933 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम हमेशा के लिए छोड़ा। और

31 जुलाई 1947 में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री मुमताज का जन्म भी हुआ है, और 31 जुलाई 1948 में कोलकाता में भारत की पहली राज्य परिवहन सेवा शुरू हुई, और इसी दिन 1992 में काठमांडू में विमान दुर्घटना में 113 लोगों की मौत हो गई थी। इसी दिन 1998 को सारक का 10वां शिखर सम्मेलन कोलंबो में संपन्न हुआ था, और दोस्तों 31 जुलाई 2006 में फिदेल कास्त्रो ने सत्ता अपने भाई राउल कास्त्रो को सौंपी, और 31 जुलाई के दिन ही 2007 में भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर सुधीर पारिक को पॉल हैरिस अवार्ड दिया गया था।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 6 बजे हैं। आइए सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। आपसे थोड़ी देर बाद यानी 6:05 पर आप सुनेंगे सराय की, 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, और 6:40 पर आप सुनते हैं जिले की चिट्ठी, और 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। ये समाचार हम आपको सुनवाएंगे हमारे जयपुर के अंदर से। श्रोताओं सुनना न भूलें संध्या 7 बजे।

चौपाल आज की प्रस्तुति रहेगी रमेश चावरिया की। कार्यक्रम रहेगा गीतारो गजरो। इसके साथ साथ आप सुनेंगे बाजार भाव और मौसम की जानकारी। समय रहेगा संध्या 7 बजे का। 7:45 पर आप सुनते हैं फिल्म संगीत और रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा हमारे दिल्ली केंद्र से। 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से, जिसमें आप फिल्म और फिल्म की जानकारी के साथ उसके गीत सुनवाते हैं। 8:30 पर आप सुनेंगे स्पोर्ट स्कैन यानी कि खेल समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, और 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। 9 बजे आप सुनेंगे News@9 यानी कि अंग्रेजी में समाचार। ये सभी समाचार हम आपको सुनवाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं कुछ गजलें, और श्रोतो सुनना न भूलें। रात्रि 9:30 पर पंजाबी कार्यक्रम हेलो मिट्टी दी खुशबू। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति रहेगी दुर्गाराम की और संयोजक रहेंगे नवीन सिसोदिया। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत, और रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, और 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। आज की सभा का समापन होगा रात्रि 11:10 पर। एक बार फिर से आपको याद दिला दें, रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे हेलो मिट्टी की खुशबू दुर्गाराम के साथ, और संध्या 7 बजे चौपाल में गीतारो गजरो कार्यक्रम आप सुनेंगे रमेश चावरिया के साथ संध्या 7 बजे।

0: जी हाँ दोस्तों, ये है आकाशवाणी का सूरतगढ़ चैनल, मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर। लीजिए सुनते हैं सराय की।
1: ऑल इंडिया रेडियो दा सराइकी प्रोग्राम है। मैं हरजीत कौर तुहाडे किते सराइकी प्रोग्राम घेन के हाजर हां। ते साडा अज दा सराइकी प्रोग्राम बहु खास है। ए श्री गुरु नानक देव जी दे जीवन दर्शन सिख्यावां अते गुरबाणी गावण ते आधारित है। श्री गुरु नानक देव जी दा जन्म 1469 ईस्वी विच 15 अप्रैल दे दिन खत्री घराने विच राय भोई दी तलवंडी नाम दे घरां विच थिया हई। अजकल इस घरां दा नाम ननकाणा साहिब है जो पाकिस्तान विच है। गुरु नानक देव जी दे जन्म वेले भविखवाणी कीती गई हई कि इस को हिंदू ते तुर्क दुवे पूजनगे। ए सारा इंसाना को भगवान दी रचना मन के बराबर समझ सी। जिस वेले गुरु नानक देव जी दा जन्म थिया चफेरू चिट्टा चानन थिया हई।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी। ऊर्जा भंडारण के लिए पीएम सूर्य सरोवर योजना शुरू होगी। राष्ट्रमंडल देशों का न्यायिक महाकुंभ आज से जयपुर में। शांति, मध्यस्थता और कानून के शासन को मजबूत करने सहित विभिन्न विषयों पर मंथन होगा। प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर 15 अगस्त को अधिसूचना जारी होने की उम्मीद। और प्रदेश भर में कल से खरीफ डिजिटल क्रॉप सर्वे शुरू होगा।

0: मंजूरी दे दी है। साथ ही पीएम किसान योजना और खेलो इंडिया को अगले 5 सालों के लिए बढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में प्रेस वार्ता के जरिए इन निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जल निकायों पर फ्लोटिंग सोलर पैनल और ऊर्जा भंडारण प्रणाली शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना लाई गई है। इसके लिए 5,070 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 5,000 मेगावाट की 33 सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं का विकास किया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि इसके लिए अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण की जरूरत नहीं होगी। इसमें वर्तमान जलाशयों, नहरों और औद्योगिक तालाबों का उपयोग होगा। योजना की अवधि 5 वर्ष होगी।
1: इस स्कीम में टोटल 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी फोटोवोल्टिक कैपेसिटी भारत में क्रिएट की जाएगी और 5 साल की स्कीम में 1 करोड़ पर मेगावाट का इसका सपोर्ट दिया जाएगा। स्कीम में 2 घंटे की एनर्जी स्टोरेज भी स्कीम में रखी गई है, जिससे कि जो पीक डिमांड है उसको प्रॉपरली मॉड्यूलेट किया जा सके। प्रोजेक्ट्स विल बी सिलेक्टेड थ्रू टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटेटिव बिडिंग। सबसे अच्छी बात है कि इसमें लैंड एक्विजिशन की जरूरत नहीं है और एग्जिस्टिंग रिजर्वॉयर्स, कैनाल्स, इंडस्ट्रियल पॉन्ड्स, इन सबका उपयोग किया जा सकता है। और एक एडिशनल बेनिफिट ये मिलेगा कि जो पानी का इवेपोरेशन हो जाता है वो बचेगा।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। शोर शराबे के बीच ही लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में देरी को रोकना और फर्जी दस्तावेजों पर रोक लगाना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक सदन में पेश किया। विपक्ष के हंगामे के बीच बिना किसी चर्चा के ये विधेयक पारित हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस विधेयक पर चर्चा में भाग नहीं लेने के लिए विपक्ष की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जयपुर राष्ट्रमंडल शांति और मध्यस्थता सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। आज से 2 अगस्त तक हो रहे इस सम्मेलन में कॉमनवेल्थ देशों के न्यायाधीश, विधि विशेषज्ञ, नीति निर्माता और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत सम्मेलन का उद्घाटन कर रहे हैं। समारोह में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद है। सम्मेलन में 8 तकनीकी सत्र रखे गए हैं। इनमें मध्यस्थता, न्याय तक प्रभावी और समावेशी पहुंच और कानून के शासन को मजबूत करने सहित अन्य मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा शांति मध्यस्थता है। इसके जरिए पक्षकारों की आपसी सहमति से समाधान पर जोर दिया जाएगा और समाज में शांति और सौहार्द की आवाज को बुलंद किया जाएगा। जयपुर में आज से इंडिया ट्रेवल मार्ट की शुरुआत हुई। पर्यटन उद्योग में नए अवसरों, निवेश और साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए ये आयोजन रखा गया है। 2 अगस्त तक चलने वाले इस आयोजन पर और ब्यौरा समाचार कक्ष से।
2: ITM देश के प्रमुख यात्रा और पर्यटक मेलों में से एक है। ये घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देता है। इसमें 10 देशों के 2000 से ज्यादा प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। देश भर से पर्यटन बोर्ड, होटल और रिसोर्ट्स, एयरलाइंस और क्रूज कंपनियां तथा टूर ऑपरेटर भी भाग ले रहे हैं। ITM में प्रतिभागियों को नेटवर्किंग के मौके भी मिलेंगे। इसमें मेडिकल टूरिज्म और थीम आधारित पर्यटन को लेकर भी चर्चा की जाएगी। इस दौरान प्रदर्शकों और खरीदारों के बीच B2B बैठकें भी होगी। रामनाथ मीना, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया है कि सरकार जल्दी ही आरक्षित वार्डों की घोषणा कर देगी। इसके बाद निकाय और पंचायत चुनाव

समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना पीएमएसएसवाई को

0: की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में उन्होंने बताया कि इन चुनावों की अधिसूचना 15 अगस्त को जारी होगी।
1: देखिए, ये पहली बार है जब सारे नगरीय निकायों के और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एक साथ हो रहे हैं। हालांकि होंगे क्रमिक रूप से, पहले नगरीय निकायों का चुनाव होगा और उसके बाद फिर हम पंचायती राज संस्थाओं का कराएंगे। जो नगरीय निकाय हैं उनके चुनाव दो चरण में कराएंगे और पंचायती राज के चुनाव चार चरण में कराएंगे। और हम लोग जो है इसके लिए दिन रात लगे हुए हैं कि ये चुनाव जो है बिल्कुल त्रुटिहीन तरीके से, नियमानुसार तरीके से और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो।
0: नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा है कि प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव वन स्टेट वन इलेक्शन के आधार पर कराए जाएंगे। श्री खर्रा आज झुंझुनू के कमालसर गांव पहुंचे। एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से चुनाव संबंधी सभी तैयारियां इस साल मार्च में ही पूरी कर ली गई थी। अब आगे की प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग के जिम्मे है।
2: देखिए, नगर निकाय के चुनाव और पंचायत राज के चुनाव वन स्टेट वन इलेक्शन के आधार पर राजस्थान सरकार और स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जितनी तैयारियां की जानी थी वो हम सब तैयारियां मार्च 2026 में पूरी कर। अब राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग है, दो को अपनी तैयारी करनी है। राज्य निर्वाचन आयोग या राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग जब भी सरकार से किसी प्रकार की सहयोग की आवश्यकता होगी और वो अगर अनुरोध करेंगे तो हम तत्काल उन्हें जो सहायता जो हमसे अपेक्षा रखते हैं वो हम तुरंत उपलब्ध।
0: प्रदेश भर में कल से खरीफ डिजिटल क्रॉप सर्वे शुरू किया जा रहा है। राजस्व मंडल के रजिस्ट्रार महावीर प्रसाद ने बताया कि ये सर्वे राज्य के सभी जिलों की तहसीलों और राजस्व गांवों में ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। श्री प्रसाद ने आज वीसी के जरिए खरीफ फसल की गिरदावरी के बारे में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। वीसी में राज्य के सभी जिलों के प्रभारी अधिकारी, तहसीलदार, रिसोर्स पर्सन और मास्टर ट्रेनर जुड़े। डिजिटल क्रॉप सर्वे के तहत प्रदेश की 4,62,00,000 से ज्यादा खसरों की नियमों के अनुसार गिरदावरी की जाएगी। 2,86,00,000 कृषि योग्य खसरों को सर्वे के लिए चिन्हित किया गया है। बाकी खसरों में सरकारी भूमि, गैर कृषि भूमि की ई गिरदावरी की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज खसरा गिरदावरी मोबाइल ऐप से ऑनलाइन गिरदावरी की सुविधा दी गई है। गौरतलब है कि सर्वे से मिलने वाले आंकड़े फसल उत्पादन, आकलन, नीति निर्माण, पीएम फसल योजना और प्राकृतिक आपदा राहत सहित अन्य योजनाओं के लिए आधार प्रदान करेंगे। महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से कल से देश भर में स्तनपान सप्ताह मनाया जाएगा। स्वस्थ भारत के लिए परिवारों, समुदायों और स्वास्थ्य प्रदाताओं के बीच स्तनपान को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इस सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। नवजात शिशु के स्वस्थ विकास के लिए स्तनपान सबसे प्रभावी उपायों में से एक है। इस मौके पर मंत्रालय ने स्वास्थ्य पेशेवरों, सामुदायिक कार्यकर्ताओं और नागरिकों से स्तनपान के लिए अनुकूल वातावरण बनाने का आह्वान किया है, जिससे हर बच्चे को जीवन में सर्वोत्तम शुरुआत मिल सके। राज्य पीसीपीएनडीटी टीम ने जोधपुर में अवैध भ्रूण लिंग परीक्षण के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मिशन निदेशक डॉक्टर जोगाराम ने बताया कि आरोपी निजी नर्सिंग होम पर पिछले काफी समय से ये काम कर रहा था। उसके कब्जे से पोर्टेबल मशीन और परीक्षण के एवज में ली गई 50,000 रुपए की राशि भी बरामद कर ली गई। उन्होंने बताया कि पीसीपीएनडीटी परियोजना निदेशक सोनल मीणा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजलि जोरवाल की अगुवाई में टीम गठित कर ये कार्रवाई की गई। प्रदेश में साइबर ठगी और ऑनलाइन धोखाधड़ी को लेकर लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। पुलिस की ओर से लोगों से किसी भी संदिग्ध लिंक या अनजान व्यक्ति के कॉल से सतर्क रहने की अपील की गई है। इसी कड़ी में सवाईमाधोपुर पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मित्री ने लोगों से किसी भी तरह की साइबर ठगी होने पर तुरंत हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराने या नजदीकी पुलिस थाने को संपर्क करने को कहा है।
3: तो मेरा आपसे निवेदन है, कभी भी छोटे से कमीशन के चक्कर में आप स्वयं अपराध के जगत से ना जुड़े। संचार साथी पोर्टल ये भारत सरकार द्वारा खोला गया है। आपके परिवार में कोई भी समझदार व्यक्ति है तो आज आप जाकर दो काम करें। एक तो बैंक में अवश्य चेक करें कि कहीं कोई इस तरीके के अकाउंट में आपका अमाउंट तो नहीं आ रहा जो आपकी नॉलेज के बाहर है। और नंबर दो, आपके नाम से कितनी सिम इशू हो गई है, तो ये आपको संचार साथी पोर्टल पे आप ऑनलाइन जाके कर सकते हैं, तथा आपके परिवार में जो भी पढ़े लिखे बच्चे हैं

0: उसमें आपको मदद कर सकते हैं।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी। ऊर्जा भंडारण के लिए पीएम सूर्य सरोवर योजना शुरू होगी। राष्ट्रमंडल देशों का न्यायिक महाकुंभ आज से जयपुर में। शांति, मध्यस्थता और कानून के शासन को मजबूत करने सहित विभिन्न विषयों पर मंथन होगा। प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर 15 अगस्त को अधिसूचना जारी होने की उम्मीद। और प्रदेश भर में कल से खरीफ डिजिटल क्रॉप सर्वे शुरू होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से भीलवाड़ा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख सोमदत्त त्रिपाठी ने तैयार किया है। पिछले महीने जिले में रोजगार, जनकल्याण, कृषि, स्वास्थ्य, प्रशासन और धार्मिक गतिविधियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहे। अच्छी मानसूनी बारिश से किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौटी है। सरकारी योजनाओं की समीक्षा के साथ विकास कार्यों को गति देने पर भी जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों बालोतरा जिले के पास रिफाइनरी का लोकार्पण कर प्रदेश में सरकारी नौकरी में नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इसके तहत भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर भी कार्यक्रम हुआ, जहां नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण भी देखा और सुना गया। समारोह में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। नियुक्ति पत्र मिलने पर अभ्यर्थियों ने खुशी जताई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भीलवाड़ा सहित विभिन्न जिलों की समीक्षा की। बैठक में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाने, विकास कार्यों में तेजी बनाए रखने तथा कानून व्यवस्था को मजबूत रखने के निर्देश दिए। नगरीय विकास और आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने भीलवाड़ा में शहरी जन कल्याण सेवा शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने नगर निगम और नगर विकास न्यास में लगाए गए शिविरों का अवलोकन कर लाभार्थियों को आवासीय पट्टे वितरित किए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शिविरों में आने वाले लोगों के काम तय समय में पूरे किए जाएं, ताकि आमजन को राहत मिले। जिले में मॉनसून की अच्छी बारिश का असर अब खेतों और जलाशयों में दिखाई देने लगा है। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में हुई बारिश से नदी, तालाब और बांधों में पानी की आवक हुई है। आसींद क्षेत्र में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है। बारिश से खरीफ फसलों को भी संजीवनी मिली है। मक्का, बाजरा, ज्वार, ग्वार और तिल की फसलें अच्छी स्थिति में हैं। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यदि मौसम इसी तरह अनुकूल रहा तो इस बार उत्पादन बेहतर रहने की संभावना है। श्रावण माह के शुरू होने पर जिले के प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ है। तिलस्वा और हरिणी महादेव सहित विभिन्न शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, जलाभिषेक और सहस्त्र धारा की जा रही है। सुबह से देर शाम तक श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। मंदिर में पूरे सावन माह के दौरान धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। महात्मा गांधी चिकित्सालय में प्रसूताओं की मृत्यु के मामले के बाद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने चिकित्सकीय व्यवस्थाओं की समीक्षा कर आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। मामले की जांच जारी है। वही जिला प्रशासन ने दूर दराज से उपचार के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं की सुविधा के लिए विशेष देखभाल वार्ड की व्यवस्था भी शुरू की है। अस्पताल में चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिले में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिला स्तरीय समारोह पुलिस लाइन मैदान में होगा। विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का नियमित अभ्यास कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने समारोह की तैयारियों की समीक्षा कर सभी विभागों को आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच नगर निकाय चुनाव की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर ने नगर निगम और नगर पालिकाओं के लिए रिटर्निंग अधिकारियों तथा सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े अन्य प्रशासनिक काम भी शुरू कर दिए गए हैं। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण के तहत भारत सरकार के केंद्रीय दल ने भीलवाड़ा का दौरा

0: किया और समीक्षा बैठक की। बैठक में जिले में चल रहे विकास कार्यों और रोजगार योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। जिला प्रशासन ने बताया कि जिले के सभी 14 विकास खंडों में 831 विकास कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं। रक्षाबंधन के पर्व को देखते हुए डाक विभाग ने विशेष व्यवस्था की है। विदेशों में रहने वाले भाइयों तक समय पर राखियां पहुंचाने के लिए विशेष लिफाफों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। विभाग के अनुसार बड़ी संख्या में बहनों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है और विदेशों के लिए राखियां बुक कराई हैं। इसी के साथ भीलवाड़ा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूं, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रे सदारत माए आज भी कैबिनेट री मीटिंग माए कई खास फैसला करी चिया। ऊर्जा भंडारण सारू पीएम सूर्य सरोवर योजना चलाई चावेला। राष्ट्रमंडल देशारो न्यायिक महाकुंभ जयपुर माए शांति मध्यस्थता और कानून रा राज ने मजबूत करण समेत न्यारा न्यारा मुद्दा माथे विचार करियो चावेला। प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव सारू 15 अगस्त ने अधिसूचना जारी करी चावेला और राज्य में काल खरीफ डिजिटल क्रॉप सर्वे शुरू करियो चावेला। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना ने मंजूरी दीनी है। इस आगे पीएम किसान योजना और खेलो इंडिया री मियाद 5 साल सारू बधावन रो फैसलो करी चियो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री सदारत माए आज भी कैबिनेट री मीटिंग माए कई खास फैसला करी चिया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली माए खबर नवीसा ने मीटिंग माए करी चिया फैसला री जानकारी दीनी। वे बतायो कि जल निकाय माथे फ्लोटिंग सोलर पैनल और ऊर्जा भंडारण प्रणाली शुरू करण सारू प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना लाईची है। मंत्री बतायो कि सारू 5,070 करोड़ रुपया रो बजट रखी चियो है। वे कहो कि इन योजना रा तहत 5,000 मेगावाट री 3,300 फोटोवोल्टाइक परियोजना विकसित करी चावेला। श्री वैष्णव कहो कहीं सारू जनतारी और जमी लेवन री जरूरत नी वेला। 5 साल री ई योजना सारू मौजूदा जलाशय नहरा और तलाव काम लिया जावेला।
2: इस स्कीम में टोटल 5000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी फोटोवोल्टेक कैपेसिटी भारत में क्रिएट की जाएगी और 5 साल की स्कीम में 1 करोड़ पर मेगावाट का इसका सपोर्ट दिया जाएगा। स्कीम में 2 घंटे की एनर्जी स्टोरेज भी स्कीम में रखी गई है जिससे कि जो पीक डिमांड है उसको प्रॉपरली मॉड्यूलेट किया जा सके। प्रोजेक्ट्स विल बी सिलेक्टेड थ्रू टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटेटिव बिडिंग। सबसे अच्छी बात है कि इसमें लैंड एक्विजिशन की जरूरत नहीं है और एग्जिस्टिंग रिजर्वॉयर्स कैनाल्स इंडस्ट्रियल पॉन्ड्स इन सब का उपयोग किया जा सकता है और एक एडिशनल बेनिफिट ये मिलेगा कि जो पानी का इवेपोरेशन हो जाता है वो बचेगा।
1: संसद रा दोन्यू सदना री कार्रवाई नीट पेपर लीक मुद्दा माथे विद्यार्थियों रा विरोध प्रदर्शन रे दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत न्यारा न्यारा मुद्दा माथे विपक्ष रो हंगामो आज ही चालतो रह्यो। लोकसभा में शोर शराबा बीचे जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल 2026 पास करती होचियो। इन बिल रो मकसद जन्म और मौत रा पंजीकरण माए मोड़ो वेवणु रोकण सागे फर्जी कागजात माथे रोक लगावणु है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय सदन में ओ बिल पेश कीनो। विपक्षरा हंगामा बीच बिना चर्चा ओ बिल पास करती होचियो। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ई बिल माथे चर्चा में शामिल नी भेवन पर विपक्षरी आलोचना कीनी। संसद रा दोन्यू सदनारी कार्रवाई सोमवार ताई टालती रिची है। जयपुर में आज राष्ट्रमंडल शांति और मध्यस्थता सम्मेलन शुरू हो रियो है। 2 अगस्त ताई चालन वाला इस सम्मेलन में कॉमनवेल्थ देशों रा जज कानून रा जानकार नीतियां बनावण वाला और अंतर्राष्ट्रीय संस्थावां रा नुमाइंदा शामिल हो रिया है। सुप्रीम कोर्ट रा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत इस सम्मेलन रो उद्घाटन कर रिया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मौजूद है।

0: सम्मेलन रा आठ तकनीकी सत्रा माए मध्यस्थता न्याय ताई सगला री असरदार पहुँच और कानून रा राज न मजबूत बनावन समेत न्यारा न्यारा मुद्दा माथे विचार करियो चारियो है। सम्मेलन री सबो खास बात शांति मध्यस्थता है जिन रे जरिए पक्षकारा रा आपसी राजीनामाओं समाधान माथे जोर दियो जावेला। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जनजातीय हलका माए ऊंचा दर्जारी भणाई ने बधावो देवन सारू बत्तियों बत्ती कोशिशा करण माथे जोर दीनो है। वे आज जयपुर रा लोकभवन बांसवाड़ा रा गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय माए बनाई जिया नुआ अकादमिक भवन रो उद्घाटन करण और स्वामी विवेकानंद री मूर्त रो अनावरण करण रे मौके बोल रहा हा। राज्यपाल कहो कि आदिवासी जल जंगल और जमीरा साचा पहरेदार वह है और वाणी पानी और कुदरत ने बचावन जुड़िया रीति रिवाज माथे शोध और अनुसंधान करो जाऊ चाहिए। राज्यपाल प्रदेश माए नशारी लत जड़ों खत्म करण सारू स्थानीय लोगों चर्चा कर और लगातार कोशिशा करण बाबती कहो। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी कार्यक्रम माए ऑनलाइन तरीकाओं शामिल भया। जयपुर माए आज इंडिया ट्रेवल मार्ट शुरू भयो। सैर सपाटाओं जुड़िया कारोबार माए नुआ मौका निवेश और भागीदारी ने बधावो देवन सारू ओ आयोजन राख्यो जा रियो है। 2 अगस्त ताई चालन वाला इंडिया ट्रेवल मार्ट रे बारा माए और ब्यूरो समाचार कक्षों।
1: ITM देश के प्रमुख यात्रा और पर्यटक मेलों में से एक है। ये घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देता है। इसमें 10 देशों के 2000 से ज्यादा प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। देश भर से पर्यटन बोर्ड, होटल और रिसोर्ट्स, एयरलाइंस और क्रूज कंपनियां तथा टूर ऑपरेटर भी भाग ले रहे हैं। ITM में प्रतिभागियों को नेटवर्किंग के मौके भी मिलेंगे। इसमें मेडिकल टूरिज्म और थीम आधारित पर्यटन को लेकर भी चर्चा की जाएगी। इस दौरान प्रदर्शकों और खरीदारों के बीच B2B बैठकें भी होगी। रामनाथ मीना, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहे हो। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह कहो है कि सरकार बेगोई आरक्षित वार्डा रो ऐलान करेला जिन पाछे निकाय और पंचायत चुनाव री तैयारियां ने अंतिम रूप दियो जावेला। आकाशवाणी सागे खास बातचीत रे दौरान वे बतायो कि चुनाव री अधिसूचना 15 अगस्त ने जारी करी जावेला।
2: देखिए, ये पहली बार है जब सारे नगरीय निकायों के और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एक साथ हो रहे हैं। हालांकि होंगे क्रमिक रूप से, पहले नगरीय निकायों का चुनाव होगा और उसके बाद फिर हम पंचायती राज संस्थाओं का कराएंगे। जो नगरीय निकाय हैं उनके चुनाव 2 चरण में कराएंगे और पंचायती राज के चुनाव 4 चरण में कराएंगे। और हम लोग जो है इसके लिए दिन रात लगे हुए हैं कि ये चुनाव जो है बिल्कुल त्रुटिहीन तरीके से, नियमानुसार तरीके से और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो।
0: इस बीच नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा कहो है कि प्रदेश माए निकाय और पंचायत चुनाव 1 state 1 election रा आधार कराया जावेला। श्री खर्रा आज झुंझुनू जिला रा कमालसर गांव माए राखी जाए गैर सरकारी कार्यक्रम माए शामिल हुआ पाछे खबर नवीसा सागे बातचीत कर रहा हा। वे कहो कि महकमारी ओरों चुनाव जुड़ी सगली तैयारियां इस साल मार्च महीना माए पूरी कर ली रिजी ही।
3: देखिए, नगर निकाय के चुनाव और पंचायत राज के चुनाव 1 state 1 election के आधार पर राजस्थान सरकार और स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जितनी तैयारियां की जानी थी वो हम सब तैयारियां मार्च 2026 में पूरी कर। अब राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग दो को अपनी तैयारी करनी है। राज्य निर्वाचन आयोग या राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग जब भी सरकार से किसी प्रकार की सहयोग की आवश्यकता होगी और वो अगर अनुरोध करेंगे तो हम तत्काल उन्हें जो सहायता जो हमसे अपेक्षा रखते हैं वो हम तुरंत उपलब्ध।
0: प्रदेश माए काल खरीफ क्रॉप डिजिटल सर्वे शुरू करियो चावेला। राजस्व मंडल रा रजिस्ट्रार महावीर प्रसाद आ जानकारी दीनी। वे बतायो के ओ सर्वे राज्य रा सगला जिला नी तहसीला और राजस्व गांवा माए ऑनलाइन तरीकाओं करायो चावेला। डिजिटल क्रॉप सर्वे रा तहत प्रदेश रा 4,62,00,000 बत्ता खसरा रे नियमा रे मुजब गिरदावरी करी जावेला। सर्वे सारू खेती लायक 2,86,00,000 खसरा री पिछाण करी ची है। बाकी खसरा माए सरकारी जमी और गैर खेती री जमी री गिरदावरी करी जावेला।

0: राजस्व मंडल रा रजिस्ट्रार बतायो कि राज खसरा गिरदावरी मोबाइल ऐपों ऑनलाइन गिरदावरी रो सुबितो दियो जावेला। ध्यानजोग है कि सर्वे में मिलन वाला जानकारी साखारी उपज रो आकलन करण सागे नीति बनावण पीएम फसल योजना और प्राकृतिक आपदा राहत समेत न्यारी न्यारी योजनावां सारू बुनियाद रो काम करेला। कालू आखा देश में स्तनपान सप्ताह मनायो जावेला। स्वस्थ भारत सारू परिवारां समुदायां और स्वास्थ्य सेवा देवन वाला बीच स्तनपान नु जुड़ी जाग जगावण रा मकसद ओ सप्ताह मनायो जावेला। नुआ जन्मिया बाळक रा विकास सारू स्तनपान सबू असरदार जतन है। ए मौके महिला और बाल विकास मंत्रालय रे ओरों स्वास्थ्य पेशेवरां सामुदायिक कार्यकर्ताओं और जनताओं स्तनपान सारू जरूरी वातावरण बनावण री अरज करी ची है। राज्य पीसीपीएनडीटी टीम जोधपुर माय पेट माय पढ़ रहा बच्चा रे लड़का या लड़की विवण री गैर कानूनी जांच रा आरोप माय एक जना ने गिरफ्तार किन्नो है। मिशन निदेशक डॉक्टर जोगाराम बतायो के आरोपित रे एक नर्सिंग होम माय लाडला भगत तू ओ काम करण री जानकारी मिली है। पकड़ी जिया मिनक हूँ पोर्टेबल मशीन और जांच री एवज माय लीरी जी 50,000 रुपया री रकम बरामद करी जी। प्रदेश में साइबर ठगी और ऑनलाइन तरीकाओं करी जावन वाली धोखाधड़ियों बचाव सारू पुलिस जनताओं किणी शंका लायक लिंक या अनजान नंबरों फोन आवण पर सावचेती राखण री अरज कीनी है। सवाई माधोपुर री एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी जनताओं साइबर ठगी भेवण री सूरत में तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 माथे शिकायत दर्ज करावण या नजदीकी पुलिस थाना में संपर्क करण सारू कहो।
1: तो मेरा आपसे निवेदन है कभी भी छोटे से कमीशन के चक्कर में आप स्वयं अपराध के जगत से ना जुड़ें। संचार साथी पोर्टल ये भारत सरकार द्वारा खोला गया है। आपके परिवार में कोई भी समझदार व्यक्ति है तो आज आप जाकर दो काम करें। एक तो बैंक में अवश्य चेक करें कि कहीं कोई इस तरीके के अकाउंट में आपका अमाउंट तो नहीं आ रहा जो आपकी नॉलेज के बाहर है, और नंबर दो आपके नाम से कितनी सिम इशू हो गई है। तो ये आपको संचार साथी पोर्टल पे आप ऑनलाइन जाके कर सकते हैं तथा आपके परिवार में जो भी पढ़े लिखे बच्चे हैं उसमें आपको मदद कर सकते हैं।
0: हिंदी साहित्य रा महान कथाकार और उपन्यास सम्राट कहा जावन वाला मुंशी प्रेमचंद री आज जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया रे जरिए मुंशी प्रेमचंद ने श्रद्धा भाव सागर याद करता था का कहो के वह वारी कालजयी रचनावां रे जरिए इंसान री भावनावां ने मजबूत तरीकों रखी और मारो साहित्य हमेशा सीख देतो रहवेला। आखिर में खास समाचार एक और फिर सुन ले रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री सदारत में आज भी कैबिनेट री मीटिंग में कई खास फैसला करी चिया। ऊर्जा भंडारण सारू पीएम सूर्य सरोवर योजना चलाई जावेला। राष्ट्रमंडल देशारो न्यायिक महाकुंभ जयपुर में शांति मध्यस्थता और कानून रा राज ने मजबूत करण समेत न्यारा न्यारा मुद्दा माथे विचार करियो जावेला। प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव सारू 15 अगस्त ने अधिसूचना जारी करी जावेला और राज्य में काल खरीफ डिजिटल क्रॉप सर्वे शुरू करियो जावेला। इसागी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 26.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 7 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चौपाल। आज की प्रस्तुति है रमेश चावरिया की और कार्यक्रम रहेगा गीतारो गजरों।

राम राम सा कार्यक्रम गीतारो गजरो सुनिए सगळ्या परिवाराने भाई रामेश्वर का घना घना राम राम मोकला मोकला राम राम। भाई लोगो आज आपने शुक्रवार को दिन है और शुक्रवार के दिन आप ले रहे करा कार्यक्रम गीतारो गजरो और इंगमा थारा फरमाइशी जका लोक गीत है लोक भजन है बे सुना करा और थारी जी की मेल है थारा जका संदेश है और थारा जका कागज भेजड़ा है बिंग हिसाब से आप गीत भजन ज कहे भी थरते पुगता करे करा सा। पर आप कार्यक्रम की शुरुआत करा आ चार लाइना से क्योंकि सावण जो है वो लाग्यो और आज आप गीत ज कहे भी लगभग सावण का ही भेड़ा कर लिया यहाँ के करे का अब चमके बिजली के अब चमके बिजली धन नैना में प्यार के अब चमके बिजली धन नैना में प्यार और जल बरसावे बादली हिवड़ो रसरी धार का चौमासो चोखो घणो का चौमासो चोखो घणो साजन जद हो साथ अर मुद्रा मुद्रा मुड़कता बीते दिन और रात। बिल्कुल सा रात तो अजय कोनी हुई नहीं संध्या को वक्त है लेकिन अपा भजन से शुरुआत करा और पछा थारा जका फरमाइशी कागज मेल संदेश जका है बे बांचांगा तो थे सुनो ओ भजन।

0: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: फाइनेंशियल
2: बिल्कुल सा, आप बाबा रामदेव जी को भजन सुनो और आपने दी फरमाइश पुगी है कागजा के तौर पर और लिखी है गांव हरदयालपुरा तहसील पीलीबुंगा सू बिरजला।

हाल जांगू, राजेश जांगू, संदीप जांगू, अनिल जांगू, रंगो परिवार। ओ कागज आपने थी पुग्या गांव दौलतपुरा श्री गंगानगर से सोलाल जी बेनीवाल, शांति बेनीवाल, मंजू मोहित हेमंत और अंजू बेनीवाल। गांव भैलोनगर से घनश्याम शर्मा, पार्श शर्मा, संदीप शर्मा, जयश्री सारस्वत और बसंत बिहार सूरतगढ़ से आपने थी फरमाइश लिखकर भेजी है जगदीश सैनी, आशा सैनी, गोविंद सैनी, नीतू सैनी और तनिषा सैनी। आ फरमाइश पुग्गी है रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जीएस नायक, शोभा नायक और सगलो परिवार। सादुल शहर से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान भी अपना दी फरमाइश मांडी है और आ फरमाइश पुग्गी है अलीका डबवाली से बसंत सिंह चंद और अंगसागे है राजकुमार, सुनीता, कुलदीप गांधी। गांव खेरका सिरसा से इंद्रजीत, कमलजीत, मीनाक्षी, सागर, सरगुन, हनी लोट और दर्शन लोट और मसीता डब वाली सूँ दर्शन लौट सरगुन। आ दोबारा अपने ती दो कागज मार दिया सा गांधी चौक रोपड़ पंजाब से अपने ती फरमाइश लिखर भेजी है हरदेव मिक्का, बलविंदर बिरक, जितेंद्र बिरक और मिक्का बिरक। आ फरमाइश पूर्ति हुई।

गांव खेरका सिरसा से हूँ, इंद्रजीत कमलजीत मीनाक्षी सागर सरगुन हनी लोट और दर्शन लोट, और मसीता डब वाली से हूँ दर्शन लोट सरगुन। हाँ, दोबारा अपने ती दो कागज मार दिया सा, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हूँ अपने ती फरमाइश लिखर भेजी है हरदेव मिक्का बलविंदर बिरक जितेंद्र बिरक और मिक्का बिरक। आ फरमाइश पूर्ति हुई सा अपने ती, और लिखने वाला है आपको गांव को नाम लिखे है गांव राजपुरा, और फरमाइश लिखी है हरदीप सिंह जगवीर सिंह ज्वाला सिंह गुरसाहिब सिंह चहल और धर्मवीर झोरड़। अगली फरमाइश आपने ते अनारकली बाजार जगराम से सुनील पाठक कमल पाठक दीपिका मल्होत्रा आशीष मल्होत्रा बेबी गव्या मल्होत्रा और भाई सुच्चा सिंह पाठक। मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी सीमा अनमोल धर्मपाल वीर सिंह लाठी विवान लखविंदर संधु महावीर संधु गुरचरण ग्रोवर रमेश मिगलानी भी फरमाइश मांडी है, और आ फरमाइश पुग्गी है बुच्चो केंचिया बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा मनजीत कौर जोड़ा करणवीर करण दीपिंदर वरिंदर सिमरन कुलदीप सिंह एकम दमन और अभिजोत। आ फरमाइश पुग्गी मंडी गोलवाल सिंह बिरजलाल चौहान नीरज कुमार चौहान, और फरमाइश पुगती हुई सा अपने तई रिंगणी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्लापुर उत्तर प्रदेश से अपने ती फरमाइश लिखकर भेजी है मुकेश कश्यप शीतल कश्यप सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल सीमा मानवी तन्वी लक्ष्य सोनी मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह। अब थाने एक सुना दिया सावण को गीत, लियो सुनो सा।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: बिल्कुल सा संदेश उपेला था ने सावन को गीत सुनायो स्वाति शर्मा और गौरव जैन की आवाज गमा। आपने ती संदेश के तौर पर फरमाइश पुग्गी है और लिखी है रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, गांव बांडीवाला फाजिलका पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, रजत बेबी और ग्रीमा बगड़िया भी फरमाइश मांडी है। आ फरमाइश पुग्गी है अपने ती और लिखने वाला है दतरंगी भाटापारा से छत्तीसगढ़ से आ फरमाइश पुग्गी है। हीरामणि वर्मा, पार्श्वमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखे लाल। अगली फरमाइश आपने ती पूगती हुई है सिद्धार्थ नगर दरियापुल बावली शू गजानंद येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, अशोक येले। आ फरमाइश पुगी है दुर्गा कॉलोनी हांसी शू राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू और डब्बू अंग सग है। और गांव लोग ठाकुरवाला शू श्रवण सिंह गिल और दलजीत सिंह गिल, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह। फरमाइश पुगती हुई है ग्राम पिपरलोड सरगाम छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। आ फरमाइश आपने ती लिखर भेजी है गांव नाईवाला जिला हनुमानगढ़ से वेद मिड्डा और अलका मिड्डा। और आ फरमाइश पुगती करी है नारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्य मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक। एकता कलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोथ, निखिल कांगड़ा और तनवी बोथ भी आपने ती फरमाइश मार दी। और आ फरमाइश आपने ती लिखर भेजी है ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से और लिखी है बलकर्ण वर्मा, अंजनी, नीरा वर्मा, ज्योति और प्रहलाद वर्मा। ग्राम बकानी खुद पोस्ट आंवली कला भवानी मंडी से आपने ती फरमाइश लिखर भेजी है। और आ फरमाइश लिखी है राजेश कुमार मेहरा, नंद किशोर, विनोद, अर्जुन, दुर्गा शंकर, सिकंदर, राहुल, चंदू, देवराज, लक्ष्य और सगड़ो परिवार। हरियाणा से हूँ अंकित कागड़ा, मोनी कागड़ा, प्रिंस बोध, सीताराम कागड़ा, साहिल कांगड़ा भी आपने दी फरमाइश मान दी। और आप फरमाइश लिखर भेजी है मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, निहारिका वंश बत्ता, कनेरा मोहल्ला पटियाला से हूँ। रायसनगर से आपने ती फरमाइश लिखर भेजी है सोनलाल जांगिड़, मंजू जांगिड़, जसवंत राम, शिव प्रकाश, सुनील जांगिड़, साहब राम स्वामी। आ फरमाइश पदमा टोकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से आपने ती पुगती हुई है सा सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह और मंगलाबेन शाह, राजेंद्र शाह है। आ फरमाइश चंडीगढ़ से आपने ती लिखर भेजी है सतीश अनेजा और आ कुछ बातें लिखर भेजी है कि आखा तेज रो खींचड़ो लागे घणो स्वाद, आखा तेज रो खींचड़ो लागे घणो स्वाद और पहली जमावा आ लिखे पहली जमावा देव ने लेवा फिर प्रसाद और सात चीजां रो खींचड़ो पके है धीमू आग और कड्डी बनावा छाछरी और बड़ी रो साग का ऊपर घीघी बाट की सागे ठंडो नीर और देख दही रो बाट को नहीं रह पछे धीर और भोग लगावा श्याम रह मांगो सुख रो सीर और दान करा जब जरूर जठे राखो ही है मीर और मोट बाजरी रो खींचड़ो रखे स्वस्थ शरीर रचना आखा तीजरी केवे संत फकीर। वाह सा अनेजा साहब बहुत शानदार, थाने गीत सुना दिया, लियो सुनो सा।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: बिल्कुल सा संदेश उपेला था ना

बनारसी बबू की आवाज का मां गी सुनायो जल भरियो हिलोरा खाए। आपरती फरमाइश पुक्ति हुई है और आलिखी हम मोताला महाराष्ट्र से हूँ विजय सुरलकर राता रतनमाला सुरलकर आरती कुमारी और ओम कुमार। फरमाइश पुक्ति हुई है आपने तई जोशन रेडियो लिसनर क्लब चक 15 PSU आ रायसनगर से भेजिए ऐसा। और लिखने वाला है सरजीत सिंह जोशन, सरजीत कौर जोशन, गुरमन सिंह जोशन, आदर्श पाल सिंह जोशन मेलबर्न और रोबिन सिंह जोशन वैंकूवर। चक 10 SDP लालगढ़ जटान से रामेश्वर निराणिया जी और सुमन दिव्या नूतन पंकज मेहरचंद हेमू मनीषा ब्रिजलाल और राम प्रताप जाखड़। आपने दी फरमाइश लिखकर भेजी है। आप फरमाइश पुगिया गांव रायण सिंह डॉक्टर बनवारीलाल जयपाल बिमला सोनू ममता दिशा मोक्ष सुशांत विक्रम जयपाल पूनम चालिया। हनुमानगढ़ टाउन से सुल्तान सिंह तड़ कृष्ण मुकेश रामचंद्र कपिल देव कांता चौधरी। आप फरमाइश पुगी ऐसा आपने दी अमरपुरा जालूखाड़ से जगदीश चंद्र प्रजापति बिमला प्रजापति मोनू प्रजापति राजेंद्र प्रजापति। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा कपिल छिंपा ईशान छिंपा पूजा परिहार भी फरमाइश मांडी है। और आप फरमाइश आपने ती लिखकर भेजी है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन दुर्गा प्रसाद देवांगन प्राग टेलर पूनम पूना राम देवांगन और कृष्णा देवांगन। गांव लोहगढ़ ठाकुरवाड़ा से स्वर्ण सिंह गिल दलजीत सिंह राजदीप सिंह गुरनूर सिंह गुरलाल सिंह अविराज सिंह आपने ती फरमाइश मांडी है। गांव 5 MD पतरोड़ा अनूपगढ़ से मंगल जनागल रोशनी जनागल अंकुर जनागल इंदु और सुनील जनागल। आप फरमाइश आपने ती लिखकर भेजी है दादा बाबू रोड ग्रिड झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान साइमा नवाज हसन नवाज बाबू अहद मिफरा नवाज और अंगसागे है बेबी चाहत और सादिया। अगली फरमाइश सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक मल्होत्रा अनिल शर्मा जयवीर सिंह ठाकुर केथल से डॉक्टर अमनदीप सिंह कालका से शुभचंद्र बजाज साहिल बजाज और बिट्टा बजाज भी फरमाइश मांडी है। आप फरमाइश पुक्ति हुई ऐसा अपने तीन शिव मंदिर हकीकत पूरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार पिंकी स्वर्णकार आयरन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। मुकलावा से मदन ब्रोड मंजूबाला प्रीति ब्रोड दिव्या ब्रोड हितेश ब्रोड कामना ब्रोड लुभानी ब्रोड आरती ब्रोड अजय पेंटर मुकेश पेंटर राजू पेंटर और अंगा माऊ बापू है अंगसागे हनुमान ब्रोड इमृति देवी आम भी रलमिल के फरमाइश लिखी ऐसा। और आप फरमाइश आपने ती लिखकर भेजी है राज प्लेस मऊनाथ भजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा प्रीति वर्मा कार्तिक आर्यन वर्मा। और अगली फरमाइश गांव फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी प्रमोद कुमार डूडी पुष्पेंद्र कुमार डूडी। संबलपुर कांकेर से फग्गूराम यादव ज्योति यादव ओजस्वी यादव भी फरमाइश मंडी है। और दतरंगी से भागवत वर्मा शांति देवी लीलावती विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा भी आपने ती फरमाइश मांड दिशा। अगली फरमाइश आपने ती लिखकर भेजी है जिला किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास आशा देवी। आ फरमाइश तहसील भादरा अनूप शहर से गजानंद सारस्वत ताराचंद सारस्वत सोनू पवन कुमार साहिल राघव मुरारीलाल शर्मा मदनलाल शर्मा फुसाराम मील महावीर लोरा ममता मीतू किन्नू और पंकज सारस्वत। अगली फरमाइश गांव जोगीवाड़ा श्री गंगानगर से प्रेम सहान मोनिका और मनी सहान भी लिखकर भेज दी। और आ फरमाइश लिखकर भेजी है अपना तई चक 58 NP रायसनगर से सुल्तान राम मलखट सरस्वती देवी हरबंस लाल बनवारी लाल गोपी राम ललित कुमार नरेंद्र कुमार मीनाक्षी मलखट मोनिका और गीतांजलि मलखट और आंगो सगड़ो परिवार। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डेक्स्ट्रो रोजी डेक्स्ट्रो और पर्ल डेक्स्ट्रो और विलिस्ट डेक्स्ट्रो भी आपने ती फरमाइश लिखकर भेजी ऐसा। थाने सगड़ा ने एक गीत सुना दिया सावणगो सीमा मिश्रा और 37 की आवाज़ कमा लियो सुनो सा।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: बिल्कुल सा संदेश उपेला थाना सीमा मिश्रा और सतीश देड़ा के वाजगवा गीत सुनायो। आपने दी फरमाइश पूर्ति हुई है नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त केरव ज्योति रानी गुरमत कौर मनु आ फरमाइश डानी लाल खां सु जावेद खां और अंग सागे हरमान खां इमरान खां सीमा वन और विनोद खां भी लिखर भेजी है। संग्रिय से आपने दी फरमाइश लिखर भेजी है श्याम मिड्डा और सुमन मिड्डा, श्याम लाल, राजपाल, जयपाल, संदीप कुमार, चिमन लाल मंडी केसरी सिंहपुर से अपने ती फरमाइश लिखर भेजी है। सा जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्लापुर उत्तर प्रदेश से फरमाइश पूर्ति हुई है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज काजल, सीमा मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब शाही, राही मेहराज, जहाँ आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से अपने ती फरमाइश लिखर भेजी है। और आ फरमाइश पुग्गी रिगणी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, गांव बनवाला हनुता, फाजिलका पंजाब से विनोद मायल, सीमा, लक्षिता, यशिका, विद्या देवी, रंगो परिवार, सांगली जिला केजत शहर से अल्ताफ हुजरे, सेफुअल्ला सबाहत, किर्त हुजरे और रेहान शेख भी फरमाइश मांडी है। आ फरमाइश पुगिया सादुल शहर से रामकुमार रिवार्ड और चंद्रकला रिवार्ड। अगली फरमाइश दादरी गेट बिहानी से आपने ती पुगती हुई ऐसा कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा और मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गोड़ भी लिखकर भेज दी। फरमाइश विक्रम कड़वासरा, सचिन सतीश, योगेश युदु कड़वासरा, कुंदन जाखड़, लीलाधर स्वामी, कृष्ण मायल, कीड़ूराम जोया, हनुमान सहारण, सुनील पाईवाल, गांव कलाना, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़ से अपने ती फरमाइश लिखी है। और आप फरमाइश पूर्ति हुई है वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू, टॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा और गुजरात।

0: गांधी ग्राम जो प्रवीण सोनी कलावती सोनी जगदीश चोरी भी फरमाइश लिखकर भेज दी और आ फरमाइश अगली आपण ती लिखकर भेजी है गांव राजिया सर छू लिखण आला प्रेम लेगा जसराम भरत हरिओम और अंगो सगलो परिवार। अगली फरमाइश आपण ती ऊपरकोट मोहला चौक खूंटी बुलंदशहर छू मोहम्मद सईद अब्बासी निगत परवीन अब्बासी शहनवाज सरफराज फरदीन सुहाना अरजान अबान अब्बासी और सगलो परिवार। फरमाइश लिखर भेजी ऐसा अपना ती आसाम छू हितेंद्र दास और जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश छू मास्टर अशोक कुमार वर्मा अर्चना वर्मा अनुज वर्मा आयुषी वर्मा रमेश चंद्र वर्मा। आ फरमाइश आपने ती लिखर भेजी है निमनाबाद जिला जिंद हरियाणा छू जसवीर सिंह अरोड़ा जितेंद्र कौर गुरप्रीत सिंह लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। नज़दीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ छू फाजिलका छू अपना ती फरमाइश पुगी है रमन वर्मा अमन वर्मा दिव्यांश वर्मा और मदन लाल वर्मा गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब छू सुभाष गुदारा बिमला गुदारा इंदु पार्वती हिमांशु गुदारा श्रवण रिणवा हंसराज भाटिया मनीराम रणजीत राम क्रोडवाल सुरेंद्र भादू रणमिल के फरमाइश लिखी है और आ फरमाइश पुगी है भोपाल मध्य प्रदेश छू मनीष श्रीवास्तव हर्षिता श्रीवास्तव विमल श्रीवास्तव आशा राधिका और श्रीवास्तव और हनुमानगढ़ टाउन छू रजाक मोहम्मद शमीम बेगम इमरान खान इरफान खान शहनाज भी फरमाइश मंडिया साहब बिलाई छत्तीसगढ़ छू रोशन लाल देवांगन कौशल्या देवांगन हेमलता डिंपल देवांगन भी फरमाइश मंडी है गांव खारिया जिला सिरसा हरियाणा छू प्रताप जिनागल इंदिरा मुकेश दिनेश अंशु बलदेव कटारिया और आ फरमाइश नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र छू पीएस नवाकर निर्मला नवाकर और विशाल नवाकर भी लिखकर भेजी है गांव घमंडिया सूरतगढ़ छू जगदीश ढूकिया प्रमिला ढूकिया ज्योति शिवम ढूकिया सरिता सचिन अमन्ना तमन्ना सायना विष्णु ढूकिया और अंगी दोईती है इवा धरणिया। अगली फरमाइश संदीप मक्कड़ ज्योति मक्कड़ मन्नत मक्कड़ भरत मक्कड़ कमल शाहनी पिंगवाड़ा चौक गुरैया जलंधर छू लिखर भेजी है और आ फरमाइश अक्कलकोट रोड जिला सोलापुर महाराष्ट्र छू गणेश लोड़े अम्रपाली लोड़े और अंगसा गह आरव जमानिया गाजीपुर यूपी छू सुरेश जायसवाल उर्मिला जायसवाल दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल भी आपने थी फरमाइश मान दिया सा थान सगड़ा ने एक गीत सुनावा सा लियो सुनो सा चंपा मेथी की आवाज गमा
1: तो घर घर भटका खाए थे थारो मनड़ो काठो कियो थारो पन

0: नमस्कार किसान भाइयों, भारत में सर्वप्रथम और आज भी सर्वश्रेष्ठ असली भरोसेमंद मोनोजिंक बनाने वाली 48 वर्षों से किसानों की खुशहाली हेतु समर्पित दयान फर्टिलाइजर्स अब धान उत्पादकों किसान भाइयों के लिए लेकर आई है धान प्रधान और धरती गोल्ड। अधिक पैदावार और उत्तम क्वालिटी के लिए एक बार जरूर प्रयोग करें और पाएं कम कीमत में ज्यादा मुनाफा, क्योंकि दयाल का है सपना, खुशहाल हो हर किसान अपना।
1: बिल्कुल सा आपने तो फरमाइश पूर्ति हुई है। गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से हजारी लाल पुरोहित मोनी पारिक भूपेंद्र पारिक राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी साजापुर से मोहनला मनमोहन राजावत मधु राजावत और राशि रक्षित गोविंदपुर शिखर से दतार सिंह शेखावत संगीता कंवर तुषार सिंह रिक्की शेखावत भी फरमाइश लिखर भेजी है। बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग अंजू नारंग मोहित नारंग लक्की नारंग तानिया नारंग भी लिखर भेजी ऐसा फरमाइश। अमरगढ़ सादुल शहर से कुलवंत मान लखविंदर कौर मान खुशप्रीत कौर गुरनूर मान कुलविंदर कौर हरविंदर मान और राज सिंह प्रीत मान आम भी लिखर फरमाइश भेजी ऐसा। बोरसरा में नीला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार शाहू बीमा विभवी विनोद विभूति अंशु बबली और प्रियांश साहू डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबी राधिका गजबी और तन्मया गजबी भी फरमाइश मांडी है। आ फरमाइश आपने ती लिखर भेजी है। सागली लिखने वाला है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मी देवी गोस्वामी जोगेशपुरी ट्विंकल डिम्पल मीनाक्षी निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। आ फरमाइश आपने ती लिखर भेजी ऐसा। ब्यासी आरबी रायशनगर से चेतन राम सारसवा नौरव राम सारसवा बांसुरी वादक प्रदीप सारसवा ज्योति सारसवा ममता सारसवा नानू देवी सारसवा फरमाइश आपने ते लिखर भेजी है। मलोट पंजाब से राजकुमार इंदौरा विकास इंदौरा गेरी इंदौरा बेबी दिव्या इंदौरा और सीमा मिश्र की आवाज गमा के माने कोई गीत सुनाई हो। बिल्कुल सा था ना भी थोड़ी देर पहला सीमा मिश्र की आवाज गमा भी आप गीत कहे बे चलाया सा। आप फरमाइश आपने ती गांव बारह टीका रायशनगर से धर्मपाल भारती कृष्णा भारती विशेष भारती अंजना भारती भी लिखर भेजी है और फरमाइश पुक्ति हुई है। वार्ड नंबर 11 मिर्जावाली मेयर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ से और लिखी है रामू राम चावरिया जीत राम चावरिया लक्ष्य प्रताप चावरिया आरजू ज्योति और सगड़ो परिवार। अगली फरमाइश लखवाली हेड से मास्टर भंवर लाल कृष्णा सौरभ विशाल राजबाला ममता मोहम्मद रफीक महावीर लोरा संगरिया से मुकना राम भी लिखर भेजिए सा। अगली फरमाइश धनौरी तेलीवाड़ा से निसार सलमानी नौसा सलमानी बेबी आलिया अयान बाबू और आ फरमाइश कनवाणी रावसर से कृष्ण श्याग भी आपना ती लिखर भेजिए सा। मलोट पंजाब से राज शर्मा मीना शर्मा योगेश शर्मा निवान शर्मा मेंडी शर्मा सौरभ शर्मा और साइना शर्मा भी फरमाइश लिखर भेजिए सा। थाने सगला ने एक गीत सुना दिया लियो सुनो सा।

बिल्कुल सर, आपने ती एक छेकिल्डी फरमाइश भी चक 3 WM रावसर छू हनुमानगढ़ छू आ फरमाइश लिखकर भेजी है मोहनलाल मोयल, गोपीराम मोयल, राकेश कुमार मोयल, मनीराम और मनीष, अनुज, अलका, मंजू, कनिष्का, अर्चना, रिया, दीपिका, सोनाक्षी, हर्ष, चिराग, मुकुंद, राधिका, रल मिल के फरमाइश लिखी है सा सगड़ा ने सुनावा वो गीत लो सुनो।

बिल्कुल शाह, के बीज जो भूके बादली घूंघट गोरी नेन और मन चिंती पूरी करे सावन साचो सेन, के घुट घुट आवे बादली और घुट घुट उमड़ा ने और भीगे मन गोरड़ी आंगन बरसा में। आज को कार्यक्रम ही तो ही है। अब भाई रामेश्वर ने दियो आ गया। राम राम शाह, राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। कार्यक्रम था गीता रोगजरों, प्रस्तुति रमेश चावरिया की थी। मीडियम 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरत घर से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 7:45 और 50 सेकेंड हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

अभी आपने मोहम्मद रफ़ी, आशा भोंसले और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ों को सुना। फिल्म का नाम था सुहाग, आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था।

0: जी हाँ दोस्तों, आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ को सुना। फिल्म का नाम था अमानत। साहिर लुधियानवी ने इस गीत को लिखा था, संगीत रवि का था। दोस्तों, आज 31 जुलाई का दिन है और आपको याद है कि 31 जुलाई 1980 में मोहम्मद रफ़ी साहब का देहांत हुआ था। वो हमसे, उनकी जो देह है वो पिछड़ गई थी और उनकी आवाज़ आज भी हमारे साथ है। हर युवा दिल की धड़कन, हर चाहने वाले का प्यार और इश्क और माशूक की जब जब बात होती है तो रफ़ी की आवाज़ उनके साथ होती है। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आइए हम आपको लिए चलते हैं हमारे दिल्ली के अंदर संसद समीक्षा सुनने के लिए।
1: आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा में आज विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही सदन ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाले विधेयक को बिना चर्चा के पारित कर दिया। सदन की बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के विषय को लेकर आसन के निकट पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और प्रश्नकाल चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि कई बार आग्रह किया है कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय है और सदस्य का समय है। आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा मत करिए, आप सदन को चलने दें। उन्होंने कहा कि आज प्रियंका गांधी का भी प्रश्न होना है और वे प्रश्न पूछने के लिए खड़ी हैं, लेकिन आप लोग सदन की कार्यवाही बाधित कर रही हैं। श्री बिड़ला का कहना था कि सदन के अंदर तख्तियां और बैनर लेकर आना संसद की परंपराओं और मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ माननीय सदस्य जिस तरह भेष बदल बदल कर आते हैं, उन्हें मेरी चेतावनी है। कई सदस्यों ने मुझसे मिलकर और मुझे लिखकर कहा है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता और मर्यादा बनी रहनी चाहिए। आप संसद की पवित्रता और गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। शोर शराबा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई तो हंगामे की स्थिति जस की तस थी। हंगामे के बीच ही जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन

संशोधन विधेयक 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक को पारित करने के लिए पेश किया। इस दौरान विपक्षी दलों के सदस्य दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। सदन ने बिना चर्चा के ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक पर अपने संशोधन भी पेश नहीं किए। बीते 20 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विधेयक को मंजूरी दी थी और इसे 29 जुलाई को सदन में पेश किया था। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969-2023 में संशोधित की धारा 13(3) में और संशोधन करना है, ताकि विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक कड़ा बनाया जा सके। मौजूदा प्रावधानों के तहत यदि जन्म या मृत्यु का पंजीकरण 1 वर्ष से अधिक की देरी से कराया जाता है तो इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट DM, उपमंडल मजिस्ट्रेट SDM अथवा किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होती है। विधेयक में देरी की अवधि के आधार पर 2-स्तरीय मंजूरी व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। विधेयक पारित होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ये इतना महत्वपूर्ण विधेयक है और हम चाहते हैं कि सब सदस्य इसके भाग लें। उन्होंने कहा कि बार बार अनुरोध के बावजूद विपक्ष के साथियों ने विधेयक पर चर्चा में भाग नहीं लिया और अब उन्हें सदन से बाहर जाकर ये नहीं कहना चाहिए कि विधेयक बिना चर्चा के क्यों पारित किया। श्री रिजिजू ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जनता आपसे जवाब मांगेगी। आप बाहर जाकर ये आरोप नहीं लगा सकते कि बिना चर्चा के विधेयक पारित कराया गया है, आपने अवसर गंवा दिया है। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि सदन में आगे आने वाले विधेयकों पर सहयोग करें और चर्चा में भाग लें। पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने हंगामा कर रहे विपक्ष के साथियों से कहा कि सभी ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विधेयक पर सहयोग की बात कही थी, लेकिन यहां आप हंगामा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपके सहयोग के बिना विधेयक पारित करना पड़ा, ये सही नहीं है। हंगामा नहीं थमने पर श्री सैकिया ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों पर गंभीर आरोपों के मामलों में उनके लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहने की स्थिति में पद से हटाने का प्रावधान करने वाले 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर विचार कर रही संसद की संयुक्त समिति JPC का कार्यकाल शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिन तक बढ़ा दिया गया। संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और संघ राज्य क्षेत्र सरकार संशोधन 2025 पर संसद की संयुक्त समिति की अध्यक्ष और भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने रिपोर्ट पेश करने के लिए आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिन तक का समय देने के लिए सदन में प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इससे पहले समिति ने गत 17 जुलाई को अपनी मसौदा रिपोर्ट को अंगीकार करने की प्रक्रिया स्थगित करने का निर्णय लिया था। समिति की अध्यक्ष और भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने बताया कि सदस्यों का मत था कि इस विषय पर और अधिक चर्चा की आवश्यकता है, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया। संयुक्त समिति का गठन 12 नवम्बर 2025 को किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले वर्ष मानसून सत्र के आखिर में विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच सदन में ये विधेयक पेश किए थे। बाद में उनके प्रस्ताव पर सदन ने तीनों विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का निर्णय लिया था। आज सदन में लिखित जवाब में सरकार ने सूचित किया कि वह विभिन्न उच्च स्तरीय और अन्य आधिकारिक दौरों के दौरान पाकिस्तान से होने वाले सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर अन्य देशों को लगातार जागरूक कर रही है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने 31 देशों और 6 बहुपक्षीय समूहों के साथ आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह भी गठित किए हैं, जहां ऐसे मुद्दों पर नियमित रूप से चर्चा की जाती है। मंत्री ने कहा कि कई देशों ने पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वह अपनी धरती को किसी भी तरह से आतंकवाद के लिए इस्तेमाल न होने दे। श्री सिंह ने बताया कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद आतंकवाद से बचाव के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों को कई देशों ने सराहा है। मंत्री ने यह भी कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की निंदा विभिन्न बहुपक्षीय

जो पर प्रस्तुत दस्तावेजों में भी दर्ज की गई है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका है पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। नीट प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग और अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे पर चर्चा कराने तथा जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण आज राज्यसभा की बैठक शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद ही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल केवल 15 मिनट ही चल पाया और केवल 4 सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद उन्होंने शून्यकाल शुरू करने को कहा। इसी दौरान नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में

सदन में शून्यकाल केवल 15 मिनट ही चल पाया और केवल 4 सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद उन्होंने शून्यकाल शुरू करने को कहा। इसी दौरान नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग और अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे पर चर्चा कराने तथा जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच विपक्षी सदस्यों ने मांग की कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाए। सभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा, आप रोज इसी तरह की स्थिति उत्पन्न करते हैं। आप हंगामा करते हैं और फिर सदन से बहिर्गमन कर जाते हैं। आप अपनी बात कहना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते। श्री राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वे अब भी आपातकाल मोड में हैं। उन्होंने कहा कि आप आज तक आपातकाल मोड में हैं। आप चाहते हैं कि हर कोई आपकी बात सुने लेकिन आप किसी की बात नहीं सुनना चाहते। ये तानाशाही है। आप लोकतांत्रिक मूल्यों को महत्व नहीं देना चाहते। सभापति ने कहा कि आपको दूसरों की बात भी सुननी चाहिए। मैं हर बार नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका देता हूं लेकिन आप दूसरों की बात नहीं सुनते। सभापति राधाकृष्णन के ने बाद में खड़गे को बोलने की अनुमति दी। कांग्रेस अध्यक्ष और उच्च सदन में विपक्ष के नेता खड़गे ने कहा कि उन्होंने नोटिस दिया है। श्री राधाकृष्णन ने पूछा कि नोटिस किस नियम के तहत दिया गया है। इस पर श्री खड़गे ने कहा कि उन्होंने नियम 267 के तहत नियत कामकाज स्थगित कर एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नोटिस दिया है। सभापति ने स्पष्ट किया कि नियम 267 के तहत कोई भी नोटिस स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे पहले ही नियम 267 के बारे में व्यवस्था दे चुके हैं। श्री खड़गे का नियम 267 के तहत दिया गया नोटिस अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि अधिग्रहण में कथित अनियमितताओं और धन के कथित दुरुपयोग से संबंधित था। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने कथित पेपर लीक मामले को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और गृह मंत्री अमित शाह के सदन में आने की मांग की। विपक्षी दल 20 जुलाई को प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल सहित बल प्रयोग को लेकर गृह मंत्री से बयान की मांग कर रहे हैं। विपक्ष ने इस मुद्दे पर गृह मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की है। हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों ने सभापति ने कहा कि शून्यकाल का गृह मंत्री से क्या संबंध है। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन पर सड़क छाप राजनीति करने और सदन की गरिमा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। श्री चौहान ने कहा कि विपक्ष ओछी राजनीति कर रहा है और सदन की गरिमा से खिलवाड़ कर रहा है। लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वे केवल हंगामा करना चाहते हैं, चर्चा नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष अराजकता फैलाना चाहता है। उन्होंने कहा कि वे विपक्ष के आचरण की निंदा करते हैं। सभापति ने जब सदस्यों से शून्यकाल में सूचीबद्ध मुद्दों को उठाने के लिए कहा तब भी विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते रहे। उन्होंने अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित चोरी के आरोपों को लेकर भी नारे लगाए। भाजपा के 4 सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। भाजपा के महेंद्र भट्ट ने उत्तराखंड में जनगणना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जनगणना प्रक्रिया केवल जनगणना ही नहीं बल्कि ये उत्तराखंड के भविष्य, उसकी पहचान और उसके समग्र विकास से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि 2027 की जनगणना देश की नीतियों, योजनाओं, तमाम संसाधनों का आधार बनाएगी, इसलिए इसका खास महत्व है। श्री भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड में जनगणना को पारंपरिक तरीके से नहीं बल्कि अपनी गणना अपना गांव जैसे जनभागीदारी के अभियान के रूप में संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि गांवों से पलायन होने के कारण कई गांव खाली हो गए हैं। इसका असर जनसांख्यिकी पर भी पड़ा है। उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड पर पलायन की गहरी मार पड़ी है। उन्होंने कहा कि सीमांत गांवों की सटीक गणना जरूरी है। भाजपा सदस्य ने कहा कि उत्तराखंड केवल राज्य ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण सीमांत क्षेत्र है।

उन्होंने मांग की कि राज्य का सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए अपनी गणना अपना गांव अभियान के तहत जनगणना कराई जानी चाहिए। भाजपा के ही प्रदीप कुमार वर्मा ने रांची के CIP मानसिक चिकित्सालय का मुद्दा उठाया और इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि 1918 में स्थापित केंद्रीय मानसिक चिकित्सालय संस्थान में बड़ी संख्या में दूर दूर से मनोरोगी आते हैं और इनमें खासी संख्या गरीबों की होती है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान की अवसंरचना के विस्तार की और उसके नवीनीकरण की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया जाना चाहिए। भाजपा के ही मनन कुमार मिश्रा ने अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम का मुद्दा उठाया और कहा कि ये वकीलों की पुरानी मांग है। उन्होंने कहा कि अदालतों में दलीलें देने वाले वकीलों की जान को भी खतरा होता है और कई अधिवक्ताओं की हत्या भी हुई है। उन्होंने अधिवक्ताओं की सुरक्षा को महत्वपूर्ण बताते हुए उनके लिए अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम बनाने की मांग की। भाजपा के रायगा कृष्णा ने संसदीय चुनावों एवं विधानसभा चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की मांग की। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ है और विभिन्न मुद्दों को लेकर सदन की कार्यवाही लगातार बाधित होती रही है। आज शुक्रवार होने की वजह से उच्च सदन में गैर सरकारी कामकाज नियत था, जिसके तहत 4 निजी संकल्प पेश किए जाने थे। साथ ही सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को भी चर्चा तथा पारित करने के लिए आज सदन में पेश किया जाना था, लेकिन हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही आज भी बाधित हो गई। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

अभी आप सुन रहे थे संसद समीक्षा हमारे दिल्ली केंद्र से। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात्रि के 8:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ आपने सुनी, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन, फिल्म का नाम सरगम, जिसके गीत आज आप सुन रहे हैं। NNCP की फिल्म है, इसके निर्देशक हैं कसीन थुनी विश्वनाथन और इसमें मुख्य भूमिकाएं हैं ऋषि कपूर और जयाप्रदा की। आज की ये फिल्म सरगम, जिसका प्रदर्शन या रिलीज ये हुई थी 8 जनवरी 1979 को। लीजिए सुनते हैं इसी फिल्म का एक और नगमा।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ को आप सुन रहे थे। सरगम फिल्म में आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन थी और फिल्म थी सरगम। ऐसी फिल्म का एक और नगमा सुनते हैं।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आप सुन रहे थे सरगम फिल्म के गीत। कार्यक्रम का नाम था एक ही फिल्म से। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात्रि के 8:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप हिंदी व अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नज़र स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। राष्ट्रमंडल खेलों में खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी। मुक्केबाजी, जूडो और एथलेटिक्स में कई खिलाड़ियों ने फाइनल में जगह बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी। तन्वी शर्मा और उन्नति ओडा ने ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जगह बनाई। विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष टीम ने लगातार दूसरी बार कांस्य पदक जीता। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की महिला पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक रजत और दो कांस्य पदक जीते। और एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली हेप्टाथलीट स्वप्ना बर्मन ने आज एथलेटिक्स से संन्यास की घोषणा की।

0: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं राष्ट्रमंडल खेलों से जो ग्लासगो में जारी है, जहां भारतीय खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन जारी है अलग अलग खेलों में, चाहे मुक्केबाजी की बात कर ले, जूडो की बात कर ले या एथलेटिक्स में बात कर ले, तो सब में भारतीय खिलाड़ी अपना परचम लहरा रहे हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन आज भी जारी है। मुक्केबाजी में कई भारतीयों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी विशेष। विशेष, प्रतियोगिता अंतिम रूप लेने को तैयार है और ऐसे में आज मुक्केबाजों ने अलग अलग वर्ग में कैसा किया प्रदर्शन?
1: जी प्रशांत, भारतीय मुक्केबाज जो हैं वो बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं भारत के लिए। अगर आज की बात करें तो हालांकि 10 पदक भारतीय मुक्केबाजों ने पहले ही सुनिश्चित कर लिए थे, लेकिन प्रीति पवार ने 54 किलोग्राम में जाम्बिया की कैथरीन वापे को हराया। वहीं पुरुष वर्ग में अंतिम पंघाल ने कनाडा के जोशुआ ओफ्रोई को 5-0 से हराया।
0: जी, प्रीति पवार का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है और सुनते हैं क्या कुछ कहा प्रीति ने।
2: प्रेशर नहीं है, बट ऑफ कोर्स फाइनल है तो मुझे और प्रिपेयर करना पड़ेगा उसके लिए।

0: और मैं अपना गेम प्लान बनाऊंगी उसके अकॉर्डिंग आई विल गिव माय बेस्ट. बिल्कुल कम टाइम है मेरे पास बट मैं अभी प्रिपेयर करूंगी नेक्स्ट ओपोनेंट के लिए मेरे को कैसे खेलना है. लेकिन ये सबके लिए है क्योंकि पूरे इंडिया के होप्स है मेरे से और सबकी प्रेयर्स हैं ब्लेसिंग्स हैं तो सबका सपोर्ट है और ये मेडल भी सबके लिए ही है
1: जी. इसके अलावा प्रशांत जो है जैस्मीन ने 57 किलोग्राम में जगह बनाई है फाइनल में और अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम के फाइनल में जगह बनाई है.
2: विशेष आपने बहुत कुछ बताया मुक्केबाजों के बारे में लेकिन सबसे ज़्यादा पदक जो है वो मुक्केबाजों ने ही भारत के नाम किए. आज कई मुक्केबाजों ने फाइनल में पहुंचकर रजत पदक की जो उम्मीदें हैं उसको कायम रखा है और ऐसे में आज कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका मुकाबला भी जारी है और उनका मुकाबला और होना भी है आज.
1: प्रशांत जो मुकाबला मुक्केबाजी में अगर कहें तो जादूमणि सिंह जो हैं वो खेल रहे हैं अभी और इंडियन मिक्स टीम जो है रिले की 4x400 मीटर के फाइनल में पहुंच चुकी है. तो पदकों की उम्मीदें हैं वो सिर्फ मुक्केबाजी से नहीं है अन्य खेलों से भी लगाई जा रही हैं. लॉन बॉल में भारत का प्रदर्शन आज बहुत ही शानदार रहा है जहाँ नवनीत और दिनेश ने 6-3 और 10-1 से इयान बांस और ओलिवर थॉम्पसन को हराया तो इससे उनके क्वार्टर फाइनल में पहुँचने की उम्मीदें और बढ़ जाती हैं और इसी के साथ साथ कई अन्य खेलों में भी भारत ने जो है बेहतरीन प्रदर्शन किया है.
2: अन्य खेलों की आपने बात की जिसमें जूडो का भी हम देखें तो जूडो में किन खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन रहा विशेष?
1: अगर प्रशांत बात करें तो अस्मिता डे और हर्ष सिंह यामिनी मौर्य ने इन्होंने अपने अपने वर्ग में फाइनल में जगह बना ली है और भारत के लिए जो है पदक सुनिश्चित कर दिए हैं. और महिला 48 किलोग्राम वर्ग में अस्मिता डे ने बेहद रोमांचक मुकाबले में आज स्कॉटलैंड की समर शॉ यूको को हराया है और इसी के बाद पुरुष के 60 किलोग्राम वर्ग में हर्ष सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के पेड्रो कॉर्लेस एंटोनो नोटो को वाजा आरी के आधार पर हराकर फाइनल में प्रवेश किया. वहीं महिला 52 किलोग्राम वर्ग में श्रद्धा कदुवाल चोपड़े पदक की दौड़ से बाहर हो गई हैं.
2: आज देर रात भी कई मुकाबले खेले जाने हैं विशेष किन किन पर खिलाड़ियों पर और खेलों पर निगाहें होंगी हमारी?
1: सबसे ज़्यादा निगाहें हमारी आज होंगी मुक्केबाजी पे क्योंकि साक्षी 51 किलोग्राम में, प्रिया 60 किलोग्राम में, लवलीना 75 किलोग्राम में, सचिन सिवाच 60 किलोग्राम और नरेंद्र 90 किलोग्राम में भारत के लिए मुक्केबाजी में चुनौती पेश करेंगे.
2: विशेष आज तो कई खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन रहा लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्लासगो में जो राष्ट्रमंडल खेल चल रहा है इसमें आज ही भारतीय खिलाड़ी का प्रदर्शन शानदार रहा. कल भी कई खिलाड़ियों ने देश को पदक दिलाया जिनमें लवप्रीत सिंह है, सीमा कालीरमन है जिन्होंने देश को पदक दिलाया. तो क्या कुछ रहा उनका प्रदर्शन कल?
1: देखिए अगर लवप्रीत सिंह की बात करें तो उन्होंने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है और 110 किलोग्राम से जो भार वर्ग में उनकी जो कैटेगरी थी और उसमें 176 किलोग्राम का क्लीन और जर्क सहित 212 किलोग्राम वजन उठाकर भारत को रजत पदक दिलाया है और इसी के साथ प्रधानमंत्री जी ने भी उनको जो है बधाई दी है. वहीं अगर हम सीमा कालीरमन की बात करें तो वो कई सारी कठिनाइयों से जूझ रही थी उसके बाद भी उन्होंने भारत की झोली में कांस्य पदक डाला है. ये बहुत ही गर्व की बात है भारत के लिए.
2: आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा सीमा ने पदक जीतने के बाद.
3: AFI काफ़ी सपोर्ट कर रही है, SI काफ़ी सपोर्ट कर रही है, मैं अभी फिलहाल NCOE पटियाला में प्रैक्टिस कर रही हूँ और JSW काफ़ी हेल्प कर रहा है सर. तो अगर इसके अलावा भी मुझे कुछ अलग से कुछ चाहिए होता है तो घर वाले उस चीज़ को मैनेज कर लेते हैं क्योंकि ये सारा हार्ड वर्क वगैरह जो कुछ भी है वो सब मेरे हस्बैंड की वजह से. आज वो शायद अगर यहाँ पे नहीं आए होते तो हो सकता है वी मेडल में मुश्किल होती पर जो उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया है वहाँ पे खड़े हो गए.
1: और प्रशांत इसी के साथ पुरुषों की 4000 मीटर साइकिलिंग स्पर्धा में जो है भारत की चुनौती आज खत्म हो गई है. भारतीय खिलाड़ी दिनेश कुमार और हर्षवीर सिंह राष्ट्रमंडल खेलों की ये जो 4000 मीटर व्यक्तिगत परस्यूट साइकिलिंग थी उसमें सबसे निचले पायदान पर रहकर आगे बढ़ने में जो है नाकाम रहे हैं.
2: जी बिल्कुल विशेष और आज जो भी मुकाबले खेले जा रहे हैं और जिनमें भी मुकाबले होने हम सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हैं और ताकि वे देश के लिए और भी पदक अपने नाम करते रहें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी है.
4: कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा. स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है. 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरालंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी.

0: अब बात कर लेते हैं रेसलिंग पर। अजरबैजान के बाकू में जारी अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत की महिला पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में उन्होंने 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। सुनते हैं सरफिरोजी की एक रिपोर्ट।
1: 57 किलोग्राम कैटेगरी में निकिता सहरावत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई थी। हालांकि फाइनल में उनका प्रदर्शन उनके अनुरूप नहीं रहा। फाइनल में अमेरिका की मौजूदा अंडर 17 वर्ल्ड सिल्वर मेडलिस्ट एपेनेसा एलिसन निकिता ने 6-0 से उन्हें हरा दिया। निकिता सहरावत ने दूसरे स्थान पर रहते हुए भारत के लिए रजत पदक जीता। वहीं 49 किलोग्राम कैटेगरी में कामना बाबल ने जबरदस्त जज्बा दिखाते हुए कांस्य पदक हासिल किया। जापान की साइका चीडा से सेमीफाइनल में हारने के बाद कामना ने तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में रूस की इरना स्तीवा के खिलाफ शानदार वापसी की। भारतीय पहलवान ने कड़े मुकाबले में अपनी प्रतिद्वंदी को 3-2 से हराकर पोडियम पर अपनी जगह पक्की की। देश के पदकों की संख्या में इजाफा करते हुए गरिमा ने 73 किलोग्राम वर्ग के ब्रॉन्ज मेडल मैच में दबदबे वाला प्रदर्शन किया। सेमीफाइनल में अमरीका की कैली मैनुअल से 5-7 की करीबी हार के बाद पूर्व अंडर 15 एशियन चैंपियन ने खुद को संभाला और वापसी की। उन्होंने स्पेन की पाउला बेनाइक्सा पेरिस के खिलाफ टेक्निकल सुपीरियरिटी के आधार पर 10-0 से शानदार जीत हासिल कर कांस्य पदक जीता। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
0: और श्रोताओं, आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता का आयोजन 27 जुलाई से 2 अगस्त तक अजरबैजान के बाकू में स्थित नेशनल जिम्नास्टिक एरिना में किया जा रहा है। प्रतियोगिता की शुरुआत ग्रीको रोमन कुश्ती से हुई, जिसके बाद महिला रेसलिंग का आयोजन हो रहा है। चैंपियनशिप का समापन फ्री स्टाइल रेसलिंग के साथ किया जाएगा। और अब सीधे चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर। तन्वी शर्मा और उन्नति हुड्डा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आज ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जगह बना ली है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी विशाल। विशाल, उन्नति हुड्डा और देविका सिहा के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। इस मुकाबले की खास बात ये थी कि कोई ना कोई भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में प्रवेश करता, तो आज किस खिलाड़ी ने बाजी मारी है विशाल?
2: प्रशांत, दोनों भारतीय खिलाड़ियों के बीच हुए इस मुकाबले का पहला गेम बेहद रोमांचक रहा, जहां उन्नति ने धैर्य के साथ 23-21 से जीत दर्ज की। उन्नति ने शानदार शुरुआत की और 11-13 की बढ़त बना ली, लेकिन देविका ने जोरदार वापसी करते हुए स्कोर 21-21 से बराबर कर दिया। उन्नति ने निर्णायक क्षणों में संयम बनाए रखा और लगातार 2 अंक जीतकर पहला गेम 23-21 से अपने नाम कर लिया। इसके बाद उन्नति ने दूसरा गेम भी 21-16 से जीतकर मुकाबला जीत लिया। अब सेमीफाइनल में उन्नति का सामना वियतनाम की ग्वेन थुई लिन से होगा।
0: और विशाल, तन्वी शर्मा ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है आज, कैसा रहा उनका मुकाबला?
2: जी प्रशांत, मुकाबला बहुत शानदार रहा और तन्वी ने बेहतरीन प्रदर्शन से थाईलैंड की सुपनिरा काटेथोंग को 21-15, 18, 21, 21, 14 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। पहले गेम में तन्वी ने धीरज और एकाग्रता भरा खेल दिखाया और गेम 21-15 से अपने नाम किया। दूसरा गेम काफी रोमांचक रहा। तन्वी ने अंत तक मुकाबला किया, लेकिन महज 3 अंक से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अगले ही गेम में जबरदस्त वापसी करते हुए तन्वी ने 21-14 से एक तरफा जीत दर्ज की। अब तन्वी का मुकाबला हुआंग यू हुसुन से होगा। प्रशांत, आपको ये भी बता दें कि पुरुष सिंगल्स में किरण जॉर्ज जापान के युडाई ओकिमोतो से 21-12, 21-10 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। जी प्रशांत,
0: बहुत बहुत जानकारी विशाल, विस्तृत जानकारी हमें देने के लिए बैडमिंटन पर। अब बात स्क्वाश पर भी कर लेते हैं। विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष टीम ने लगातार दूसरी बार कांस्य पदक जीता। सेमीफाइनल में भारतीय टीम को अमेरिका के खिलाफ 0-2 से हारने के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा।
3: स्क्वाश चैंपियनशिप के कड़े मुकाबले में गुरवीर सिंह को ब्रेंटन टेगलियारिनी ने 7-11, 12-10, 9-11, 7-11 से हराया, जबकि शीर्ष खिलाड़ी आर्यवीर दीवान को यासीन शलाबी ने 5-11, 7-11, 5-11 से हराकर भारतीय टीम के सफर को टूर्नामेंट में समाप्त कर दिया। हालांकि ये पहली बार है जब किसी भारतीय टीम ने वर्ल्ड जूनियर टीम प्रतियोगिता में लगातार पदक जीते हैं। टेगलियारिनी ने गुरवीर के खिलाफ 2-1 से पिछड़ने के बाद वापसी की और अमरीका को शुरुआती बढ़त दिलाई। उन्होंने 11-7, 9-11, 6-11, 11-7, 11-3 से जीत हासिल की। इसके बाद शलाबी ने दूसरे मैच में तेज शुरुआत की और आर्यवीर पर 3-0 से जीत दर्ज करते हुए फाइनल में जगह पक्की की। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।

0: एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली हेप्टाथलीट स्वप्ना बर्मन ने आज एथलेटिक्स से संन्यास की घोषणा कर दी। स्वप्ना ने लगातार चोटिल होने के कारण संन्यास की घोषणा की। स्वप्ना बर्मन ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, एथलेटिक्स सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि ये मेरी पहचान, मेरा जुनून, मेरा सपना और अनगिनत त्याग, संघर्ष, आंसुओं और कभी न भूलने वाली यादों से भरा एक सफर रहा है। स्वप्ना बर्मन पहली बार 2017 में भारतीय एथलेटिक्स की दुनिया में उभर कर सामने आई। उन्होंने भुवनेश्वर में आयोजित एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हेप्टाथलॉन में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने जकार्ता में 2018 में आयोजित एशियन गेम्स में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता था। जबड़े की चोट के बावजूद स्वप्ना ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। चोटों से लगातार प्रभावित रहने के बावजूद उन्होंने 2019 और 2023 एशियन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। उन्होंने 2023 एशियन इंडोर चैंपियनशिप में भी रजत पदक अपने नाम किया। 29 साल की स्वप्ना बर्मन को 2019 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अब बात क्रिकेट पर। एक दिवसीय विश्व कप 2027 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होना है। जिम्बाब्वे क्रिकेट के प्रमुख त्वेंगवा मुकुलानी ने आज कहा कि विश्व कप का सह मेजबान होना हमारे लिए बड़ा सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि ये अवसर वैश्विक क्रिकेट टूर्नामेंट को आयोजित करने की हमारी क्षमता पर भरोसे का प्रतीक है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव sportscan की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और sportscan की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र की विशाल संभावनाओं का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर निर्मम कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की निंदा की। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव कार्य जोरों पर। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।
3: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
2: मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस योजना में अपतटीय अन्वेषण मूल्य श्रृंखला से जुड़े कार्य शामिल हैं।
3: समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है। 84,000 करोड़

0: इसका प्रोग्राम है। इसके दो कंपोनेंट है बड़े, तो पहला कंपोनेंट है ऑफशोर सीज़मिक डेटा एक्विजिशन, 28,000 करोड़ रुपीस का ये प्रोग्राम है। दूसरा कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, ये 43,200 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम।
1: सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को भी मंजूरी दी गई है।
0: पीएम किसान योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया है और इस प्रोग्राम में देश के किसानों को क्रॉप साइकिल के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। साल में 3 बार 2,000 रुपए इनकम सपोर्ट दिया जाता है। इसमें पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे प्रत्येक प्रतिभाशाली युवा को उत्कृष्टता का स्पष्ट मार्ग मिलेगा।
0: कम्प्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरालंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र मंथन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विशाल समुद्री क्षमता का दोहन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से जलाशयों और अंतर्देशीय जल निकायों के अभिनव उपयोग से देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया योजना का विस्तार और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि से देश भर के युवा एथलीटों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और अपनी प्रतिभा को निखारने के अधिक अवसर मिलेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई।
2: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज फिर विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को अधिक सख्त बनाना और इन घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करना है। विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि विलंबित पंजीकरण की अनुमति देने से पहले नामित प्राधिकारी को संबंधित जन्म या मृत्यु की सूचना की प्रामाणिकता का सत्यापन करना होगा। इस सप्ताह संसद ने दो महत्वपूर्ण विधेयकों लोक परीक्षाएं अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 तथा राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को पारित किया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में संयुक्त राष्ट्र का लगातार समर्थन किया है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री जयशंकर ने कहा कि ये समर्थन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की 8 बार की सदस्यता में भी दिखता है और वर्ष 2028-29 के लिए अगली उम्मीदवारी की औपचारिक घोषणा भी की जा चुकी है। सरकार ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी योजना के अंतर्गत आज तक किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का कोई बकाया नहीं है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने VBG रामजी योजना को अधिसूचित कर लागू करना शुरू कर दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार

0: अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आज उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी पांचों आरोपियों को सजा सुनाई। अदालत ने इस अपराध को समाज को झकझोर देने वाली बेहद गंभीर घटना बताया। इसी महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और चार अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। दंगों के दौरान अंकित शर्मा पर भीड़ ने हमला किया था, बाद में उनका शव नाले में मिला था। पश्चिम बंगाल में विशेष कार्य बल के आतंक रोधी प्रभाग ने मोहम्मद हमीम मंडल उर्फ हमीम फिगो को आतंकवादी नेटवर्क से कथित संबंधों के आरोप में बर्धमान से गिरफ्तार किया है। आरोपी को बर्धमान के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को 14 दिन के लिए एसटीएफ की हिरासत में भेज दिया। हमीम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल था। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है।
1: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के तंत्र पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जांच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने भारत के सभी साझेदार देशों और हितधारकों से इस क्षेत्र के लिए सही नामकरण का उपयोग करने का आग्रह किया। नेपाल में अधिकारियों ने भारत से सटे सप्तरी जिले के कुछ हिस्सों में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। सुनसरी में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में प्रदर्शन शुरू होने के बाद कर्फ्यू लगाया गया। सुनसरी, धनुषा और सिराहा जिलों में कुछ हिस्सों में पहले से ही कर्फ्यू लागू है। सरलाही जिले के अधिकारियों ने सीमा पार से नेपाल में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में लगातार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निचले जिलों में बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है क्योंकि महानदी और उसकी सहायक नदियां कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ का पानी बढ़ने से सैकड़ों गांव, सड़कें और हजारों हेक्टर खेती की जमीन डूब गई है और 15 जिले इसकी चपेट में आ गए हैं। हीराकुद बांध के 22 गेटों से अब बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी नुकसान का जायजा लेने के लिए कल बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर और केंदुझर जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, जबकि एहतियात के तौर पर भद्रक के सभी स्कूल कल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: गुजरात से हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में आज सुबह से मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है।
3: सूरत जिले के अंबिका में आज पूरे राज्य में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा भरूच, नवसारी, डांग, आणंद और खेड़ा जिलों के कई इलाकों में भी आज मूसलाधार बारिश हुई। निचले इलाकों में जलभराव के कारण राज्य राजमार्गों और स्थानीय मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। स्थिति को देखते हुए राहत और बचाव कार्यों को बड़े पैमाने पर तेज कर दिया गया है। आज सुबह से ही 8,300 से अधिक लोगों को सुरक्षित आश्रय में पहुंचाया जा चुका है। इस बीच भारी बारिश की संभावना को देखते हुए एहतियाती तौर पर सूरत, बनासकांठा और मेहसाणा सहित कई जिलों में कल भी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माही, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त

0: की गई है। इसी तरह का मौसम उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में भी रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने के साथ आंधी तूफान और तेज हवाओं की भी संभावना है। दिल्ली में कल तेज वर्षा हो सकती है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीत लिया। 48 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने पहला स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस बीच भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल ने फाइनल में जगह बना ली है। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम सेमीफाइनल मैच में जाम्बिया की कैथरीन मुआपे को हराया। जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम और अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में जगह बनाई। वहीं अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम सेमीफाइनल में कनाडा के जोशुआ ओफोरी को मात दी। भारत 4 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र की विशाल संभावनाओं का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद। और राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Center approves Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Also clears National Offshore Exploration Scheme Samudra Manthan to strengthen country's energy security and unlock vast offshore potential. Union Cabinet gives nod to continuation of PM Kisan Samman Nidhi Scheme for next 5 years. Former Aam Aadmi Party councillor Tahir Hussain and 4 others get life term for murder of IB officer Ankit Sharma during 2020 Delhi riots. New Delhi slams Islamabad over brutal crackdown against peaceful protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Flood crisis deepens in Odisha, relief and rescue operations in full swing. And Asmita Day clinches India's first ever judo gold at Commonwealth Games. Indian boxers Preeti Pawar, Jasmine Lamboria, Arundhati Chaudhary and Ankush Pangal advanced to final in their respective bouts. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Addressing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said that the scheme has been approved with a total outlay of 5,070 crore rupees. He said the scheme envisages the development of 5,000 megawatt of floating solar photovoltaic projects with co-located energy storage systems having a minimum storage capacity of 2 hours, totaling 10,000 megawatt hour.
2: सोलर कैपेसिटी पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड हाईएस्ट देश में लगी है। वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया आज। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में। टोटल 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी फोटोवोल्टेक कैपेसिटी भारत में क्रिएट की जाएगी। 5 साल की स्कीम है, 1 करोड़ पर मेगावाट का इसका सपोर्ट दिया जाएगा स्कीम में। प्रोजेक्ट्स विल बी सिलेक्टेड थ्रू टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग। 10 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशंस को ये प्रिवेंट करेगा।
1: In order to strengthen country's energy security and unlock vast offshore potential, the Union Cabinet has given its nod to the National Offshore Exploration Scheme Samudra Manthan with an approved outlay of 84,084 crore rupees for implementation up to financial year 2000.

चंदन दास की गाई हुई गजलें आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल से। कार्यक्रम का नाम है सुगम संगीत। लीजिए इसी आवाज में सुनते हैं ये गजल।

0: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: लीजिए सुनते हैं चंदन दास की आवाज में ये गजल।

सुगम संगीत में आज आप चंदन दास को सुन रहे थे। मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप पंजाबी कार्यक्रम हेलो मिट्टी दी खुशबू सुनेंगे। आज की प्रस्तुति है दुर्गाराम की। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं नवीन सिसोदिया।

0: हेलो मिट्टी दी खुशबू प्रोग्राम
1: जी मलोट पंजाब तो राजकुमार इंदौरा बोल रहे हैं जी।
0: और इंदौरा जी की हाल?
1: बस ठीक है जी, दुर्गा राम जी। प्रोग्राम सुनी जाने हैं, मजे ले जाने हैं जी।
0: वाह जी,
1: सूरत कर दे जी।
0: जी जी जी जी जी
1: हाँ जी।
0: ते इंदौरा जी,
1: हाँ जी,
0: अज कलाकार केड़ा सुनाइए तुहानू?
1: अज कलाकार जी गायकर मोहम्मद रफी साहब दा जी, पुण्य तिथि है जी।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
1: ते उन्हां दा कोई भी प्यारा जिहा गीत सुना दिओ जी अज।
0: जी जरूर सुनावांगे। ते होर तुहाडे नाल कौन कौन सुनदे आ, प्रोग्राम नाम दस दो
1: जी। बेटा है जी विकास कुमार इंदौरा जी।
0: जी
1: पोतरा है गैरी इंदौरा जी।
0: हाँ जी।
1: ते पोतरी बेबी दिया इंदौरा जी।
0: जी जी जी।
1: ते साथी भी ने जी साडे जी।
0: जी नाम दसो अपने यारा बेलिया दे।
1: सतीश मिगलानी जी।
0: जी।
1: ते जगदीश राय गर्ग मानसा वाले जी।
0: जी जी जी।
1: शंभू दयाल खटक जी।
0: हाँ जी।
1: ते दारा पंडित जी।
0: जी। ते इंदौरा जी सुनो फिर तुसी मोहम्मद रफी दी आवाज विच आके।
1: ठीक है, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, दुर्गा राम जी।
0: शुक्रिया, सब शुक्रिया। हेलो मिट्टी दी खुशबू प्रोग्राम।
2: दुर्गा राम जी सत श्री अकाल।
0: जी सत श्री अकाल, सत श्री अकाल।
2: मिड्डा बोलदा जी नाई वाला तो।
0: होर मिड्डा जी की हाल आ?
2: बहुत वधिया बहुत वधिया, तुसी सुनाओ जी।
0: जी बहुत वधिया बहुत वधिया। होर परिवार च सारे ठीक अपने?
2: हां जी परिवार ठीक है जी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा। मिड्डा जी की कारोबार चल रहा अजकल अपना?
2: अपना बट्टे ते है जी, अकाउंटेंट हां जी मैं।
0: अच्छा अच्छा। ते मिड्डा जी अज फिर कलाकार केड़ा सुनाइए तुहानू? बोलो जरूर बोलो मिड्डा जी।
2: अल्फ अग लगी विच सीने वे।
0: हां जी।
2: सीना तप के वांग तंदूर होया। साडा रोना भी ना मंजूर होया
0: जी।
2: एक रात का जागना बहुत औखा।
0: हां जी।
2: एक जागदा दुखी बीमार राती, जां जागदा पहरेदार राती,
0: हां जी,
2: जां जागदा यार दा यार राती। वारिश मियां सब सौ जांदे।
0: हां जी।
2: पर जागदा परवरदिगार राती।
0: वाह वाह वाह वाह, बहुत ही वधिया बहुत वधिया। ते मिड्डा जी होर प्रोग्राम तुहाडे नाल कौन कौन सुनदे हुंदे आ?
2: और अलका मिड्डा सुनदी है जी।
0: जी
2: साडे मुंडा है जी अमित मिड्डा, पोता है सुजल मिड्डा।
0: हां जी।
2: ते उधर दोस्त है जी खोखरा वाली तो
0: जी,
2: विनोद बरासा।
0: जी जी जी जी। ते मिड्डा जी सुनो फिर तुहाडे सारयां दी पसंद आ मोहम्मद रफी दी आवाज विच आ।

दोस्तों अज के प्रोग्राम विच साडे तकनीकी साथी सी महावीर प्रसाद जलंधरा, कप्तान सिंह, लालचंद, राकेश मोयल, किशोर दीक्षित ते रविंदर पीपल। कार्यक्रम के संयोजक सी नवीन सिसोदिया ते साडी कंसोल दे साथी आ बलविंदर कल्याण। हुण अज दे हैलो मिट्टी दी खुशबू प्रोग्राम तो अपने दोस्त दुर्गा राम नायक नूं इस गल दे नाल दवो इजाजत कि अखां दे विच इंज उडीकां रह गईआं, पत्थर उत्ते जैवें लीकां रह गईआं, लोकी आखण चुप चपीता रहिंदा ए, मेरे अंदर कूकां चीकां रह गईआं। रब रखा

हेलो मिट्टी दी खुशबू। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम की प्रस्तुति दुर्गाराम की थी और कार्यक्रम के संयोजक नवीन सिसोदिया थे। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के गॉर्डन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात्रि के 10 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत। आज का ये फिल्म संगीत समर्पित रहेगा महान गायक मोहम्मद रफी को, उनकी पुण्यतिथि पर। दिल गया दिलबर गया, साहिल कहे पुकार के समंदर चला गया, मगर जो बात सच है वो कोई नहीं कहता, दुनिया से मौसकी का पैगंबर चला गया, दुनिया से मौसकी का पैगंबर चला गया।

अच्छा है कुछ ले जाने से, देकर ही कुछ जाना। जी हाँ, बहुत अच्छा है अगर हम इस दुनिया में कुछ छोड़ कर जाते हैं। मोहब्बत के पल, इश्क की वो बातें और कई दिलों को जोड़ने वाली संगीत की वो धुनें और आवाज़ के साथ साथ भाव और न जाने कितने नृत्य, सब छोड़ गए रफ़ी साहब हमारे लिए। 24 दिसंबर 1924 को कोटला सुल्तान सिंह अमृतसर, अभी ये जगह जो है वो वर्तमान में पंजाब में, वहाँ पे इनका जन्म हुआ। पिता का नाम हाजी अली मोहम्मद और बचपन से ही इन्हें संगीत से लगाव था। कहते हैं कि एक फकीर की आवाज़ को सुनकर रफ़ी साहब बहुत दूर तक उनके पीछे पीछे जाते थे, ऐसा उन्होंने खुद भी कहा है। उनको वो आवाज़ बहुत पसंद थी। उस फकीर की शायद ये आशीर्वाद रहा होगा कि रफ़ी साहब की आवाज़ इतनी मधुर, इतनी मीठी और इतनी सुरीली रही कि आवाज़ की दुनिया में अभी तक कोई दूसरा उनका जैसा नहीं हुआ। लीजिए सुनते हैं एक और गीत।

यही वो गीत है जो सभी की आंखों को नम करता रहा जब से उन्होंने गाया। न जाने कितने लोगों ने इस गीत को सुना और अपने बेटी की विदाई पर अपनी आंखों को रफ़ी साहब के इस गीत के साथ ही नम किया।

साहिर के बोल, रवि की धुन, मोहम्मद रफी की आवाज, फिल्म नीलकमल, जिसका गीत अभी आप सुन रहे थे। बड़ी मार्मिक आवाज, दर्द और रिश्तों की भावनाएं जिसमें छुपी थी। दोस्तों, 31 जुलाई 1980 को मोहम्मद रफी हमसे बिछड़ गए थे। उस दिन पूरा भारतीय फिल्म जगत गहरे सदमे में डूब गया था, क्योंकि मोहम्मद रफी केवल मात्र 55 साल की उम्र में ही इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए थे। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और हृदय गति रुकने से उनका देहांत हो गया और हम तक उनकी यादें रह गईं। आज का कार्यक्रम समर्पित है मोहम्मद रफी को। सुन रहे हैं उनके गीत।

काला बाजार, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे रवि की आवाज में। आज का ये कार्यक्रम समर्पित है मोहम्मद रफी को। दोस्तों, नौशाद द्वारा सुरबद्ध किए गए तेरा खिलौना टूटा गीत फिल्म थी अनमोल खड़ी, जो रिलीज हुई थी 1946 को। मोहम्मद रफी को प्रथम बार इसी गीत से उन्होंने गाने का मौका दिया। उसके बाद शहीद मेला दुलारी में भी रफ़ी ने गाने गाए, जो बहुत प्रसिद्ध हुए। 1951 में जब नौशाद ने फिल्म बैजू बावरा के लिए गाने बनाने शुरू किए, तो उन्होंने जो उनका बड़ा ही पसंदीदा गायक था तलित महमूद, उनसे वो गाना गवाना चाहते थे। लेकिन एक बार उन्होंने तलत महमूद को धूम्रपान करते हुए देख लिया, तो अपना मन बदल लिया और इस फिल्म के सभी गीत मोहम्मद रफ़ी से गवाने का फैसला कर लिया। बैजू बावरा के गानों ने रफ़ी को मुख्य धारा गायक के रूप में स्थापित कर दिया। इस फिल्म के सभी गीत बहुत ही पॉपुलर हुए थे। नौशाद ने रफ़ी को अपने निर्देशन में कई गीत गाने को दिए। लगभग इसी समय संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन को उनकी आवाज़ भी पसंद आ गई, उन्होंने भी रफ़ी से गाने गवाए। और ऐसे में उस समय के राजपुर के पसंदीदा संगीतकार थे शंकर जयकिशन, उन्होंने भी बहुत से गीत मोहम्मद रफ़ी से गवाए।

दिल एक मंदिर। शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन की धुन, आवाज रफी की। दिन जो पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता, पालता उनको जतन से, मोती के दाने देता, सीने से रहता लगाए। जी हाँ दोस्तों, सीने से हमने भी इस आवाज़ को लगा रखा है। रेडियो ने मोहम्मद रफ़ी के न जाने कितने गीतों को लोगों तक पहुंचाया है और प्यार दिया है। रफ़ी साहब की आवाज़ आए दिन रेडियो पर आप सुनते रहते हैं। किस्सों की बात करें तो कहा जाता है कि एक बार आकाशवाणी ने जो लाहौर में उस समय के प्रख्यात अभिनेता गायक कुंदनलाल सहगल वहाँ पे आए हुए थे एक कार्यक्रम के लिए, मोहम्मद रफ़ी भी अपने भाई के साथ उस कार्यक्रम में पहुँचे थे। अचानक से बिजली का चला जाना और केएल सहगल साहब ने, जो कि बिना माइक के गाना उनको संभव नहीं लगा, तो ऐसे में भीड़ में से जो आयोजक थे उन्होंने भीड़ को शांत करने के लिए संपर्क किया मोहम्मद रफ़ी से, क्योंकि उनके जो भाई उनके साथ गए थे उन्होंने बता दिया था कि ये छोटा बालक मोहम्मद रफ़ी भी गाता है। ऐसे में उस वक्त जब रफ़ी साहब ने अपनी ऊंची आवाज़ में उस भीड़ में जो गीत गाए उनको सुनकर सभी श्रोता मंत्र मुग्ध रह गए और वहाँ से यह सिलसिला शुरू हुआ जो फिल्म इंडस्ट्रीज भारत बॉम्बे तक पहुँचा और बॉम्बे से लेकर आज हम और आप उनको याद कर रहे हैं, सुन रहे हैं मोहम्मद रफ़ी के गीत।

मधुर सुल्तानपुरी का गीत आपने सुना, ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में यह आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी। फिल्म का नाम था मेरे सनम। दोस्तों 1950 के दशक में शंकर जयकिशन, नौशाद, सचिन देव बर्मन ने रफ़ी साहब से बहुत सारे लोकप्रिय गीत गवाए। यह सिलसिला 1960 के दशक में भी चलता रहा। संगीतकार रवि ने मोहम्मद रफ़ी का इस्तेमाल 1960 के दशक में किया। 1960 में फिल्म 14वीं का चांद के शीर्षक गीत के लिए रफ़ी को अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। लीजिए सुनते हैं वही गीत जिसके लिए मोहम्मद रफ़ी साहब को पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं फिल्मी नगमे आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल से। आज का ये कार्यक्रम समर्पित है फिल्म इंडस्ट्रीज के महान गायक मोहम्मद रफ़ी को। जैसा कि आप जानते हैं, 31 जुलाई 1980 को मोहम्मद रफ़ी का देहांत हो गया था। दोस्तों, हमने आपको बताया कि उनको पहला जो फिल्म फेयर पुरस्कार मिला फिल्म 14वीं का चांद के लिए, और दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड उनको मिला फिल्म ससुराल के गीत तेरी प्यारी प्यारी सूरत को। और संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपना आगाज भी मोहम्मद रफ़ी के साथ ही किया था। 1963 में पारसमणि के लिए बहुत सुंदर गीत बनाए थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इनमें सलामत रहो तथा वो जब याद आए उल्लेखनीय गीत रहे, बहुत अच्छे रहे। 1965 में ही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में फिल्म दोस्ती के लिए गाए गीत चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे के लिए रफ़ी को तीसरा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला, और 1965 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा। लीजिए सुनते हैं एक और गीत।

दोस्तों बात 1965 की है, जब संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी ने फिल्म जब जब फूल खिले के गीत बनाए। उनमें मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ का उन्होंने खूब उपयोग किया और उसके सभी गीत बहुत ही पॉपुलर रहे। फिल्म का एक गीत था, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। ये गीत अपनी लोकप्रियता की शीर्षतम ऊंचाइयों तक पहुंच गया। 1966 में फिल्म सूरज के गीत बहारो फूल बरसाओ ये भी बहुत पॉपुलर रहा और इसके साथ ही उन्हें चौथा फिल्म फेयर अवार्ड मिला फिल्म सूरज के इस गीत के लिए। और संगीतकार शंकर जयकिशन का साथ भी उनके साथ बना रहा। 1968 में फिल्म ब्रह्मचारी के लिए उन्होंने एक गीत गाया था, दिल के झरोके में तुझको बिठा के।

इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत शंकर जयकिशन का, फिल्म ब्रह्मचारी।

दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी बहुत ही सीधे इंसान थे, बड़े ही शर्मीले स्वभाव के व्यक्ति थे। बहुत ही कम बोलते थे, मगर जितना बोलते थे बड़ा ही मीठा बोलते थे। और दोस्तों, विभाजन के वक्त उन्होंने भारत में ही रहना पसंद किया। उन्होंने बेगम विकलिस

शादी की और उनकी सात संतान हुई, चार बेटे और तीन बेटियां। मोहम्मद रफी को उनके परमार्थों के लिए भी जाना जाता है। वह बहुत हंसमुख और दरिया दिल व्यक्ति थे, हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहते थे। कई फिल्में की तो उन्होंने बिना पैसे लिए या बेहद कम पैसों के साथ गाए। अपने शुरुआती दिनों में संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के नाम से जाने जाने वाले इस जोड़ी ने अपने किस्से सुनाए थे। उनमें ये कहा था कि उन्होंने बहुत कम पैसों में गाया था उनके जो शुरुआती गीत थे। गानों की रॉयल्टी को लेकर लता मंगेशकर के साथ उनका विवाद भी उनकी दरियादिली का सूचक है। उस समय लता जी का कहना था कि गाने गाने के बाद भी उन गानों से होने वाली आमदनी का एक अंश गायकों तथा गायिकाओं को मिलना चाहिए। रफी साहब इसके खिलाफ थे और उनका कहना था कि एक बार गाने रिकॉर्ड हो गए और गायक गायिकाओं को उनकी फीस का भुगतान कर दिया गया तो उनको और पैसों की आशा नहीं करनी चाहिए। इस बात को लेकर दोनों महान कलाकारों के बीच मनमुटाव हो गया। लता ने रफी के साथ कई सालों तक कोई गीत नहीं गाया और फिर से शुरुआत की नरगिस के कहने पर फिल्म ज्वेल थीप से, और फिर गाते रहे, गुनगुनाते रहे और आज भी हम उनके गीत सुनते आ रहे हैं। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम में एक और नगमा। दो बदन, इस फिल्म का यह गीत, रवि का संगीत आप सुन रहे हैं रफी की आवाज में।

कितनी मधुर आवाज है मोहम्मद रफी की, सुनने वाला सुनता ही रह जाता है। और शब्द बाद में पहले आवाज और मधुर, दोस्तों इसी आवाज ने बहुत से गीतों के लिए फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामित हुए और कुछ अवार्ड प्राप्त किए। अगर बात 1960 की करते हैं तो 14वीं का चांद हो, ये गीत जो मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था, फिल्म थी 14वीं का चांद, इसके लिए इनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। 1961 में हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, फिल्म घराना के लिए ये गीत नामित रहा फिल्म फेयर अवार्ड के लिए। 1961 में ही तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र ना लगे, फिल्म का नाम था ससुराल, इस गीत के लिए मोहम्मद रफ़ी को फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 1962 में ए गुलबदन फिल्म का नाम था प्रोफेसर, ये फिल्म नामित रही, ये गीत नामित रहा फिल्म फेयर अवार्ड के लिए। और ऐसा ही एक और गीत 1963 में, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिल्म का नाम था मेरे महबूब, ये गीत भी नामित रहा फिल्म फेयर अवार्ड के लिए। और 1964 में चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, ये वाला गीत जो फिल्म दोस्ती का था, इसके लिए मोहम्मद रफ़ी साहब को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। और 1965 में छू लेने दो नाजुक होठों को, फिल्म काजल का ये गीत नामित रहा था फिल्म फेयर अवार्ड के लिए। और 1966 में बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, फिल्म का नाम था सूरज, ये गीत फिल्म फेयर अवार्ड के लिए विजित रहा था, इसमें रफ़ी साहब को ये अवार्ड मिला था। 1968 में मैं गाऊं तुम सो जाओ, फिल्म ब्रह्मचारी, और 1968 में ही बाबुल की दुआएं लेती जा, फिल्म नीलकमल, ये नामित रहे थे ये दोनों गीत फिल्म फेयर अवार्ड के लिए। और 1968 में दिल के चुरोके में वाला जो गीत था मोहम्मद रफ़ी ने गाया था, फिल्म का नाम था ब्रह्मचारी, इस गीत के लिए मोहम्मद रफ़ी को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था 1968 में। 1969 में बड़ी मुश्किल है ये वाला जो गीत था, फिल्म का नाम था जीने की राह, ये नामित रही थी फिल्म फेयर अवार्ड के लिए। और इसके साथ साथ ही 1970 में खिलौना जानकर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो, फिल्म का नाम था खिलौना, ये भी नामित रही थी। और 1973 में हमको तो जान से प्यारी है, ये वाला गीत था ना जो फिल्म नैना का, इसके लिए भी रफ़ी साहब नामित रहे थे फिल्म फेयर अवार्ड के लिए। और 1974 में अच्छा ही हुआ दिल टूट गया, फिल्म का नाम था माँ बहन और बीवी, ये गीत भी नामित रहा था। 1977 में पर्दा है पर्दा, ये वाला जो गीत था अमर अकबर एंथनी का, इसके लिए भी रफ़ी साहब नामित रहे थे फिल्म फेयर अवार्ड के लिए। और फिर 1977 में क्या हुआ तेरा वादा, ये वाला गीत, फिल्म थी हम किसी से कम नहीं, इसमें मोहम्मद रफ़ी साहब ने फिल्म फेयर अवार्ड जीता था 1977 में। दोस्तों 1978 में आदमी मुसाफिर है, ये वाला जो गीत था, फिल्म थी अपनापन। और 1979 में चलो रे डोली उठाओ कहार, फिल्म जानी दुश्मन। और इसी साल मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, फिल्म का नाम था दोस्ताना। और 1980 में दर्दे दिल दर्दे जिगर, फिल्म कर्ज। और 1980 में ही मैंने पूछा जान से, फिल्म अब्दुल्ला के लिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ नामित रही थी।

आवाज मोहम्मद रफी की, गीत भरत व्यास का और संगीत वसंत देसाई का। फिल्म का नाम है गूंज उठी शहनाई।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत संपन्न होता है। आज का ये कार्यक्रम मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि को समर्पित रहा। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात्रि के 11 बजने वाले हैं और ये वक्त होता है हिंदी व अंग्रेजी में समाचारों का। तो सीधे लिए चलते हैं हम आपको हमारे दिल्ली के अंदर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजना के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।
2: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है, उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
1: सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र मंथन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विशाल समुद्री क्षमता का दोहन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से जलाशयों और अंतर्देशीय जल निकायों के अभिनव उपयोग से देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आज उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी पांचों आरोपियों को सजा सुनाई। इस महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और चार अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है। नेपाल में अधिकारियों ने भारत से सटे सप्तरी जिले के कुछ हिस्सों में अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। सुनसरी में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में प्रदर्शन शुरू होने के बाद कर्फ्यू लगाया गया। सुनसरी, धनुषा और सिराहा जिलों के कुछ हिस्सों में पहले से ही कर्फ्यू लागू है। सरलाही जिले के अधिकारियों ने सीमा पार से नेपाल में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया है।

मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की ये सभा यहीं संपन्न होती है। प्रातः 5:53 पर पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभरात्रि। जय हिंद।